103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 5 अक्टूबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पान गांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक

0: पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

0: स्वयं पर विजय उनकी है जो नम्र हैं, जो झुकते हैं। विजय उनकी है जो सेवक बनते हैं और विरोधी को भी क्षमा कर देते हैं। विजय उनकी है जो शांत रहते हैं और सभी का भला चाहते हैं।
1: श्रुतो चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकारेषु सर्वदा। आज के भक्ति संगीत की शुरुआत हम कर रहे हैं गणपति जी की इस वंदना के साथ।

भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता, उस पर तो परम शक्तिशाली परमात्मा का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है।

जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिनकी जटाओं में गंगा जी का वास है, जो गले में सर्पों की माला धारण करते हैं, ऐसी गौरी प्रिय महादेव सभी के इष्ट देव है। वे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए हम भी आराधना करें ऐसे ही भोलेनाथ शिव शंकर की।

राम नाम में वो अपार शक्ति है जिसके सहारे प्राणी इस संसार रूपी भवसागर से पार उतर सकता है। तो आइए हम भी महिमा का गुणगान करें श्री राम जी की।

श्रोता, इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थी कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मानस गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। सात 7:10 पर आप सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जानेंगे सुबह 8:00 समाचार प्रभात में। 8:15 पर सुनिए मॉर्निंग न्यूज। पर आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत कानून की बात। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:45 पर, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 9:10 पर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला कार्यक्रम का प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से आप सुनते हैं सुबह 9:50 पर। इसके अलावा सुबह 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर ये प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाते हैं। सुबह 10:00 आप सुनेंगे गीतों का कारवा कार्यक्रम, जबकि हिमाचली लोक गीतों का आनंद आप ले सकते हैं 10:30 पर। कार्यक्रम रहेगा पहाड़ों के सुर। पंजाबी गीतों का आनंद लीजिए 11:05 पर महक पंजाबी कार्यक्रम में, जबकि 11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:00 सुनिएगा सैनिकों के लिए कार्यक्रम और सुनो सखी, ये कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं दोपहर 12:30 पर। दिन में 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का। हमारी सायंकालीन सभा की शुरुआत होती है शाम 5:10 पर भजनों के साथ। 5:25 पर युवा दोस्त सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। सुरमई सांझ कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 6:05 पर और 6:30 पर आनंद लीजिए मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम की। किसान बागवान श्रोता खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनेंगे 7:10 पर। विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे रात 8:00 और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। समाचार संध्या आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर और रात 9:00 आप सुन पाएंगे News@9। 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संगीतकार SD बर्मन के कुछ गाने। पहाड़ों की सुर कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर और रात्रि 10:00 आनंद लीजिए लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे का। 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे

केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पारमेलिन इत्यनेन सह द्विपक्षिक चर्चां करिष्यति। राष्ट्रपतिः पारमेलिनः अद्य प्रातः वरिष्ठैः अधिकारिभिः व्यापारनेतृभिः च युतेन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिसंघेन सह भारतस्य त्रिदिवसीयायाम् आधिकारिकयात्रायाम् आगमिष्यति। श्रीमोदी तथा राष्ट्रपतिः पारमेलिनः च व्यापारनिवेशः, विज्ञानं, प्रौद्योगिकी, नवान्वेषणं, गतिशीलता, संस्कृतिः, जनसंपर्कः इत्यादिषु विस्तृतक्षेत्रेषु द्वैपाक्षिकसहयोगस्य प्रगतेः समीक्षां करिष्यतः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, विदेशमन्त्री डॉ. एस. जयशंकरः अपि तेन सह मेलनं करिष्यतः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य सुरक्षायाः, क्षेत्रीय अखण्डतायाः च संकटस्य समये रूसदेशः अनेकविधैः भारतस्य पक्षे आसीत्। नवदिल्ल्यां 62वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलने भाषमाणः विदेशमंत्री अवधानं दत्तवान् यत् यदा विश्वस्य अधिकांशः भागः भारतस्य अनन्तरं सैन्यशासनस्य समर्थनम् इच्छति स्म तदा रूसदेशः एकः देशः आसीत् येन सह भारतस्य सम्बन्धः अतीव उत्तमः आसीत्। सः अवदत् यत् भारतरसिया सम्बन्धाः परम्परया अनेकैः विधैः निर्मिताः सन्ति। सः अवदत् यत् अद्य द्वैपाक्षिकसम्बन्धः, आर्थिकसम्बन्धः च ततः परं विस्तृतः। डॉ. जयशंकरः अवदत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये सैन्यस्य, परमाणोः, अन्तरिक्षस्य च घटकाः सन्ति, अपि च व्यापारस्य, निवेशस्य महती मात्रापि अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स् पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः शृण्वन्तु।
0: भारत कनाडा देशौ अद्य ओटावा नगरे प्रस्तावितस्य व्यापक आर्थिक सहभागित्व सन्धेः पञ्चम चरणीय वार्तालापं प्रारब्धवन्तौ। उभयोः 26,000 अन्तपर्यन्तं व्यापारसन्धिं समापयितुं लक्ष्यमस्ति। द्वयोः देशयोः मुख्यवार्ताकाराणां नेतृत्वे पञ्चदिवसीयः चक्रः अस्मिन् मासे 9 प्रचलिष्यति। पूर्वं गतमासस्य 18 नवदिल्ल्यां परिसमाप्तम् अभवत्। अधुना अधिकारिणः अन्तिमस्वरूपे द्रुतगत्या प्रगतिं कर्तुं प्रणोदयन्। मार्गपरिवहन राजमार्गमन्त्रालयः अद्यारभ्य गुजरातराज्ये द्विदिवसीयस्य चिन्तनशिबिरस्य आयोजनं करिष्यति। अस्मिन् सम्मेलने केन्द्रस्य, राज्यानां, कार्यान्वयन अभिकरणानां च वरिष्ठप्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति, येन ते देशे राजमार्गस्य मूलसौकर्याणां विकासस्य, वितरणस्य च विषये प्रमुखविषयेषु चर्चां करिष्यन्ति। कार्मिक लोक अभियोग निवृत्ति वेतन मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां 17वें निवृत्ति वेतन न्यायालयस्य अध्यक्षता करिष्यति। कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन मंत्रालयः सूचितवान् यत् अतिवरिष्ठ निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां, परिवार निवृत्ति वेतन ग्रहीतानां च दीर्घकालं यावत् विलंबितानां 97,800 यावत् परिवादानां निवारणं भविष्यति। फुटबॉल क्रीडायां गतविजेता मोहन बागान सुपर जायंट्स दलेन पंजाब एफसी इत्येतं दलं पेनाल्टी द्वारा 43 अंकैः पराजित्य अंतिमस्पर्धायां स्वस्थानं रक्षितम्।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामुला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पामुला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पामुला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पामुला से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह को समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माई भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों और महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों से दक्षिण

पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। ट्यून इन है आप 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर। जी हाँ, एक और नई सुबह, नया आगाज, नए नए रंग, नई परवाज। आज भी लेकर आ गए हैं हम इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम सुबह सुहानी, जहां पर रहने वाली है आज एंटरटेनमेंट की डबल डोज, क्योंकि आज का दिन है बेहद ख़ास। और हो भी क्यों ना भाई, आज सुबह सुहानी प्रोग्राम में हम आपके साथ रहने वाले हैं अब से लेकर ठीक 8 बजे तक। तो यूं ही हमारा साथ निभाते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला पर। हमेशा की तरह शुरुआत होगी सुविचार से। रोज बांटे रोज बढ़ती है, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। जी हाँ श्रोताओं, आप जितना हो सके दुआएं कमाएं, क्योंकि यही दुआएं आपके मुश्किल वक्त को आसान बनाती है और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बने। जी हाँ, मुस्कुराहट वो गहना है जिसके आगे सभी श्रृंगार फीके पड़ जाते हैं। तो दिल खोल कर मुस्कुराइए और अपने आसपास जितना ज़्यादा हो सके खुशियाँ बांटिए। यही खुशियाँ जो है वो रिटर्न में आपकी लाइफ में भी ढेरों खुशियां लेकर आने वाली है। तो आप यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त नीमा शर्मा के साथ।

जी हाँ लिसनर्स, हमारा दिन तो शायराना बन ही जाता है क्योंकि इतने प्यारे प्यारे से लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में जो कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। प्रोग्राम चल रहा है सुबह सुहानी। तो चलिए लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इतिहास की और पलटते हैं इतिहास के उन पन्नों को जिनमें छुपी हुई है कुछ वो विशेष घटनाएं जो आज के इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ा देती है। आपको बता दें 5 अक्टूबर 1946 में पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल का समापन आज ही के दिन में हुआ था। वही साल 1962 में जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म डॉक्टर नो रिलीज हुई थी। वहीं 5 अक्टूबर 1989 में न्यायमूर्ति मीरा साहिबा फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी। बात करें साल 2011 की तो एप्पल के पूर्व मुख्य कार्यकारी और सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का 56 वर्ष की आयु में आज के दिन निधन हुआ और उस समय भारत में दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी आकाश लॉन्च किया गया था। साल 2021 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज 11 को आम जनता के लिए आधिकारिक तौर पर जारी किया था। बात करें आज के दिन किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ तो आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 1524 को भारत की वीरता और साहस की प्रतीक गोंडवाना की महान शासिका रानी दुर्गावती का जन्म हुआ। वहीं 1929 में आज ही के दिन फिल्म निर्माता और धर्मा प्रोडक्शन के सह संस्थापक यश जौहर का भी जन्म हुआ। तो दोस्तों, अगर आज के दिन आप में से भी किसी का जन्मदिवस है, एनिवर्सरी है या फिर कोई ख़ास दिन है तो आप सभी को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं और हम हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ बने रहे और यूं ही मुस्कुराते रहे। साथ ही जुड़े रहे आकाशवाणी धर्मशाला पर, सुनते रहे प्रोग्राम सुबह सुहानी। जी हाँ, इस प्रोग्राम में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपके साथ साझा करने के लिए है।

जी हाँ लिसनर्स, जुड़े हुए हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। और चलिए आप बात कर लेते हैं कि आज यानी 5 अक्टूबर के दिन क्या कुछ है खास, और ऐसे कौन से विशेष अवसर है जो आज के दिन हम नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए श्रोता, आपको बता देते हैं कि आज है वर्ल्ड टीचर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जिसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1994 में की गई थी। जी हाँ, ये दिन याद दिलाता है 1967 में हुई उस विशेष बैठक की, जिसमें शिक्षकों के अधिकारों, जिम्मेदारियों और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण सुझावों को मंजूरी दी गई थी। इसे मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में उन शिक्षकों के योगदान को सम्मान देना है जो हमें जीवन की सही राह दिखाते हैं और शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही शिक्षकों का हम तहे दिल से नमन करना चाहेंगे।

जी हमसे थोड़ी ही देर बाद एक और खास दिवस के बारे में आपसे बात होने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको यूं ही ट्यून इन रहना होगा हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर।

जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ आप इस वक्त जुड़े हुए हैं और जैसा कि हमने आपसे बात किया कि आज हम कई सारे विशेष दिवस मना रहे हैं, और तो इसी सिलसिले में बात करते हैं कि आज हम एक और जो है दिवस मना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ जो है वीक हम मना रहे हैं। और दोस्तों, पर्यावरण के महत्व को तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन इसमें रहने वाले जीव जंतु हर छोटे बड़े जानवरों का उतना ही महत्व है, क्योंकि पृथ्वी पर सही ढंग से तालमेल बनाए रखने में इन सभी की भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण रहती है जितनी कि इंसानों की रहती है। तो श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे बताया कि हम मना रहे हैं वन्य जीव सप्ताह, और इस विषय पर आज जानकारी देने वाले हैं हमें

0: रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अमित शर्मा, आइए जानते हैं इस विषय में उनके क्या विचार हैं। हेलो
1: जी।
0: जी अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार जी, मैं सभी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आदर आभार और अभिनंदन
0: जी। तो सर, इस विषय के बारे में आप आज हमारे श्रोताओं से कौन सी जानकारी साझा करना चाहते हैं?
1: आज इस सप्ताह हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, जो प्रति वर्ष मनाते हैं, किसी एक थीम पे मनाते हैं, उस पे हम थोड़ी सी जानकारी मैं श्रोताओं से साझा करना चाहूंगा
0: जी।
1: मैं बताना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिवस से ये सप्ताह मनाया जाता है और प्रति वर्ष 7 दिन के लिए जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जाता है। इस वर्ष हमारी जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट टू कंजर्व हेल्थ एंड लाइवलीहुड। इसमें हमने ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात की है, बल्कि उनके हैबिटेट की, जहां वो रहते हैं, उनके प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं। टू कंजर्व हेल्थ, हेल्थ ना सिर्फ वन्य प्राणियों की हेल्थ को कंजर्व करना है, बल्कि मानव जाति की हेल्थ को भी कंजर्व करना है। और जो इस लोक इकोसिस्टम से जो हमारी लाइवलीहुड जुड़ी है, उसकी कंजर्वेशन की भी बात इस वर्ष हम कर रहे हैं। तो ये अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, स्कूली बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, और आज हम धर्मशाला में भी एक सुबह 8 बजे एक बर्ड वॉक करेंगे, जिसमें बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं। उसके बाद स्कूल में पीएम श्री गर्ल्स स्कूल यहाँ धर्मशाला में एक पेंटिंग कंपटीशन है, फिर उसके बाद एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जा रहा है, और एक सिग्नेचर कैंपेन है, जो कुछ लोग हैं वाइल्ड लाइफ के प्रति कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो एक सिग्नेचर कैंपेन, एक मैसेज दे के सिग्नेचर कैंपेन आप हमने शुरू किया है, तो उस पर आप अपना मैसेज लिख सकते हैं। डीसी ऑफिस के बाहर ये कैंपेन हम कर रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाहूंगा कि सबसे पहले ये जो दिवस है, ये एक दिवस के रूप में मनाया जाता था, 1955 से ये मनाया जा रहा है। फिर धीरे धीरे सोचा गया कि जागरूकता को बढ़ाना है, तो पूरे सप्ताह का ये वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। 1957 से ये पूरे सप्ताह के लिए मनाया जाता है। 1972 में हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है, तो भारत जो एक नेशन है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में पायोनियर है। और जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 1976 की 42nd अमेंडमेंट है, उसमें हमने 2 आर्टिकल्स को यहाँ ऐड किया था, 48A और 51A। उसके तहत ना सिर्फ हमने बोला स्टेट्स को कि उनकी जिम्मेवारी है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करें, बल्कि 51A(g) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी को भी निर्धारित किया गया कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ शामिल है, की रक्षा और सुधार करें तथा लिविंग क्रिएचर के प्रति कंपैशन रखें। यानी वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील होना केवल हमारी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि वन्य जीवों का को बचाना केवल बाघ, तेंदुआ या पक्षियों को बचाना नहीं है, ये उस पूरे प्राकृतिक तंत्र को बचाना है जिसपे हमारा भोजन, पानी, जलवायु, स्वास्थ्य और भविष्य निर्भर करता है। हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, हम प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा हैं। वन्य जीवों का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा तभी मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा और समृद्ध रहेगा। मेरा यही एक मैसेज था। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीक को बढ़ चढ़ कर मनाएं, अपने आस पड़ोस की वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट की बात कर रहे हैं हम इस बार, अपने हैबिटेट में जिसमें आपका आस पड़ोस का पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखें, कीड़े मकोड़े वन्य जीवों के प्रति आप अपनी कंपैशन रखें और अपनी लाइवलीहुड और अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखें। धन्यवाद
0: जी। अमित जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी जो है वो बेहतर जानकारी दी, उसके लिए आपका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इतनी प्यारी सी जानकारी के बाद एक जो है वो गीत सुनना तो लाजमी ही है। तो चलिए, आपकी रेडियो सेट्स पर भेज रहे हैं प्यारा सा गीत, एंजॉय कीजिए और दिल से यूं ही बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। और देखिए ना दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ी हमें समय दिखा रही है, इस वक्त सुबह के 7:39:30 हो चुके हैं और यहाँ पर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स। जी हाँ श्रोता, आपको बता दें कि फिर बदलेगा GST कानून, अधिकारियों की गिरफ्तारी की ताकत पर लगेगी रोक और 7 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में बड़े फैसले यानी कि बड़े बदलाव होने की आशंका। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में साबरमती नदी पर 480 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा पुल बनकर तैयार हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल समाचारों पर। आपको बता दें कि एशियाई गेम्स 2026 का कल शाम को हुआ समापन समारोह, जिसमें भारत की निशानेबाज नीरू धांडा बनी भारत की ध्वजवाहक। एशियाई गेम्स में भारत चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 21 स्वर्ण पदक, 27 सिल्वर मेडल और 37 कांस्य पदकों के साथ भारत ने कुल 85 पदक अपने नाम किए। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 3 दिवसीय श्रृंखला में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पराजित किया, हालांकि भारत पहले ही इस श्रृंखला को 2-1 से जीत चुका है। ये थी आज की कुछ मुख्य ताज़ा तरीन हलचले और इसके अलावा मौसम से जुड़ी हुई अपडेट भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन जो है वो आकाशवाणी धर्मशाला पर ना गीत संगीत का जो माहौल है वो बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है और आपके लिए हम यहाँ से प्ले करते रहेंगे कुछ प्यारे प्यारे से गीत। और ऐसा ही एक और गाना आपके रेडियो सेट्स पर हम भेज रहे हैं आतिफ असलम की आवाज़ में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह सुहानी प्रोग्राम में।

जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर आप जुड़े हुए हैं और जहाँ पर लगातार आप सभी से हम जानकारियाँ साझा कर रहे हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं उस पड़ाव पर जहाँ हम आपको फिलहाल जानकारी देने वाले हैं मौसम के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अनुमान लगाया गया है, जबकि उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम के मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं जताई गई है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो केरल, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है।

एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, मौसम की खूबसूरती को देखकर ये गाना सुनना तो भाई बिल्कुल लाजमी है।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: जी हाँ लिसनर्स, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम सुबह सुहानी।

0: खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
4: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
3: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
5: जी हाँ, सुबह सुहानी प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और देखिए ना दोस्तों, बातों ही बातों में हमें पता ही नहीं चला कि कब हम प्रोग्राम के आखिर में पहुंच गए हैं। बस चलते चलते आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपना और आपके अपनों का ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, ये जीवन जो हमें मिला है ना, वो बेशकीमती है, इसलिए हमेशा खुश रहे और हर वो काम करे जो आपको मुस्कुराने की वजह दे। कुछ बातों को नज़रअंदाज कर लिया कीजिए और थोड़ा सा लाइट फील करने के लिए कभी कभी जोक्स और चुटकुले भी सुन लिया कीजिए, जिससे कि माहौल खुशनुमा सा बन जाए। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी सी बातें आपको स्ट्रेस फ्री रहना सिखा देगी। और बाकी की जिम्मेदारी है ना, जो वो तो हम पर है। हम आपका मनोरंजन करने के लिए रोजाना सुबह से लेकर शाम तक हाजिर रहते हैं आपकी अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर, जहां पर इंटरटेनमेंट कभी भी नहीं रुकता,

श्रोताओ, आज के सुबह सुहानी प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करने की अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, लेकिन इस वादे के साथ कि कल कुछ और नई नई जानकारियां और नए मनोरंजन के साथ मिलेंगे इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 8:15 पर

0: सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
2: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
3: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
2: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
3: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
2: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजैक जोरम सांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कोरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
4: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
5: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से आईईडी विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
6: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात, हिंदुस्तान ने लिखा है। इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है। भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है। गुजरात के मेहसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित अजोय चक्रवर्ती को। ये पेश करेंगे ठुमरी।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपने सुनी पंडित अजोय चक्रवर्ती की गाई ये ठुमरी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
6: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
7: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
8: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
7: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
8: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में कानून की बात कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: से भेंट कर रहे हैं अनुज कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कानून की बात। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज श्री पंकज शर्मा जी। सबसे पहले तो माननीय न्यायाधीश महोदय, आपका स्वागत है आकाशवाणी हमीरपुर के स्टूडियोज में।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। माननीय न्यायाधीश महोदय, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
0: देखिए, भारत में परिवार संस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार में केवल पति पत्नी और उनके बच्चों का ही संबंध नहीं होता, बल्कि वृद्ध माता पिता, विधवा बहू, आश्रित सदस्य और अन्य परिवारजन भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वर्ष 1956 में संसद ने हिंदू व्यक्तिगत कानून को संहिताबद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 बनाया। इस अधिनियम का उद्देश्य हिंदुओं में दत्तक ग्रहण और भरण पोषण से संबंधित कानून को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करना था। इस कानून की विशेषता यह है कि यह केवल बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि पत्नी, विधवा, पुत्रवधु, बच्चे, वृद्ध या अशक्त माता पिता तथा कुछ अन्य आश्रित व्यक्तियों के भरण पोषण के संबंध में कानूनी अधिकार और दायित्व क्या हैं।
1: जी पंकज जी, कानून की दृष्टिकोण से हम देखें तो दत्तक ग्रहण या एडॉप्शन का क्या अर्थ है?
0: यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी बच्चे को अपने घर में लाना, उसका पालन पोषण करना या स्कूल के रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा देना अपने आप में वैध कानूनी दत्तक ग्रहण सिद्ध नहीं करता। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वैध एडॉप्शन के लिए 4 मूल आवश्यकताएं हैं। पहली तो यह है कि दत्तक लेने वाले व्यक्ति में दत्तक लेने की क्षमता और अधिकार होना चाहिए। दूसरी, बच्चे को दत्तक देने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरी, जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है वह कानून के अनुसार दत्तक लिए जाने योग्य होना चाहिए। चौथी, के अधिनियम में निर्धारित अन्य शर्तों का पालन किया गया हो। इसलिए श्रोताओं को यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ बच्चे का पालन पोषण करना और विधि के अनुसार बच्चे को दत्तक लेना दो अलग बातें हो सकती हैं।
1: जी, इसी पे आपसे अगला प्रश्न करते हैं महोदय, कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो बच्चे को गोद ले सकते हैं?
0: अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई पुरुष हिंदू जो बालिग हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, वह पुत्र या पुत्री को दत्तक ले सकता है। लेकिन यदि उसकी पत्नी जीवित है तो सामान्यतः पत्नी की सहमति आवश्यक है। यदि उसके एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं तो कानून में सभी पत्नियों की सहमति से संबंधित प्रावधान भी है, कुछ वैधानिक अपवादों के अधीन।
1: जी,
0: उदाहरण के लिए, यदि पत्नी ने संसार का पूर्ण और अंतिम प्रत्याग कर दिया हो या हिंदू धर्म छोड़ दिया हो या सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित किया गया हो तो कानून में निर्धारित परिस्थितियों में उसकी सहमति आवश्यक नहीं होती।
1: जी माननीय न्यायाधीश महोदय, क्या हिंदू महिला भी बच्चे को गोद ले सकती है?
0: हाँ, हिंदू महिला भी बच्चे को दत्तक ले सकती है। धारा 8, जिसे पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2010 द्वारा संशोधित किया गया, यह व्यवस्था करती है कि कोई हिंदू महिला जो बालिग और स्वस्थ मस्तिष्क की है पुत्र या पुत्री को दत्तक ले सकती है। यदि उसका पति जीवित है तो सामान्यतः पति की सहमति आवश्यक है, सिवाय उन परिस्थितियों के जिन्हें कानून में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है।
1: जी,
0: 2010 का संशोधन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि इसने हिंदू महिलाओं को दत्तक ग्रहण संबंधी कानूनी क्षमता को अधिक समान बनाया।
1: जी महोदय, आपने अभी तक जितनी बात करी वो दत्तक या गोद लिए जाने को था, लेकिन अब आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चे को दत्तक कौन दे सकता है?
0: धारा 9 में यह व्यवस्था है कि पिता या माता यदि जीवित हैं तो दोनों को बच्चे को दत्तक देने का समान अधिकार है, लेकिन सामान्यतः एक को दूसरे की सहमति आवश्यक है।

0: होती है कानून में निर्धारित अपवादों के अधीन। यदि बच्चा अनाथ या परित्यक्त है अथवा उसके माता पिता का पता नहीं है तो स्थिति अलग हो सकती है और ऐसे मामलों में संरक्षक न्यायालय की अनुमति से गोद दिया जा सकता है।
1: जी पंकज जी, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनको दत्तक लिया जा सकता है?
0: हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 10 कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित करती है। सामान्यतः जिस व्यक्ति को दत्तक लिया जा रहा है वह हिंदू होना चाहिए, वह पहले से दत्तक लिया हुआ होना नहीं चाहिए, वह सामान्यतः विवाहित नहीं होना चाहिए जब तक कि लागू प्रथा या रूढ़ी अन्यथा अनुमति ना देती हो, और वह सामान्यतः 15 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो जब तक कि किसी मान्य प्रथा या रूढ़ी से इससे अलग व्यवस्था ना हो।
1: जी जैसे कई व्यक्तियों की इच्छा होती है या तो पुत्र लिया जाए या पुत्री को गोद लिया जाए, तो इस संबंध में क्या कोई विशेष शर्तें हैं?
0: हाँ, अधिनियम की धारा 11 में इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं। यदि कोई व्यक्ति पुत्र को दत्तक ले रहा है तो सामान्यतः उसके पास पहले से जीवित हिंदू पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र, जैसा कि कानून में निर्दिष्ट है, नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार पुत्री को दत्तक लेने के मामले में भी कानून में पुत्री अथवा पुत्र की पुत्री से संबंधित शर्तें हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई पुरुष किसी लड़की को दत्तक लेता है अथवा कोई महिला किसी लड़के को दत्तक लेती है तो दोनों के बीच कम से कम 21 वर्ष का आयु अंतर होना चाहिए। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण शर्त के बच्चे को वास्तव में दत्तक देने और लेने की प्रक्रिया होनी चाहिए।
1: जी, क्या दत्तक ग्रहण के बाद बच्चा अपने जैविक परिवार का सदस्य रहता है?
0: हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। धारा 12 इस संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। वैध दत्तक ग्रहण के बाद सामान्यतः दत्तक माता पिता का बच्चा उसी प्रकार माना जाता है जैसे वह उनके द्वारा जन्मा हुआ बच्चा हो, और दत्तक ग्रहण की तिथि से दत्तक परिवार में उसके अधिकार और दायित्व कानून के अनुसार निर्धारित होते हैं। साथ ही कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दत्तक ग्रहण से पहले बच्चे में जो संपत्ति का अधिकार निहित हो चुका था वह केवल दत्तक ग्रहण के कारण समाप्त नहीं हो जाता। इसी प्रकार पहले से निहित संपत्ति को केवल दत्तक ग्रहण के कारण वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए दत्तक ग्रहण का प्रभाव केवल भावनात्मक या सामाजिक नहीं बल्कि गंभीर कानूनी प्रभाव भी रखता है।
1: जी माननीय न्यायाधीश महोदय, कई बार परिस्थितियां या अपरिहार्य कारण हो जाते हैं, तो क्या वैध दत्तक ग्रहण के बाद भी रद्द किया जा सकता है?
0: सामान्यतः नहीं। धारा 15 स्पष्ट करती है कि एक बार दत्तक ग्रहण वैध रूप से हो जाने के बाद उसे दत्तक पिता या माता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार दत्तक बच्चा भी केवल अपनी इच्छा से यह नहीं कह सकता कि वह दत्तक स्थिति छोड़कर अपने जन्म परिवार में वापस चला गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दत्तक बच्चे की कानूनी स्थिति स्थिर और सुरक्षित रहे। इसी कारण दत्तक ग्रहण का निर्णय बहुत सोच समझकर और विधि के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: जी पंकज जी, क्या दत्तक ग्रहण का पंजीकृत दस्तावेज महत्वपूर्ण है?
0: हाँ, यह भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने। विषय पर कानून की दृष्टि से धारा 16 बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पंजीकृत है दस्तावेज, इसका पंजीकृत होना नहीं जरूरी है। यदि दत्तक ग्रहण को रिकॉर्ड करने वाला कोई दस्तावेज कानून के अनुसार पंजीकृत है और उस पर बच्चे को दत्तक देने वाले तथा दत्तक लेने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं तो न्यायालय उस दस्तावेज के आधार पर यह प्रेजम्पशन अर्थात प्रारंभिक कानूनी धारणा बना सकता है कि दत्तक ग्रहण अधिनियम के अनुसार हुआ है, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध ना कर दिया जाए। इसलिए दत्तक ग्रहण से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और बात, बच्चे को गोद लेने के बदले किसी प्रकार का भुगतान या इनाम लेना या देना कानून द्वारा प्रतिबंधित है, यह भी धारा 17 में स्पष्ट किया गया है।
1: जी, अब हम आगे के विषय पर बात करते हैं माननीय न्यायाधीश महोदय, तो भरण पोषण या मेंटेनेंस का क्या अर्थ है?
0: मेंटेनेंस का अर्थ है, ये बड़ी व्यापक अवधारणा है। धारा

0: 3B के अनुसार मेंटेनेंस में भोजन, कपड़े, निवास, शिक्षा, चिकित्सा और चिकित्सा उपचार शामिल हैं। अविवाहित पुत्री के मामले में उसके विवाह से संबंधित उचित खर्च भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि भरण पोषण का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति को कुछ रुपए प्रति माह देना नहीं है। इसका उद्देश्य परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति की मूलभूत और उचित आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना है।
1: माननीय न्यायाधीश महोदय, पत्नियों के तो अधिकार होते ही हैं मेंटेनेंस वगैरह में, क्या विधवा पुत्र वधु का भी कोई अधिकार है इसमें?
0: जी हाँ, धारा 19 विधवा पुत्रवधु के भरण पोषण से संबंधित है। कुछ परिस्थितियों में विधवा पुत्रवधु अपने ससुर से भरण पोषण मांग सकती है। यदि वह स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और उसे अपने पति की संपत्ति, माता पिता की संपत्ति अथवा अपने बेटे या बेटी से पर्याप्त भरण पोषण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह दायित्व असीमित व्यक्तिगत दायित्व नहीं है। कानून में ससुर की उपलब्ध को पार्सनरी प्रॉपर्टी और अन्य परिस्थितियों से संबंधित सीमाएं निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त कानून के अनुसार विधवा पुत्र वधु के पुनर्विवाह के बाद यह दायित्व समाप्त हो सकता है।
1: जी न्यायाधीश महोदय, जैसे कई बार ये देखा जाता है कि पुत्र की हमेशा जिम्मेदारी तय की जाती है, तो क्या पुत्री की भी माता पिता के भरण पोषण में कोई जिम्मेदारी है?
0: जी, कानून में केवल पुत्र को ही जिम्मेदार मानना उचित नहीं होगा। धारा 20 में हिंदू ए हिंदू के संदर्भ में दायित्व निर्धारित किया गया है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार पुत्र और पुत्री दोनों की कानूनी जिम्मेदारी हो सकती है। इसी प्रकार हिंदू कानून में अविवाहित पुत्री के भरण पोषण का भी विशेष प्रावधान है। धारा 20(3) के अनुसार वृद्ध या अशक्त माता पिता तथा अविवाहित पुत्री यदि वह अपने अर्निंग्स या अन्य प्रॉपर्टी से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है तो कानून में निर्धारित परिस्थितियों में भरण पोषण का दावा कर सकती है।
1: जी माननीय न्यायाधीश महोदय, अब इस कार्यक्रम में क्योंकि समय भी हो चला है, तो हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं, आप उनको अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: कार्यक्रम के अंत में मैं श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि जब भी किसी को दत्तक ग्रहण करना है या देना है तो उन्हें ये जो बातें मैंने आज बताई वो बड़ी अहम बातें हैं कि यदि कोई व्यक्ति बच्ची गोद लेना चाहता है तो उसे मुख्य रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहली, दत्तक ग्रहण केवल भावनात्मक निर्णय नहीं है
1: जी
0: बल्कि कानूनी प्रक्रिया भी है। दूसरी बात, यह सुनिश्चित करें कि दत्तक लेने वाले व्यक्ति में कानून के अनुसार क्षमता और अधिकार है। तीसरी बात, बच्चे को दत्तक लेने वाले व्यक्ति की कानूनी क्षमता और आवश्यक सहमति की जांच करें। चौथी बात, बच्चे की पात्रता और आयु से संबंधित शर्तों का पालन करें। पांचवी बात, धारा 11 में निर्धारित अन्य शर्तों विशेषकर गिविंग और टेकिंग की आवश्यकता का पालन करें। छठी बात, दत्तक ग्रहण से संबंधित दस्तावेजों को विधिवत तैयार और सुरक्षित रखें। सातवीं बात, बच्चे को गोद लेने के बदले किसी प्रकार के अवैध भुगतान या इनाम के लेन देन से बचें। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण हो, यदि किसी विशेष मामले में संदेह हो तो प्रक्रिया शुरू करने से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या योग्य विधिक विशेषज्ञ से सलाह लें। और इसी तरह से मैं मेंटेनेंस के बारे में 3-4 मुख्य बातें कहना चाहूंगा। भरण पोषण केवल मासिक पैसे का नाम नहीं है, इसमें भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और चिकित्सा जैसी आवश्यकताएं भी शामिल हो सकती हैं। दूसरी बात, पत्नी, बच्चे, वृद्ध या अशक्त माता पिता तथा कानून में निर्धारित अन्य आश्रित व्यक्तियों के अलग अलग कानूनी अधिकार हो सकते हैं। तीसरी बात, किसी भी मेंटेनेंस क्लेम में न्यायालय केवल एक पक्ष की बात नहीं देखता। आय, संपत्ति, आवश्यकताएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कानूनी अधिकार से अनभिज्ञ है तो उसे चुपचाप कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है, वह विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
1: जी माननीय न्यायाधीश महोदय, बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया कि जो मूलभूत एक तैयारी होनी चाहिए दत्तक लेने वाले की भी और दत्तक देने वाले की, वो पूरी होनी चाहिए, और अपने कानूनी अधिकारों से किसी व्यक्ति को अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। आकाशवाणी हमीरपुर को आज आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: कार्यक्रम आप सुन रहे थे, विषय था हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956।

0: सत्र न्यायाधीश हमीरपुर से भेंट कर रहे थे अनुज कुमार। इसे आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी हमीरपुर और धर्मशाला से भी सुन रहे थे।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कानून की बात कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है सुबह के 9:02 और 15 सेकेंड। तो चलिए श्रोताओं, आपके लिए सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे पूरनचंद वडाली और ब्रदर्स की आवाज़ में गाए तनु वेड्स मनु फिल्म के इस गीत के साथ।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
0: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक समय था जब भारत में एक नया कारखाना शुरू करने के लिए 50 से ज्यादा दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं, महीनों की फाइलें, अनगिनत हस्ताक्षर और दबी हुई लाल फीताशाही। दुनिया भारत को एक विशाल बाजार तो मानती थी, लेकिन यहाँ कारोबार करने से कतराती थी। फिर आया अक्टूबर 2001। गुजरात की धरती पर जब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर संभाली तो उन्होंने व्यवस्था से एक तीखा सवाल पूछा, व्यापारी पर अविश्वास क्यों, फाइलें दफ्तरों में महीनों क्यों रुके। और उसके बाद जन्म हुआ एक ऐसे विचार का जिसने भारत के आर्थिक भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। गुजरात के वाइब्रेंट सम्मेलनों और सिंगल विंडो की पहली डिजिटल क्रांति से शुरू हुआ वो साहसिक प्रयोग आज 140 करोड़ से अधिक लोगों के देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। फाइलों की धूल से निकलकर वन क्लिक नेशनल सिंगल विंडो तक, बिचौलियों के मायाजाल को तोड़कर जेम पोर्टल के डिजिटल लोकतंत्र तक और लंदन दुबई को सीधी चुनौती देते गुजरात की गिफ्ट सिटी के आसमान छूते टावरों तक, ये सिर्फ सुधारों की कहानी नहीं है, ये भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रोमांचक पटकथा है। लोक कल्याण से राष्ट्र निर्माण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और सुशासन के 25 ऐतिहासिक वर्षों पर आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति जनसेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है कारोबार आसान, निवेश व्यापक। इस अभूतपूर्व बदलाव को आज हम डेटा, तथ्यों और दूर दृष्टि के चश्मे से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक मौजूद हैं, प्रसिद्ध आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय जी और वरिष्ठ अर्थशास्त्री संतोष तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
1: संतोष जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो इसकी नींव गुजरात से मानी जाती है। बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सिंगल विंडो सिस्टम और इन्वेस्टर्स समिट का मॉडल पेश किया। आपसे समझना चाहते हैं कि उस सिंगल विंडो और प्रो बिजनेस गवर्नेंस मॉडल ने भारत के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के गठन में क्या भूमिका निभाई और उससे कितना बड़ा बदलाव पिछले एक दशक या गुजरात से देखें तो 25 वर्षों में आप देखते हैं।
2: आनंद, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मेरे लिए काफी रोमांचक भी है, क्योंकि जब गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस वक्त मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं दो बड़े प्रोजेक्ट्स जो गुजरात के समुद्र तट पर लग रहा था, दहेज और हजीरा में एलएनजी टर्मिनल, और मैं उस वक्त इसलिए कि मैं उसमें पत्रकार था और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने दोनों के इनॉग्रेशन को कवर किया। और दोनों में जो एक बात निकल के आई जो आपने अभी कहा, वो उस वक्त लगता नहीं था कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि नेशनल लेवल पर इतनी बड़ी भूमिका अदा करेगी, और वो था सिंगल विंडो सिस्टम और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम।
1: जी।
2: तो जब इनॉग्रेशन के बाद जो बड़े बड़े व्यवसायी जो वहां इकट्ठा हुए थे उनसे प्रधानमंत्री जो अभी है नरेंद्र मोदी, वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सीधी बातचीत की, और कोई लब्बोलुभाव नहीं, वो सीधी बातचीत की। तो मैंने एक बड़ी कंपनी के सीएमडी से बाहर निकलने के बाद एक चीज पूछा, मुझे भी जिज्ञासा हुई कि भाई ये क्या बात है कि इतने सारे व्यवसायी जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं और एक मुख्यमंत्री के पीछे इतना आकर्षण है। उस वक्त ये कहानी लगती थी, लेकिन उस व्यवसायी ने मुझे उस वक्त बताया था कि संतोष, गुजरात में ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, वो इसलिए आ रहे हैं कि ये वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो रियल में वन विंडो या सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। आपको एक बार अगर राज्य सरकार ने, यानी गुजरात की राज्य सरकार ने अगर क्लियरेंस दिया और आपसे कहा कि लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हर तरह के क्लियरेंसेस जो हैं वो आपके इस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल हैं,
1: जी,
2: तो आप आंख मूंद कर ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में जब भी कभी आपको उस जो चीज अवेलेबल कराया गया है सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उस चीज की आवश्यकता है, आपको किसी और दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा और वही सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो काम आएगा। और आपने सही कहा कि इसी सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर गुजरात में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, चाहे वो ऑटो सेक्टर में आप देख लीजिए या मैं नाम ले सकता हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बाकी जगहों पर अलग अलग राज्यों को छोड़कर गुजरात में जाकर लगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इंडिया सेमीकंडक्टर हब बनने की तैयारी कर रहा है, वहां भी धौलेरा अगर है या सेमीकंडक्टर

0: डेवलपमेंट का सेंटर अगर कोई राज्य बनना चाह रहा है तो वो गुजरात ही बन रहा है। ये सब ऐसे एक दिन में नहीं होता, ये एक सोच होता है। तो अगर व्यवसायी के लिए, इन्वेस्टर के लिए अगर सिंगल विंडो सिस्टम कोई चीफ मिनिस्टर अगर अवेलेबल करा सकता है तो वो जब प्रधानमंत्री बने तो उसे बिल्कुल पता है कि ये सिंगल विंडो सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है, तो ये इंश्योर होता है। और बाकी राज्यों में भी कोशिश बहुत की गई है, की जा रही है, और जहां जहां इसमें सफलता मिली है वहां भी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो उसी लिहाज से बढ़ा है। लेकिन गुजरात एक एक्सेप्शनल स्टेट हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े इन्वेस्टमेंट को लाने में रहा है और उसमें सिंगल विंडो सिस्टम की भूमिका बहुत अहम रही।
1: निवेश की बात कर रहे हैं संतोष जी, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दिलीप जी, तो भारत अब केवल एक घरेलू बाजार नहीं रहा बल्कि वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। और जब भी बात हम निवेश की करते हैं और राज्यों में निवेश की करते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात हमें याद आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाइब्रेंट गुजरात की पहल की तो उस समय शायद ही किसी ने सोचा था कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर वो भी गुजरात जैसे राज्य में निवेश करेंगी। उसके बाद हमने देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों में इस तरह के समिट्स होने लगे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज होने लगी और कई कंपनियां न सिर्फ भारत आई बल्कि उससे रोजगार की स्थिति भी बदली। तो उस शुरुआत को और आज के सफर तक कैसे देखते हैं आप?
2: ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे संतोष जी ने आपको पहले बताया कि जो उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस किया था और उसमें एक खास तौर है कि जो गुजरात का सिंगल विंडो सिस्टम है वो हालांकि 2017 में अनाउंस किया गया था लेकिन उससे पहले 100 करोड़ के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स थे वो खुद चीफ मिनिस्टर एक तरीके से उनको ओवरसी करते थे और वो एक सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर किया जाता था। और अगर आप देखें तो वाइब्रेंट गुजरात जो 2003 में मेरे ख्याल से शुरू हुआ था उसको आप लिखे तो जब तक कोई स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ नहीं करता था, इंडिया में नेशनल लेवल इन्वेस्टमेंट समिट्स भी नहीं हुआ करते थे। तो एक स्टेट गुजरात जो ये 2003 में जो इन्वेस्टमेंट समिट किया था उस टाइम भी अगर आप देखें तो निवेशों को इंडिया से बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। और इसमें एक खास बात थी, तो अगर आप देखें संतोष जी ने ऑटो सेक्टर का जिक्र किया था तो अगर आप देखें कि वेस्ट बंगाल में एक कंपनी का एक प्रॉब्लम था तो वो अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे जहां पे अपर लैंड है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में उन्होंने अनाउंस किया और वहां पे जो उनको बोला गया था कि आपको हम आपको लैंड एक्वायर करना है ना कुछ करना है, लैंड एक्वायर्ड है, हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे, आप MOU साइन करिएगा और आप कल से वहां पे अपना जो प्लांट है शुरू करें। आज की डेट में वो एक हब बन गया है। 2005 में वाइब्रेंट गुजरात में मैं खुद शामिल था, उसमें ऑटो सेक्टर के बारे में काफी चर्चा हुई थी। उस टाइम अमित शाह जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, वहां के एक पूरा ऑटो सेक्टर पे सेक्शन किया गया था। उन्होंने उस टाइम कहा था कि भाई हमें थ्री व्हीलर देखना चाहिए। जब उनको बताया गया कि भाई अहमदाबाद में भारत का थर्ड लार्जेस्ट ऑटो थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर, उन्होंने दिशा बदला और उन्होंने अलग काम किए। तो अगर आप देखें तो आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, आप इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, तो अगर आप देखें 2019 से आज तक लगभग 3.50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में कमिट किया गया है। अक्टूबर यानी कि 2019 से मार्च 2025 तक इस साल का जो वाइब्रेंट गुजरात का समिट है वो अभी होने वाला है। और दूसरा जो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात में जो किया था वो खाली फॉरेन इन्वेस्टर्स के नहीं था, वो देश में जा करके अलग अलग जगह में इन्वेस्टर्स मीटिंग्स करते थे, वो भी एक नया ट्रेंड था और अब सारे जो स्टेट्स हैं वो इसको फॉलो करते हैं। और एक तरीके से जो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म आप देख रहे हैं, स्टेट्स कम्पीट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, सिंगल विंडो सिस्टम डाल दिए, उसकी शुरुआत वाइब्रेंट गुजरात से हुई थी, गुजरात में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
1: जी हाँ, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे वहां से वाइब्रेंट गुजरात की पहल हुई और उसके बाद दुनिया भर की कई कंपनियों ने भारत में निवेश किया। चर्चा को आगे बढ़ाते संतोष जी, भारत ने पिछले दशक में ऐतिहासिक FDI प्राप्त किया है। अगर थोड़ी चर्चा FDI की करें, फेमा सुधारों और 100% ऑटोमेटिक रूट के विस्तार से विदेशी निवेशकों का भारत ने भरोसा जीता है। इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं, क्या बदलाव किए गए? चूंकि एक अविश्वास का केंद्र भारत माना जाता था, वहां से विश्वास को जीतना FDI की पहल और उसमें भी बहुत रिकॉर्ड बने।
0: आनंद जी, निवेशक कोई भी जो विदेशी निवेशक होता है या जो कंपनियां होते हैं वो 2-3 चीजें किसी भी देश में जाने के पहले देखती हैं। अगर आप विश्व परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो या वैसे देश जहां की निवेश ज्यादा हुए हैं या होते रहे हैं, वहां पर जैसा मैंने कहा 2 या 3 चीजें होते हैं जिसको देखते हैं। एक, जो आपकी पॉलिसी है उसमें सर्टेनिटी कितनी है, चाहे वो राज्य हो या देश हो। निवेशक के लिए एक बहुत बड़ी

0: चिंता का विषय यह होता है कि कहीं हम ऐसी जगह में निवेश तो नहीं कर रहे कि यहाँ पॉलिसीज जो है वो बहुत तेजी से चेंज होता है, सरकारें बदलती हैं, पॉलिसी चेंज होता है। एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि भारत जैसे देश में पिछले एक दशक से ज्यादा जिस तरह से निवेशकों को जो चाहिए वैसी पॉलिसीज जिस तरह से चेंज करके लाई गई है फॉर देयर बेनिफिट, यानी उनकी सहूलियत के लिए, वो एक दूसरी चीज है जो कि निवेशक देखता है कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट को दिक्कत में ला सकता है, वैसी पॉलिसीज अगर हम चाहें तो सरकार उस दिशा में सोच रही है या नहीं सोच रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है और जो कि पिछले डेढ़ दशक में जिसने सबसे ज्यादा अहम भूमिका अदा की है भारत के इंडस्ट्रियल सिनेरियो को चेंज करने में, मैं चेंज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आंकड़े देखोगे तो भी चेंज है, सेंटिमेंट देखोगे तो भी चेंज है, अगर स्टेबिलिटी देखोगे तो भी चेंज है, और जो एक्सपेंस होता है यानी कौन कौन सी कंपनियां आपकी देश में आ रही हैं, आपके देश में आ रही हैं, उसमें भी चेंज है। ये चेंज जो है वो बिल्कुल रिकॉर्डेड है, कोई भी उसको देख सकता है। ये तीनों जो मैंने बात बताई आपको उसके चलते ये चेंज है। पहली बात, पॉलिसीज में सर्टेनिटी आई। जो भी पॉलिसी आज से डेढ़ दशक पहले जो भारत में चल रही थी उन पॉलिसीज में कोई मेजर बदलाव नहीं किया गया जो कि निवेशक जो आते थे उनको ये लगे कि नहीं, नई सरकार आई है या सरकारें दूसरी आएंगी तो हमारी पॉलिसी कंटिन्यूटी इन पॉलिसी रही। दूसरा, जब भी आप किसी देश में जाते हैं अगर नियम कानून को पालन करने में इतनी जहमत हो कि आपको ये लगे कि ऐसी जगह में हम निवेश करें क्यों, इस सरकार ने, आप चाहे फेमा ले लें या जो इंडस्ट्रियल एक्ट्स हैं उसको ले लें या जो सेंट्रल लेवल में जो भी एक्ट्स जितने बने हैं, कन्विक्शंस ले लीजिए, यानी छोटी छोटी चीजों के लिए जो निवेशक होता था या कंपनियां होती थी उनको कन्विक्ट कर दिया जाता था, इन सारी चीजों में जो मैंने एक दो तीन चीजें बताई कि कन्विक्शन हो या निवेश की सहूलियत हो या फिर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना हो, चाहे वो विदेशी फंड से रिलेटेड हो या देश में पैसा लगा रहे हो उससे हो, इन सब चीजों में एक बार में नहीं, धीरे धीरे धीरे करके साल दर साल जो है वो चेंजेस हुए। अगर आप देखोगे FDI लिमिट, ऑटोमेटिक अप्रूवल या 100% FDI जो है, जहां जहां बचा हुआ था वहां वहां, मैं सेक्टर्स का नाम नहीं ले रहा, जहां जहां बचा हुआ था ऑलमोस्ट जितने क्रिटिकल सेक्टर्स हैं सब में वो 100% लिमिट हो गया है। एक दिन में सब कुछ बदल देना बहुत मुश्किल है, बट जो डेढ़ दशक में बदलाव हुआ है वो निवेशकों का भरोसा हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्शन हो वो क्वेश्चन हो या फिर ये सर्टेनिटी हो कि अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी अगर लेके आ रहे हैं तो हमें इस बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए कि हमारा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो हमें दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। इन तीनों लिहाज से पिछले डेढ़ दशक के सरकार के नियमों और कार्यक्रम को आप अगर देखेंगे तो डेटा जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपने कहा कि FDI जो है हमारा बहुत बड़ा है, वो सिर्फ इंटेंट है जो आया है। जिस तरह से अभी काम चल रहा है, चाहे वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए आप, चाहे आप सेमीकंडक्टर देख लीजिए, चाहे आप डेटा सेंटर्स देख लीजिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लग रहे हैं आज इंडिया में, चाहे आप क्वांटम कंप्यूटिंग देख लीजिए जो सबसे नया विधा है जो अभी आ रहा है, किसी भी न्यू एज टेक्नोलॉजी को आप देख लीजिए, न्यूक्लियर एनर्जी देख लीजिए आप, हर जगह एक इंडिया टेक प्लेबुक तैयार हो रहा है। और उसके जो दो बड़े पहलू हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस इंडिया टेक प्लेबुक में, एक सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसीज एंड टू द गवर्नमेंट इज रेडी, सरकार तैयार है, जो चीज आपको चाहिए आप मेरे से बात करिए, प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं, बात करिए और हम ये कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी सहूलियत बढ़ा सके वो हम बढ़ाएंगे। एक इकोसिस्टम और सेंटिमेंट, ये दोनों तैयार हुआ है, कोशिश सिर्फ यही करनी है कि इसको कंटिन्यू किया जाए और इसको आगे इंडस्ट्री के साथ मिलकर बढ़ाए।
1: दिलीप जी, थोड़ी चर्चा गिफ्ट सिटी और IFSCA की भी कर लेते हैं। IFSCA, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है। इन दोनों की कोशिशों के तहत भारत को लंदन, सिंगापुर या दुबई की तर्ज पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की कोशिश की गई है। कितने सफल हुए हैं हम और गिफ्ट सिटी के माध्यम से होने वाले बैंकिंग और फंड मैनेजमेंट के ताजा आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं?
2: तो अगर आप देखें तो गिफ्ट सिटी जो है वो गिफ्ट सिटी के पहले इंडिया एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के द्वारा बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं किया जाता था। गिफ्ट सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे विश्व को इंडिया से कैसे दे जाए। इसका दो पहलू है, एक हम इंटरनेशनल सर्विसेज इंडिया से कैसे दें और दूसरा जो है इंडिया में जो फैमिली ऑफिसेज हैं, जो दूसरे एंटिटीज हैं वो जाके विश्व में सेटअप करते हैं, उनको क्या गिफ्ट सिटी एक अल्टरनेटिव सिस्टम दे कि वो विश्व भर दूसरे जाए, सिंगापुर जैसा आपने कहा, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, लंदन जाए, वो गिफ्ट सिटी से कर सके। अगर आप देखें तो उनका जो ढांचा है गिफ्ट सिटी का, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स का जो है, फंड मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, अगर आप देखें गोल्ड का एक खास तौर से है। सबसे बड़ी बात जो इंडिया में जो हमारे जो एयरलाइंस की एक्सपेंशन

0: हुई थी, हम एयरक्राफ्ट लीजिंग बाहर से करते थे, वो एयरक्राफ्ट लीजिंग अभी गिफ्ट सिटी से हो सकता है। दूसरा शिपिंग, हम करीब $70 बिलियन जो हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा है वो शिप के लीजिंग में खर्च करते हैं, तो उसको कैसे भी ऑनशोर करें और गिफ्ट सिटी में उसको पोजीशन करें, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे है। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के है और ग्लोबल इन हाउस, तो ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कैपिटल अट्रैक्ट करने का एक्सपेरिमेंट नहीं है जैसे हम पहले FDI के बात कर रहे थे, ये है इंडिया से हम फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे एक्सपोर्ट करें और इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो पूरे विश्व पे कैसे छाए और अपना एक नाम करें। गिफ्ट सिटी जो है आज की डेट में ये एक नया इंटरफेस बन सकता है इंडिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ और ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स। अभी भी अगर आप आगे जाके देखें तो इस टाइम ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में टोकनाइजेशन और रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन पे काफी चर्चा हुई थी, उसका जो पायलट हुआ था वो गिफ्ट सिटी में हुआ था और गिफ्ट सिटी एक बड़ा एक पैनामे पे एक प्रोग्राम एस्टैब्लिश कर रहा है टोकनाइजेशन। अगर आप देखें उसी वैल्यू का रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का तो आगे जा करके वो $16 ट्रिलियन का एक मार्केट बन सकता है, और अगर हम उसको एंकर करें गिफ्ट सिटी में तो अगर आप उसका 20% या कुछ भी ले ले फिर भी वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक हब हो सकता है। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो राजा रामन है उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में ये कहा था कि अलग अलग नए प्रोडक्ट्स भी अभी आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं टोकनाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, टोकनाइजेशन ऑफ जो स्टॉक्स वगैरह, उसको हम कैसे करके एक ग्लोबल सर्विस इंडिया से दें, और या कि नहीं कि इंडियन कंपनीज जो हैं दुबई हांगकांग सिंगापुर या लंदन जा करके वहाँ पे अपना काम करें।
1: जी कारोबार आसान निवेश व्यापक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे स्टूडियो में दो बेहद खास अर्थशास्त्री मौजूद हैं, दिलीप चिनॉय और संतोष तिवारी जी। संतोष जी, व्यापार का आधार स्तंभ हमारे सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग माने जाते हैं और जब से MSME की संशोधित परिभाषा आई है ऐसे में क्या हुआ है कि छोटे उद्योग बिना अपना प्रारूप चेंज किए हुए स्केल अप हो गए हैं। कैसे देखते हैं इस बदलाव को और विकसित भारत की दिशा में इन कोशिशों को?
2: आनंद, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ये रेवोल्यूशन है और ये रेवोल्यूशन ऑलरेडी इंडिया में आपको दिख रहा है, अगर आप निचले स्तर पर गांव के स्तर से लेके आप जिला के स्तर पर जाएं या देश के कोने कोने में अगर जाएं तो युवा जो है वो आज पहले जैसा नहीं रहा। आज उसको नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उसको एक इंडस्ट्री चाहिए। आप कितने ही अपने फैमिली में देख लीजिए, कहीं भी जाइए, कोई भी यंग यूथ जो आ रहा है उसको अपनी कंपनी चाहिए, उसको अपना बिजनेस चाहिए, उसका अपना आइडिया है, वो उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। और ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया है, ये बदलाव इसलिए आया है कि एक समय था जब ये कहा जाता था, और आज भी दिक्कतें हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% जो है वो दिक्कत नहीं, आपको बिजनेस चलाना हो दिक्कतें हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि सरकार ने जिस तरह से आपने कहा MSME के लेवल होते हैं उसमें डेफिनेशन में चेंज किया गया और जो करोड़ में जो पैसा है जिस तरह से आप डिफाइन होते हैं MSME वो बड़ा कर दिया गया, 100 करोड़ कर दिया गया, वो सिर्फ इसलिए है कि जो MSME से रिलेटेड सहूलियतें हैं वो आपको मिल जाएं, और जो भी सरकार कर सकती थी वो सरकार ने किया है, और दिशा उसमें यही है कि अगला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है आपको वो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करेंगी इंडिया में। अगला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में होने वाला है वो स्काई रूट करेगा, जो एक छोटी सी कंपनी मानी जाती थी वो आज स्पेस में अपने जो है प्रोडक्ट्स वो भेज रहा है। इसी तरह से आप अगर स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप में जिस तरह की कंपनियां आ रही हैं, मैं बिल्कुल रूबरू हूं स्टार्टअप वर्ल्ड से, जिस तरह से आ रही हैं वो आप देखकर हैरान रह जाओगे कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आइडिया है और उनको बड़ा बिजनेस बनाना है। तो जिस तरह के MSME के डेफिनेशन में चेंजेस हैं या फिर जो भी इंसेंटिव्स जो दिया जाता है, अलग अलग विभाग और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इंसेंटिव्स हैं जो सरकार ने लाए हैं। अगर आप स्पेस सेक्टर में आपको काम करना है तो आज भारत में स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक कंपनी है जो आपको सहूलियत देती है, आपको फंड तैयार करती है, फंड देती है, दूसरी है जो कि एक संस्था है जो कि आपको टेक्नोलॉजी में हेल्प कोई चाहिए वो देती है, तीसरी है जो सरकार से आप चले आइए और आप बोलिए कि देखिए हमको ग्लोबल कोई अट्रैक्शन चाहिए, ग्लोबल कोई हमें चाहिए, सीखना है हमें, बाहर जाना है और सीखना है, उसमें मदद करती है। और मैंने सिर्फ स्पेस सेक्टर को कहा, हर सेक्टर में सेमी कंडक्टर चले जाइए। और हर अगले दिन जो है सरकार सेमिकॉन 2 में कुछ नई चीजें आई हैं, जो कि सेमिकॉन 1 जो था जिसमें इतने इन्वेस्टमेंट जो आए गुजरात में उसके आगे की चीज है, उसमें भी फिर जो है छोटे मंझोले उद्योग जो है उन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो सारी चीजें आ रही हैं, हम लिस्ट नहीं कर रहे यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने न सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज को बल्कि लोअर लेवल पे माइक्रो स्मॉल

0: स्टार्टअप्स को जिस तरह से सपोर्ट करना और हैंड होल्डिंग करना शुरू किया है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के छोटे और मझोले उद्योग जो है आने वाले दिनों में आपको बड़े बड़े उद्योगों में हेल्प करने वाला एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए बिल्कुल खड़े हैं और ये हो रहा है।
1: दिलीप जी, थोड़ी चर्चा जेम की कर लेते हैं। पहले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या सप्लाई केवल बड़ी कंपनियों या रसूखदार बिचौलियों तक सीमित रहते थे, लेकिन जेम ने इस बिचौलिये तंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिकरण किया है। और आंकड़े बताते हैं कि जेम पोर्टल की शुरुआत होने से लेकर अब तक 18.4 लाख करोड़ से अधिक का सरकारी व्यापार दर्ज हुआ है। जो जेम के आंकड़े हैं उसमें एमएसएमई कारोबारी, महिलाओं और छोटे उद्यमियों का जो योगदान है उसको आप कैसे देखते हैं?
2: जेम पोर्टल जो है एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है और ये इसको हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। तो इसमें जितने भी गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट है और वो जैसे आपने आंकड़े बताए गवर्नमेंट के काफी प्रोक्योरमेंट होते हैं, तो उसमें आपको डायरेक्टली उस पोर्टल पे लिस्ट करने होता है और देश में चाहे आप स्टार्टअप हो जैसे संतोष जी ने कहा, चाहे मध्यम उद्योग हो चाहे लार्ज उद्योग हो, आप उस पे अगर बिड कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ला सकते हैं। इसका एक काफी अच्छा फायदा है क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक तरह से ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। दूसरा, अगर आप देखें तो इसमें जो छोटे और स्मॉल इंडस्ट्री है उनकी एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो पेमेंट की प्रॉब्लम है। अब जेम पोर्टल को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से लिंक करके उसमें बिल डिस्काउंटिंग का एक जो प्रावधान है वो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज और छोटे जो स्टार्टअप्स है और स्टार्टअप्स को एग्जेम्प्ट किया गया है क्वालिफिकेशन के फ्रेमवर्क में, तो उसमें ये एक नेशनल काइंड ऑफ मार्केट प्लेस किया गया है और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और अभी उन्होंने सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको भी बोला है कि आप इसी से आगे जाकर के करिएगा। एक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस भी क्रिएट किया गया है ईनैम, उसमें जो है आप कहीं पे भी एक कृषि उत्पादक हो आप अपना प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और अगर आप देखें तो टोकनाइजेशन में भी अभी जो कर रहे हैं वेयर हाउस रिसीट टोकनाइजेशन का एक काफी सिलसिला चल रहा है। तो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो पहले हम DGS&D उसको कह करते थे वो एक फिजिकल सिस्टम था, अब वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है। दिल्ली में अगर आप देखें तो छोटे छोटे कॉलेजेस भी उससे प्रोक्योर करते हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स भी प्रोक्योर करते हैं। और ये जो ग्रोथ हुआ है इसके पिछले कई साल पे, और उन्होंने इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए एक और एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, हम उसको ONDC कहते हैं
1: जी।
2: वो जैसे वो भी इनिशियल स्टेजेस में है, अगर वो बढ़ेगा तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन सकता है, ओपन सोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें बहुत सुविधा होगी मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो प्राइवेट सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं। अगर वो ट्रेड से उसको भी जोड़ देते हैं तो ये जेम पोर्टल लेकर के और ONDC पोर्टल लेकर के एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बन सकता है।
1: जी हाँ, चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। और संतोष जी, व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिर्फ नियमों को ही आसान बनाना काफी नहीं होता है, जो पुराने बेकार नियम हैं उनको भी खत्म करना बहुत जरूरी होता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात से लेकर अपने अब तक के सफर में इस पर भी बहुत ज्यादा काम किया है। जन विश्वास अधिनियम ने लगभग 40,000 से अधिक शिकायतों को खत्म किया, कई मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। सवाल यह है कि इसका भारतीय उद्योगपतियों के मनोविज्ञान और आर्थिक कार्य प्रणाली पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है?
0: मैं इसको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करता हूं आनंद जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग जो स्टेप्स हैं उनको लेकर ये सूत्र जो है ना वो रिफ्लेक्ट करना भी जरूरी है। क्योंकि ये सारी चीजें, जैसा आपने कहा कि जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उन्होंने इन सब चीजों को ग्राउंड लेवल पर ठीक किया था
1: जी।
0: उसमें से भी ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन उसको बोलते हैं, बहुत सरल भाषा में आपको मैं बताऊंगा, इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी चीजों के लिए, मैंने पहले उल्लेख किया था इस बात का, छोटे छोटे नियमों के उल्लंघन के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। आप व्यवसायी हो, जाहिर तौर पर तरह तरह की दिक्कतें हैं, नियमों का उल्लंघन अगर हुआ और आपको जेल में डाल दिया जाए कोई छोटे से उल्लंघन के लिए, बड़ी बात थी और वो एक सिग्नल गलत देता था। तो जो जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 का जो आया था उसमें 183 ऐसे माइनर ऑफेंसेस को, करीब 42 सेंट्रल लॉज में जहां पर कि इन सब के चलते आपको इम्प्रिजनमेंट या जेल में डाल दिया जाता था फॉर टेक्निकल और माइनर लैप्सेस, उनको मॉनेटरी जो है वो पेमेंट करके आपको छूट जाएंगे आप। बहुत बड़ी सहूलियत है ये। 2025-26 के बजट में जो जनविश्वास 2 बिल आया उसमें ऐसे 355 प्रावधान जो हैं अक्रॉस

0: 16 मोर सेंट्रल एक्ट्स जो है उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। देखने में बहुत आसान सी चीज लगती है, लेकिन आप सोच के देखिए उस व्यवसाय के लिए या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि किसी एक छोटे नियम के उल्लंघन के लिए आपको जेल में डाल दिया जाए तो भारत जैसे देश में तो आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। आर्थिक जगत में फिक्की जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है भारत के, वहां पर एक बार हम ये चर्चा कर रहे थे कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ बड़े बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को और सबको देती। तो निकल कर ये आया कि ये जो लॉज हैं जो रिडंडेंट हैं, यानी वैसे लॉज रूल्स रेगुलेशंस स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जिनकी कोई जरूरत नहीं है और उनको पालन करने के लिए उसमें सबसे ज्यादा कंपनियों का समय जाता है। ये बात यहां लिखा हम नहीं चर्चा कर रहे, पर मैं आपको परिप्रेक्ष्य के लिए बता रहा हूं। तो हमने जाकर केंद्र सरकार में जहां बताना चाहिए वहां पर ये बताया। पहली दफा फिक्की ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो इकोनॉमिक सर्वे में आया कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको बेकार में जो पड़े हुए हैं इतने सारे और हजारों की संख्या में, जिनकी जरूरत कोई नहीं है, अगले साल के बजट में इन रूल रेगुलेशंस को सरकार ने हटा दिया। ऐसी चीजें भी हुई हैं। डिक्रिमिनलाइजेशन जो है, जो जनविश्वास बिल है, वो तो है, बहुत बड़ी बात, लेकिन सहूलियत बढ़ाने के लिए भी जो रिडंडेंट लॉज थे उनको भी हटा दिया गया। तो चेंज करने के लिए आप ब्यूरोक्रेसी में मत जाओ कि एक सरकार, एक डिपार्टमेंट, एक मंत्रालय, उससे घूमते घूमते 15 साल लग गए और ये चेंज हुआ। नहीं, आप आइए लाइन मिनिस्ट्री को बताइए, यानी जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आप हैंडल होते हैं, ऊपर के तौर पर सबसे टॉप में प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के लेवल पर उसको समझा जाएगा और अगर जायज है उसको ठीक कर दिया जाता है।
1: दिलीप जी, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे कि जब भी हम व्यापार को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो एक चीज जो परेशान करती है वो है लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी माल ढुलाई की लागत। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ने देश में लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13-14% से घटाकर सिंगल डिजिट की ओर लाने में जो भूमिका निभाई है, इसका असर आप कैसे देखते हैं?
2: ये भी एक तरीके से गुजरात से ही शुरू हुआ था, क्योंकि गुजरात में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कीम था, ठीक है, क्योंकि पहला जो गति शक्ति का जो पहला था वो एक प्रगति नाम का एक सिस्टम था और वो जो PM गति शक्ति बनाया और जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में बनाया। प्रगति में क्या होता था कि ये प्राइम मिनिस्टर खुद रिव्यू लिया करते थे जिसमें जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो कहीं नहीं जा रहे, उनका क्या कारण है, और उसमें काफी अकाउंटेबिलिटी होता था क्योंकि जिसके पास वो एक तरीके से एक्शन पेंडिंग था उसका डॉक्यूमेंटेशन होता था, उसको क्लियर करना पड़ता था। फिर प्रगति में क्या हुआ कि एक बहुत अच्छे चीजें हुए, एक तो डिजिटल डेटा आ गया हर प्रोजेक्ट के बारे में, दूसरा फिजिकल मीटिंग्स नहीं होते थे, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होते थे, तीसरा ये GIS और जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन आ गया, चौथा सारे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट मिनिस्ट्रीज और जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटीज वो इकट्ठा आ गया, और पांचवी जो किसी का अगर ग्रीवियंस होता था वो रिजोल्व हो जाता था। अगर आप देखें 2026 का जो डेटा है तो 382 प्रोजेक्ट्स प्रगति में रिव्यू हुए थे, करीब 85 लाख करोड़ के भी थे और करीब 3000 इश्यूज एक दिन रिजोल्व हो गए। इसको एक नई सोच आई, ये प्रोजेक्ट्स को एक तरह से सैंक्शन नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यूली मॉनिटर करना चाहिए था। फिर 13 अक्टूबर 2021 में ये PM गति शक्ति, उन्हें एक लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट खड़ा किया और एक सेक्रेटरी था लॉजिस्टिक्स के लिए। तो उसमें क्या किया था कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में देखें तो अगर आपके पास एक किसी इंडस्ट्रियल इस्टेट में शहर में आपका एक फैक्ट्री है तो आपको लोकल इंडस्ट्रियल इस्टेट से हाईवे तक ले जाना या एयरपोर्ट तक ले जाना या पोर्ट तक ले जाना वो एक ज्यूरिसडिक्शन आता है, पोर्ट में दूसरा ज्यूरिसडिक्शन आता है, अगर आप हाईवे में ले गए तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी आ जाती है, फिर पोर्ट आ जाता है, फिर एयरपोर्ट आ जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये सारे जो बॉडीज है इसमें इंटीग्रेट करते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सीमलेस कनेक्टिविटी और उसको कैसे करें, और हम उसको इतना ध्यान नहीं देते कि जो फास्ट टैग सिस्टम भी आया है टोल हाईवेज में वो भी इसी का, क्योंकि टोल में वेटिंग होता था और टाइम करता था। एक कोई नया मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जैसे संतोष जी ने पहले धोलेरा का सेमीकंडक्टर्स का बोला था, अब सेमीकंडक्टर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट और पोर्ट कनेक्टिविटी चाहिए क्योंकि वो क्विक टर्न अराउंड है। तो एक तो आपने कॉस्ट की बात की थी, कॉस्ट तो एक चीज है जो हम 16-17% से हम उसको एक सिंगल डिजिट 8-9% में ले आए हैं, दूसरा जो पोर्ट में टर्न अराउंड टाइम है, एयरपोर्ट में टर्न अराउंड टाइम है, अगर आप देखें तो आज आप दिल्ली से मुंबई 17-18 घंटे में कर सकते थे, जैसे आपको 3 दिन या 4 दिन लगते थे। और ये जो फैक्ट्री से, रोड से, रेलवे से, लॉजिस्टिक पार्क से, पोर्ट और शिपिंग और एयरपोर्ट, ये पूरा जो चेन PM गति शक्ति में आ गया है, अब आप उसको बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, जो सेक्टर

0: एसोसिएशन, उनसे फीडबैक लिया जाता है भी कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। गतिशक्ति जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बिल्डिंग कनेक्टिविटी एज ए नेटवर्क का एक तरीका है। और सारा स्कीम आप देखें तो इसमें पीएम गतिशक्ति के द्वारा उन्होंने एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी अनाउंस किया था, और ये पूरा इंडिया एक मॉडल हो सकता है।
1: विषय बहुत व्यापक है, समय बहुत कम है संतोष जी, हम कार्यक्रम के अपने समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 वर्षों का सफर हमने बहुत छोटे छोटे तरीकों से चर्चा करने की कोशिश की। इस सफर का जो लक्ष्य है वो है 2047 का विकसित भारत। कैसे देखते हैं आने वाले समय में इस आधार पर किस तरह की इमारतें बनते हुए, संक्षेप में?
2: जिस समय में मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, और उस समय चुनाव का वक्त था, तो मैंने एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे जो मेरे दोस्त थे, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, चल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उनको गुजरात का एक्सपीरियंस था। तो मैंने पूछा कि एक विजनरी या इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे देश को विजन के तौर पर देखता है, दूसरी तरफ एक चीफ मिनिस्टर है जो कि यहाँ आएंगे वो जीत जाएंगे तो आएंगे, तो आपको क्या लगता है? उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया था, और वो इस पूरे 25 साल के सफर को समअप करता है, और आगे की बात जो आपने 2047 की उसको भी इंगित करता है। उन्होंने ये कहा, संतोष देखिए, पॉलिसी बनाना ये भी जरूरी है, लेकिन पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना ये आज देश की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाया है। भारत को आज बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, इसलिए इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो देश की तरक्की जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में दिखेगी। डेढ़ दशक की जो उनकी सरकार का जो एक्सपीरियंस है, आपको प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेंगे। यही प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन अभी तक जो आप ओल्ड एज इकोनॉमी में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे थे, आज आपको न्यू एज इकोनॉमी में ले जाना है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। 2047 में भारत में जो ग्रोथ होगा और जहां भारत पहुंचेगा, वो टेक लेड ग्रोथ होगा, टेक्नोलॉजी होगा। अभी हाल में वित्त मंत्री ने कहा बेंगलुरु में कि सेमीकंडक्टर, एआई, ये सारी चीजें जो हैं, देश के जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं अब वो ये बात करने लगे हैं। प्रधानमंत्री तो पहले से करते हैं, एआई हो, सेमीकंडक्टर हो। आगे का भारत जो 2047 का आप देखेंगे, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा क्या ग्रोथ रेट होगा क्या होगा, पर टेक लेड ग्रोथ होगा, और 2047 में हम सिर्फ विकसित भारत नहीं होंगे, हम एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब होंगे जो बनाता भी है, टेक्नोलॉजी इनोवेट भी करता है, और विश्व में सप्लाई भी करता है।
1: दिलीप जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स।
0: देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री का एक जर्नी देखें तो गुजरात से भारत तक जो ये एक यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी परिवर्तन की एक कहानी है। यह सरकार की ये बदलती भूमिका है, तो जहाँ पे पहले वो एक गेट कीपर थी, आके आपको सबके चीज के लिए एक परमिशन चाहिए होता था, अब सरकार की अनुमति चाहिए थी, फिर सुविधाएं देने के लिए और सब चीजें प्राप्त करने के लिए मल्टीपल विंडोज हुआ करते थे, आपको कहीं कहीं जाने थे। अगर अब जो सरकार देखे, अब कोशिश है कि ये सरकार कारोबार, निवेश और रोजगार के नए अवसर बनाने की काम कर रही है, और जैसे जो आज की इकोनॉमी है वो 2047 में इकोनॉमी काफी अंतर होगा, और इस सरकार का ये प्रयास है कि सबको साथ लेके, सबका विकास लेकर के आगे करके एक विकसित भारत बनाए।
1: यदि हम देखें तो पिछले 25 वर्षों में सुशासन से समृद्धि की यात्रा केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये करोड़ों युवाओं के सपने को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़ने की कहानी है। गुजरात की सिंगल विंडो से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल इंडिया और विश्व स्तरीय वित्तीय केंद्रों तक पहुंच गया है। दिलीप जी आपका और संतोष जी आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद आनंद जी।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 18वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यापक निवेश और सुलभ कारोबार। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnhdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
5: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला 20 साल की

0: साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं ये गीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:50 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय हिमाचल प्रवास कल से बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। मनाली और अटल टनल जाने का भी कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता शिष्टाचार व संयम के साथ जनता के बीच रखी अपनी बात। सिरमौर जिला के नाहन डिपो से एचआरटीसी की 10 नई इलेक्ट्रिक व 7 डीजल बसों को दूसरे डिपुओं में भेजने से परेशानी बढ़ी। एशियन खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली चंबा जिले की उड़नपरी सीमा ने युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आह्वान। और प्रदेश में अगले 3 दिन अधिकतर स्थानों में आंधी व गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 6 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति बिलासपुर स्थित एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी। इसके बाद उनका मनाली और अटल टनल जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और विशेष यातायात प्रबंध

0: लागू किए गए हैं। राष्ट्रपति के बिलासपुर में एम्स दौरे को देखते हुए 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। इसके तहत जिले में दोनों दिशाओं में आने जाने वाले वाहनों को घागस चौक से कंदरौर, बघेड़, ओहर, ऋषिकेश, भराड़ी, ओपन एयर जेल जबली मार्ग से वाहनों को भेजा जाएगा। उधर कुल्लू जिले में 6 अक्टूबर रात 8 बजे से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। 7 अक्टूबर को पलचान से अटल टनल तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसी तरह 6 से 8 अक्टूबर तक रामबाग से हिडिंबा मंदिर व ओल्ड मनाली की ओर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता शिष्टाचार के साथ जनता के बीच अपनी बात रखें। वे कल ऊना जिला के पालकवाह में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हरोली की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी की विचारधारा सरकार के विकास कार्यों व हरोली में हुए बदलाव को जनता के बीच मजबूती से रखना है। मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्ष के किसी भी दुष्प्रचार या गलत बयानबाजी का जवाब शिष्टाचार व संयम से देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में विकास को लगातार गति मिल रही है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़क, शिक्षा व पेयजल योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालीन शिकायतों का समाधान किया जाएगा। डॉक्टर सिंह इस वर्ष 13 मई को आयोजित 16वीं पेंशन अदालत की सफलता की गाथाओं को उजागर करने वाले छोटे पोस्टर जारी करेंगे। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन मुद्दों का विमोचन भी किया जाएगा। सिरमौर जिला में हिमाचल पथ परिवहन निगम के नाहन डिपो को हाल ही में 25 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली है। हमारे जिला संवाददाता ने बताया कि एचआरटीसी की इन नई इलेक्ट्रिक बसों में से 10 बसें प्रदेश के अन्य डिपो में भेज दी गई हैं, जिससे यहां विभिन्न रूटों पर इसका असर देखने को मिल रहा है।
1: सिरमौर जिला के नाहन डिपो को जुलाई और अगस्त महीने में 25 इलेक्ट्रिक बसें मिली थी, जिन्हें अलग अलग रूटों पर चलाया जा रहा था, मगर अब इन 25 बसों में से 10 इलेक्ट्रिक बसों को रोहडू, रामपुर और पठानकोट डिपो में भेजा गया है, जिसके बाद सिरमौर जिला में विभिन्न रूटों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 7 डीजल बसें भी शिमला जिला के अलग अलग डिपो में भेजी गई है। नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने के बाद नाहन को ई डिपो के रूप में विकसित किए जाने की उम्मीद जगी थी, मगर अब फिर बसों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: युवा मामले और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा पद यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें 1 लाख से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। माय भारत का अर्थ है मेरा युवा भारत। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आयोजित इस पहल का उद्देश्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। इसमें कई प्रतिभागियों ने नशा मुक्त युवा की शपथ ली और नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: यार 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। एशियन खेलों में कांस्य पदक हासिल करने वाली चंबा जिले की उड़नपरी सीमा ने युवा पीढ़ी से नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहकर खेलों से जुड़ने का आह्वान किया है। कल देर शाम

0: पैतृक गांव रेटा पहुंचने पर उन्होंने एशियन खेलों में जीत का श्रेय अपने माता पिता को दिया। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। सीमा ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य देश के लिए और अधिक पदक जीतना रहेगा।
1: मेरे इस मेडल के जीतने के बाद तो आप सबको पता ही होगा कि पूरे भारतवासियों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है। मैं सबका बहुत ज्यादा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मेरे पूरे भारतवासियों का, मेरे हिमाचल वासियों का। मैं यही चाहूंगी कि जितने भी यंग एज में है वो सब कोई भी नशे की तरफ ना, आप कोई भी ऐसा काम ना करो। मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है इस मेडल के। जिस टाइम पे 2015 में मैं घर से निकली थी उस टाइम पे कोई भी अपनी बेटियों को इतने दूर नहीं भेजता था, तो मेरी माँ ने मुझे रोका नहीं, तो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और शायद इनको बहुत प्राउड फील भी है।
0: हिम ई पंचायत प्रोसीडिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की बैठकों की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा और इससे बैठकों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: हिम ई पंचायत पोर्टल पर पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारी जुड़ सकेंगे। पंचायत, बीडीसी और जिला परिषद की बैठकों का एजेंडा, बैठक का विवरण एवं प्रोसीडिंग ऑनलाइन अपडेट की जा सकेगी। पोर्टल में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों सहित ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। बैठक के लिए आवश्यक कोरम की स्थिति भी सिस्टम के माध्यम से निर्धारित की जा सकेगी। बैठक की कार्रवाई तैयार होने के बाद ई हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे भौतिक रिकॉर्ड पर निर्भरता कम होगी और बैठकों में संबंधित डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। हिम ई पंचायत को पंचायती राज विभाग की ओर से आधिकारिक वेबसाइट के साथ भी जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में आम नागरिक कहीं से भी किसी पंचायत की बैठक की कार्रवाई देख सकेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से युवराज शर्मा।
0: प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है और मैदानी इलाकों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 3 दिन मौसम में बदलाव आएगा। विभाग ने 6 से 8 अक्टूबर तक राज्य के अधिकतर स्थानों में आंधी व गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने का भी अनुमान है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, चुनाव जनगणना की ड्यूटी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, सरकार करेगी विचार। दिव्य हिमाचल के शब्द है, हिमाचल को मिलेंगे 237 करोड़, सुक्खू सरकार ने कैंपा के तहत केंद्र को भेजी थी 288 करोड़ की कार्य योजना। हिमाचल दस्तक लिखता है, हिमाचल में लॉटरी के लिए अलग से बनेगा निदेशालय, ट्रेजरी और अकाउंट से अलग होगा लॉटरी विभाग। अमर उजाला ने खबर दी है, टांडा में प्रशिक्षु डॉक्टर से छेड़छाड़ का आरोपी लैब तकनीशियन निलंबित। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, शिमला समेत 6 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है, केलंग कल्पा में 20 वर्ष बाद अक्टूबर में सबसे गर्म दिन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय हिमाचल प्रवास कल से, बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल, मनाली और अटल टनल जाने का भी कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता शिष्टाचार व संयम के साथ जनता के बीच रखें अपनी बात। सिरमौर जिला के नाहन डिपो से एचआरटीसी की 10 नई इलेक्ट्रिक व 7 डीजल बसों को दूसरे डिपो में भेजने से परेशानी बढ़ी। एशियन खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली चंबा जिले की उड़न परी, सीमा ने युवाओं से नशे से दूर रहने का किया आह्वान। और प्रदेश में अगले 3 दिन अधिकतर स्थानों में आंधी व गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। जी हाँ, सुबह के 10 बज चुके हैं और यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए प्रोग्राम गीतों का कारवां। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मुकेश की आवाज में गाए संगम फिल्म के इस गीत के साथ। तो प्यारे प्यारे से गीतों को सुनने के लिए यूं ही दिल से जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी धर्मशाला पर। प्रोग्राम चल रहा है गीतों का कारवां।

जी हाँ, गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र में, जिससे आज हम आपको सुनवा रहे हैं बीते दौर के कुछ बेहद ही प्यारे प्यारे से गीत। और ऐसा ही एक और गाना किशोर कुमार की आवाज में आप सभी को सुनवा रहे हैं, फिल्म है ज्वेल थी।

जी हाँ श्रोता, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गोरा और काला फिल्म से ये गीत। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं गीतों का कारवा कार्यक्रम। कार्यक्रम में अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है राजा और रंक फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की। इस फिल्म में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोतो, गीतों का कारवा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत। इस फिल्म में संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। प्यारे प्यारे से गीतों को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।

श्रोता, इसी गीत के साथ आज का गीतों का कारवां कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ों के सुर सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं कंवर सिंह के गाए इस लोकगीत के साथ।

कमर सिंह की आवाज में अभी आपने ये लोकगीत सुना। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं, इसे गाया है वैशाली बत्थल ने।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र के साथ। सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। अगला लोकगीत लीजिए सुनिए।

0: ये लोकगीत अभी आपने सुना पूरनचंद शर्मा का गाया। अगला लोकगीत इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
2: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
1: विजिट तनिष्क विद्युत टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
0: पहाड़ों की सुर कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए अक्षर सिंह परमार को।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए ये लोक भजन जिसे गाया है रवि दत्त ने।

हिमाचली लोकगीत आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं। 11 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे।

0: समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद उनका मनाली और अटल टनल जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और विशेष यातायात प्रबंध लागू किए गए हैं। राष्ट्रपति के बिलासपुर में एम्स दौरे को देखते हुए 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है। इसके तहत जिले में दोनों दिशाओं में आने जाने वाले वाहनों को घागस चौक से कंद्रौर, बघेड़, ओहर, ऋषिकेश, भराड़ी, ओपन एयर जेल जबली मार्ग से वाहनों को भेजा जाएगा। उधर कुल्लू जिले में 6 अक्टूबर रात 8 बजे से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों को अटल टनल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। 7 अक्टूबर को पलचान से अटल टनल तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसी तरह 6 से 8 अक्टूबर तक रामबाग से हिडिंबा मंदिर व ओल्ड मनाली की ओर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता शिष्टाचार के साथ जनता के बीच अपनी बात रखें। वे ऊना जिला के पालकवाह में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हरोली की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी की विचारधारा सरकार के विकास कार्यों व हरोली में हुए बदलाव को जनता के बीच मजबूती से रखना है। मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्ष के किसी भी दुष्प्रचार या गलत बयानबाजी का जवाब शिष्टाचार व संयम से देना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में विकास को लगातार गति मिल रही है। सिरमौर जिले में हिमाचल पथ परिवहन निगम के नाहन डिपो को हाल ही में 25 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं। हमारे जिला संवाददाता ने बताया कि एचआरटीसी की इन नई इलेक्ट्रिक बसों में से 10 बसें प्रदेश के अन्य डिपुओं में भेज दी गई है, जिससे यहाँ विभिन्न रूटों पर इसका असर देखने को मिल रहा है।
1: सिरमौर जिला के नाहन डिपो को जुलाई और अगस्त महीने में 25 इलेक्ट्रिक बसें मिली थी, जिन्हें अलग अलग रूटों पर चलाया जा रहा था, मगर अब इन 25 बसों में से 10 इलेक्ट्रिक बसों को रोहडू, रामपुर और पठानकोट डिपो में भेजा गया है, जिसके बाद सिरमौर जिला में विभिन्न रूटों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 7 डीजल बसें भी शिमला जिला के अलग अलग डिपो में भेजी गई है। नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने के बाद नाहन को ई डिपो के रूप में विकसित किए जाने की उम्मीद जगी थी, मगर अब फिर बसों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: एशियन खेलों में कांस्य पदक हासिल करने वाली चंबा जिले की उड़नपरी सीमा ने युवा पीढ़ी से नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहकर खेलों से जुड़ने का आह्वान किया है। कल देर शाम अपने पैतृक गांव रेटा पहुंचने पर उन्होंने एशियन खेलों में पदक का श्रेय अपने माता पिता को दिया। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। सीमा ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य देश के लिए और अधिक पदक जीतना रहेगा।
2: मेरे इस मेडल के जीतने के बाद तो आप सबको पता ही होगा कि पूरे भारतवासियों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है। मैं सबका बहुत ज्यादा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मेरे पूरे भारतवासियों का, मेरे हिमाचल वासियों का। मैं यही चाहूंगी कि जितने भी यंग एज में हैं वो सब कोई भी नशे की तरफ ना, आप कोई भी ऐसा काम ना करो। मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है इस मेडल के। जिस टाइम पे 2015 में मैं घर से निकली थी, उस टाइम पे कोई भी अपनी बेटियों को इतने दूर नहीं भेजता था, तो मेरी माँ ने मुझे रोका नहीं, तो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ और शायद इनको बहुत प्राउड फील भी है।
0: प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है और मैदानी इलाकों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 3 दिन मौसम में बदलाव आएगा। विभाग ने 6 से 8 अक्टूबर तक राज्य के अधिकतर स्थानों में आंधी व गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने का भी अनुमान है। कुल्लू जिला के मोहल में कल देर शाम कंबल व गद्दों के एक स्टोर में आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। गनीमत यह रही कि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर समय रहते आग पर नियंत्रण पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी।

आकाशवाणी धर्मशाला दे कार्यक्रम महक पंजाब दी नूं सुनन वाले सारे श्रोताओं दा दिलों स्वागत है। ए प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो अपने दोस्त मीनाक्षी दे नाल।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਮਜ਼ਾ ਲਓ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਗਮੇ ਦਾ।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ FM ਬੈਂਡ 103.4 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाबी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर 11:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी। वो लिखते हैं,
3: जो निश्चल प्रेम में रहते हैं वो छल समझ नहीं पाते और जो छल में रहते हैं वो निश्चल प्रेम नहीं समझ पाते।
2: जी आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो हमें पहला संदेश मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा।
3: और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और ख्याति सारवा।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
3: और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
2: हम उमंग कार्यक्रम में मासिक संस्करण श्रोता संवाद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को प्राप्त होती है। सच मानिए, ये कार्यक्रम जानकारी का महत्वपूर्ण खजाना है। 7 सितंबर के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़ से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सती बाई साहू जी का।
2: ईदूग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका उडुपी जिला कर्नाटक से एच सिद्धार्थ जी लिखते हैं।
3: आप लिखते हैं, आदरणीय कार्यक्रम के बारे में हमारी प्रतिक्रिया
2: जी।
3: स्त्री शिक्षण को आपने प्रोत्साहन देकर महिलाओं में हिम्मत बढ़ाई है। पुराने जमाने में पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक कार्यकलाप ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लोग खारिज करते थे
2: जी।
3: जेंडर डिस्पैरिटी पर आपका श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब सुनिए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
3: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है और ये कहाँ स्थित है।
2: इसका उत्तर है साथियों, दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव पर स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है।
3: और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया।
2: इसका उत्तर है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा उसकी माता को दिया गया था।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न था, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के भीतर भूकंप, भूगर्भीय, ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण सुनामी आती है। समुद्र के भीतर भूस्खलन भी इसका मुख्य कारण है।
3: और हमारा अगला सवाल था कि मेघालय शब्द का क्या अर्थ है।
2: मेघालय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ और आलय
3: जी।
2: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो अर्थ बना मेघालय यानी मेघों या बादलों का घर।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
2: गांधी जी द्वारा

0: वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम। तो आज के पहले कार्यक्रम के क्रम में हम सुनेंगे हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
0: आइए सुनते हैं श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। श्रोताओ, प्रस्तुत है उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और एनसीईआरटी द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर। तो आज इस क्रम में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की नई पाठ्य पुस्तकों की। तो श्रोताओ, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव। आप एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, आज के उमंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूं और आपने समय दिया मुझको सुनने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान एक बहुत अहम विषय है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के बारे में बताने का कोशिश करूंगी।
1: तो डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में एनसीईआरटी की पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे की विषय वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए और बताइए कि यह सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा है।
2: हाँ अजीत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है, जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो विषय तो समाज से जुड़ा ही होता है
1: जी।
2: दूसरा, समाज और प्रकृति में क्या समन्वय है उसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से
1: जी।
2: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बल दिया है कि जब भी हम बच्चों को समाज के अध्ययन के बारे में बताने का प्रयास करें तो हमें समाज के जो विषय हैं, जैसे आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये इसका समावेश है और हम इसको सोशल साइंस कहते हैं, यानी समाज शास्त्र। आप हमारी पाठ्य पुस्तक मिडिल स्टेज की ले लीजिए और आप देखिए कि जितनी भी पाठ्य सामग्री है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अतीत के चित्रपट, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या जुड़ाव है
1: जी।
2: इन विषयों को हम अपनी छठी, सातवीं, आठवीं में दिए हैं और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से, आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है, यानी कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए इतिहास ले लीजिए कि समय सारणी से जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमारा विषय वस्तु आपको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ घटनाओं का विवरण हम जब करते हैं तो हमारा विषय वस्तु आपको जोड़ने की कोशिश करता है ताकि आपके मन में जिज्ञासा, आपके मन में उस विषय के बारे में और गहन ढंग से कहां से लें उसके बारे में, और तीसरा, आप किन गतिविधियों के माध्यम से ये विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्रकृति आपदा के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई तो प्रकृति आपदा के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि क्यों ये घटती है और हमें क्या करना चाहिए
1: जी।
2: इसी तरह हमारे पाठ्य पुस्तक में आप देखिए, जो विषय हमारे भूगोल से जुड़ा है, हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो
1: प्राकृतिक संसाधन कह ले,
2: हमारी प्रकृति संसाधन है वो क्या है, और साथ साथ हम बताने की कोशिश करते हैं उसकी संरक्षणा हम कैसे करें, ताकि आज आपने सुना होगा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्य पुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, तो एक गौरव जैसी भावना आती है कि हमारे भारतवर्ष में ये विषय

0: इतना अहम था, हमारे जितने भी पर्सनालिटीज थे, आप कोई भी विषय ले लीजिए, उन्होंने गहन ढंग से अध्ययन करके, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में ले लीजिए, कितनी अच्छी बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आगे ले जाता है, साथ साथ प्रकृति के बारे में भी बताने का प्रयास किया जाता है, क्यों और क्या, ऐसे सवालों का जवाब भी हमारी ज्ञान परंपरा में आपको मिलेगा जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे
1: जी।
0: अनेकता में एकता एक ऐसा पाठ है हमारी सभ्यता संस्कृति में जुड़ा है हमारे पाठ्य पुस्तक में, जहां मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हमारे जो रीति रिवाज है या हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो विभिन्न तो होते ही हैं, लेकिन हर विभिन्नता में एक एकता की भी
1: भावना
0: आती है, और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको एक सूत्र में जोड़ करके हमारी विकसित यात्रा सभ्यता और संस्कृति का भी एक बहुत अहम स्थान है, और हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसको अच्छी तरह से छठी सातवीं आठवीं में दर्शाया है। इसको कृपा करके पढ़िए और अपने प्रांत में भी देखने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं और किस तरह से हम उससे जुड़े रखते हैं। कितने समय से ये शुरू हुआ लेकिन आज भी हम उसको बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, गाना गाते हैं, और आप देखिए आज हम लोग की जो हेरिटेज है, आर्ट है, कितना लोग इसको लोकप्रिय ढंग से अपने जीवन में इसको उतारते हैं, और बच्चे आप लोग तो अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी इसका समावेश करते हैं, और ये सारी चीजें आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलेगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी चर्चा किया गया, कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं हमारे भारतवर्ष में, उसके बारे में भी चर्चा की गई है, और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बार्टर से आज मोनेटाइजेशन में हमारी यात्रा कैसे रही, साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भी विभिन्न ढंग से बताया गया है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये भी आप पाएंगे, और लोकतंत्र के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये एक जुड़ाव जो हमारी सामाजिक विज्ञान को बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम इसको पढ़ें, एग्जाम्पल्स कैसे हम दे सकें, और साथ ही साथ जब हम विश्लेषण करें तो तथ्यों के आधार पे हमें निष्कर्ष पे आना चाहिए, ना कि केवल पढ़ करके, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे NEP 2020 में दिया गया है, वो भी आप तथ्यों का पहले एकत्रित करिए, उनका विश्लेषण करिए, तब आप नतीजे पे आ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, गतिविधि कई दी है जो आप कर सकते हैं और खुद जुड़ सकते हैं इस विषय से, क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ा है। कुछ ऐसे हमारे पाठ हैं जो अतीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अतीत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक हमारा ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान का, कंटिन्यूटी एंड चेंज, किस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति किए, और क्या बात है कि कुछ चीज आज भी प्रासंगिक है, उसको हम लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमारी आर्ट है, संगीत है, हमारी सभ्यता संस्कृति है,
1: अलग अलग कलाएं हैं,
0: अलग अलग कलाएं हैं, इन सबको हम आज भी जोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें खुद को गौरव महसूस कराते हैं और हमारी आइडेंटिटी को, इंडियननेस को स्ट्रेंथन करने का कोशिश करते हैं।
1: जी, तो प्रोफेसर गौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से इस पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी दी। मेरा एक प्रश्न और है आपसे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इस पुस्तक को पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों को किस प्रकार का निर्देश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं भी शिक्षक रह चुकी हूँ और मेरा अपना मानना है कि हम विधि को बहुत ही सरल ढंग से और बाल केंद्रीय अगर हम बनाते हैं तो बच्चे का जुड़ाव होना चाहिए। कक्षा में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को हम समय दें कि वो प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा के बारे में औरों को भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक किरण बच्चों के अंदर लाते हैं कि ये विषय केवल पढ़ने का ही नहीं है, समझने का भी है, और आप खुद उसके साथ संवाद करें, क्योंकि बुक तो आपके सामने है लेकिन जब आप उसको आंखों से भी पढ़ेंगे, उसका अध्ययन भी करेंगे और उसको चर्चा करेंगे, इसका मौका आपको बच्चों को देना होगा। हम सब मानते हैं कि क्लास का समय जो है निर्धारित होता है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ाएं? कैसे पढ़ाने के लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, यानी जो भी विधि पाठ में दी गई है

सृजन है या कुम्हार है, लोहार है, इनसे बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये जो कार्य हैं, ये कार्य कितने मुश्किल हैं और इनकी जो उन्होंने चीजें बनाई हैं वो आम जीवन से कैसे जुड़ा हो। और इससे बच्चों का जुड़ाव संस्कृति से भी होगा, कार्य से भी होगा, अर्थव्यवस्था से भी होगा। तो आप देखिए, आपने एक लिंकेज बताया, इंटरडिसिप्लिनरी भी बताया, बच्चों को अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य जोड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ पाठ को रुचिकर बनाया, बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा।

0: में जानकारी हासिल करेंगे। और जब ऐसा होता है तो समाज का जो अन्य विषय है उससे भी जुड़ाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे छठी से आठवीं की जो पाठ्य पुस्तक है वो एक है, इट इज वन टेक्स्ट बुक। और इस टेक्स्ट बुक की जो विशेषता ये है कि वो जितने भी विषय हैं उसको पिरो करके एक पाठ बुक में बनाया गया है। और इसको आगे करते हुए, क्योंकि आप पे बहुत दायित्व है कि आप इसको कैसे बच्चों तक पहुंचाएं, जब उनको इन सारे विषयों से जोड़िए, पिरोइए और उनके जीवन से जोड़िए और ये बताने की कोशिश करिए कहाँ थे और हम कहाँ आ गए।
1: जी
0: ये बहुत जरूरी है,
1: जी
0: कंटिन्यूटी एंड चेंज।
1: जी अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि इस पुस्तक में, यानी समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इसी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, हम ये जानना चाहेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजीत जी।
1: जी
0: मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी पाठ्य पुस्तक में महिलाओं को जहां जहां उन्होंने योगदान दिया है उसको समावेश किया है। और उन्होंने बॉक्स आइटम में भी दिया है, लेख में भी उनका विवरण किया है, और जहां जहां समाज में अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी दिया है। जैसे आप ले लीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6। कक्षा 6 में जो महिलाओं के बारे में दिया गया है, जैसे कि गार्गी जी के बारे में बताया है, वंदना बहादुर मैदा के बारे में दिया गया है, जो एक सरपंच थी अपने गांव की और उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। इसी तरह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में कनगी महारानी के बारे में बताया गया है और प्रभावती गुप्ता जी के बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में मुतम्मा के बारे में बताया गया है और हमारी कक्षा 8 की पुस्तक में रानी दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी अक्कबा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन महिलाओं का योगदान जिस जिस क्षेत्र में किया है उसके बारे में दिया गया है। और अगर आप हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक देखें तो आप देखिएगा कि कक्षावार जहाँ जहाँ महिलाओं ने योगदान दिया है उनके बारे में चर्चा किया गया है। और ये क्यों किया गया है? ताकि आपको भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आप एक खोज करिए कि ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में गहन योगदान दिया है पर कुछ कारणवश, जिनको हम कहते हैं लेसर नोन, उनके बारे में भी आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि आपको
1: जी
0: खुद एहसास होगा कि जब भी समाज विकास के रास्ते पे चला, महिलाओं का योगदान हमेशा ही रहा। और आज भी आधुनिक भारत में भी आप देखिए कि हमारी महिलाएं किन किन क्षेत्र में कामयाबी के ढंग से अपना योगदान दे रही हैं। आर्मी में भी देख लीजिए, नेवी में देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, जिनको पहले हम कहते थे अनकन्वेंशनल रोल,
1: हाँ, कार्य के किसी भी क्षेत्र में आजकल
0: सब
1: महिलाएं देखी जा
0: सभी
1: सकती हैं।
0: क्षेत्र में
1: जी
0: उनका योगदान है। और हम बहुत गर्व के साथ भी कहना चाहते हैं कि हमारी एक पाठ्य पुस्तक फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के में, जब भी पुस्तक आप उठाइए तो खेल के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है वो बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप देखिए कि पाठ्य पुस्तक में विजुअल कंटेंट में महिलाओं का समावेश है, जिसको हम कहते हैं जेंडर इंक्लूसिवनेस।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर गौरी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और एनसीईआरटी की इस विशेष पाठ्य पुस्तक के बारे में आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी। तो श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी आशा है कि इसके द्वारा हमारे श्रोता बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे मौका दिया। हम अपने सारे श्रोताओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना, पर मैं और धन्यवाद आपको दूंगी जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़िए और एक यात्रा में जाइए कि हम और इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ें। तथ्यों को एकत्रित करिए और कोशिश करिए कि पाठ में आप और क्या जोड़ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद सभी को, आपको
1: जी
0: अजीत जी।
1: धन्यवाद। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता संवाद। तो अब सुनते हैं आज का अगला शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है आम का पेड़।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चों को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा बताया गया है कि मात्र पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी लगातार देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है।
0: आम का पेड़।
2: गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा,
3: ऐसे ही मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा।
2: उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी

अभी आपने सुना एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 12 बजने को हैं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सैनिकों के लिए और शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए बॉर्डर फिल्म से समर्पित इस देशभक्ति गीत के साथ। आवाजें हैं रूप कुमार राठौर और साथियों की। संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 MHz पर। फिल्म जीत का अब ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम का अगला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म हिमालय पुत्र से। गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म दिलवाले से ये गीत, गीत को गाया है कुमार सानू ने। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

इसी गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 12:30 हुए हैं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

जो अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान का दीप जलाते हैं, जो गिरते हुए कदमों को चलना फिर से सिखाते हैं, उन गुरुओं को नमन हमारा जो इंसान को इंसान बनाते हैं। तो कार्यक्रम सुनो सखी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता सखियों को आपके रेडियो दोस्त मीनाक्षी की नमस्ते। स्वागत है सखियों आप सभी का हमारे आज के इस खास अंक यानी हिमाचली संस्कृति में। लेकिन कार्यक्रम में आज सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनकी उंगली थामकर हम जीवन की पहली सीढ़ी चढ़ना सीखते हैं। आज है 5 अक्टूबर यानी कि विश्व शिक्षक दिवस। शिक्षक केवल वह व्यक्ति नहीं जो हमें किताबों का ज्ञान देता है, बल्कि शिक्षक वह है जो हमारे भीतर सोचने की शक्ति, सही और गलत में अंतर करने की समझ और अपने सपनों को पूरा करने का साहस पैदा करता है। माँ अगर हमें जीवन देती है तो पिता हमें सहारा देते हैं और यही हमारे पहले शिक्षक हैं। लेकिन शिक्षक जीवन को सही दिशा देकर उसे सुंदर बनाने का रास्ता दिखाते हैं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को केवल परीक्षा के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि जीवन की परीक्षा के लिए तैयार करता है। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसके हाथ में सिर्फ किताब और कॉपी होती है, लेकिन शिक्षक धीरे धीरे उन किताबों के शब्दों को उसके जीवन के अनुभवों से जोड़ना सिखाता है। कभी शिक्षक की डांट हमें उस समय कठोर लगती है, लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि उस डांट के पीछे भी हमारी सफलता की चिंता छिपी थी। गुरु हमारे समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, अधिकारी या कोई भी सफल व्यक्ति उसकी सफलता की नींव में किसी न किसी गुरु यानी शिक्षक का योगदान जरूर होता है। इसलिए शिक्षक को अक्सर राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। विश्व शिक्षक दिवस हमें ये अवसर देता है कि हम अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करें। तभी तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आइए विश्व शिक्षक दिवस पर हम सभी अपने शिक्षकों को दिल से नमन करें और उनके दिए ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। कलम से लिखे शब्द मिट सकते हैं, लेकिन गुरु की दी हुई सीख कभी नहीं मिटती। वक्त बदलता है, उम्र बदलती है, मगर शिक्षक का आशीर्वाद और संस्कार जीवन भर हमारे साथ चलते हैं। इसी सम्मान और कृतज्ञता के साथ सभी शिक्षकों को विश्व शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बातें अभी और भी हैं, लेकिन बातों के साथ साथ हमारी सखियों का मनोरंजन भी बेहद जरूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
4: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी के खास अंक में, जहां अब हम बात कर रहे हैं विश्व आवास दिवस पर। सखियों, विश्व आवास दिवस हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है और आज यानी 5 अक्टूबर को हम विश्व आवास दिवस मना रहे हैं। घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं, घर वो एहसास है जहां इंसान सुरक्षित महसूस करता है, जहां रिश्ते मुस्कुराते हैं और सपने आकार लेते हैं। विश्व आवास दिवस हमें सम्मानजनक आवास के महत्व की याद दिलाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना है कि हर व्यक्ति को एक सुरक्षित, पर्याप्त और रहने योग्य घर मिलना चाहिए। आखिर घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन, परिवार और भविष्य की नींव है। एक अच्छा आवास वही है जहां स्वच्छ पानी, साफ सफाई, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और आसपास का वातावरण भी सुरक्षित और स्वस्थ हो। विश्व आवास दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने शहरों और गांवों को ऐसा बनाना चाहिए जहां विकास के साथ साथ प्रकृति, पर्यावरण और ज़रूरतमंद लोगों का भी ध्यान रखा जाइए जाए। तो आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और ज़रूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहेंगे। और विश्व आवास दिवस के बाद बात करते हैं अपने हिमाचली गांव की सांस्कृतिक विरासत पर। पहाड़ों की गोद में बसा गांव, जहां मिट्टी में संस्कृति की खुशबू है, जहां हर रिवाज में अपनों का प्यार है, यही हमारे हिमाचल की असली पहचान है। अब बात करते हैं हिमाचल के उन खूबसूरत गांवों की, जहां आज भी हमारी सांस्कृतिक विरासत अपनी पूरी खूबसूरती के साथ जीवंत है। हिमाचली गांव केवल पहाड़, खेत और घरों का नाम नहीं, बल्कि यहाँ की बोली, लोकगीत, लोकनृत्य, पहनावा, खान पान, मेले, त्यौहार और देव परंपराएं हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर हैं। यहाँ के पारंपरिक घर, लकड़ी, पत्थर की कारीगरी, हाथ से बुने वस्त्र और स्थानीय व्यंजन भी हमारी समृद्ध विरासत की कहानी कहते हैं। मेलों और त्योहारों में जब पूरा गांव एक साथ जुड़ता है तो आपसी भाईचारे और सामुदायिक जीवन की खूबसूरती सामने आती है, लेकिन बदलते समय के साथ इस विरासत को सहेजना भी हमारी जिम्मेदारी है। खासकर युवाओं को अपनी लोकभाषा, लोक कला, पारंपरिक संगीत और रीति रिवाजों से जोड़ना जरूरी है ताकि आधुनिकता के साथ हमारी जड़ें भी मजबूत रहें। तो आइए अपनी इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत को केवल यादों में नहीं बल्कि अपने जीवन में भी जीवित रखें। इसी संदेश के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और महसूस कीजिए हिमाचल के गांव की मिट्टी में बसी संस्कृति की खुशबू को, ताकि हमारे हिमाचली गांव की सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध बने। तो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन बातों के साथ साथ हमारे सखियों का मनोरंजन भी बेहद जरूरी है। तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर, धर्मशाला रोड, कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट, TNC अप्लाई।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: खूबसूरत से गीत और विज्ञापनों के बाद एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं मीनाक्षी, कार्यक्रम सुनो सखी के आज के इस खास अंक यानी हिमाचली संस्कृति में, जहाँ बहुत सी बातें और जानकारियाँ हमने अपनी सखियों के साथ साझा की। और अब हमारा समय हो गया रसोई घर में रुक करने का, जहाँ आज मैं बनाने जा रही हूँ घियोर। जी हाँ, एक ख़ास तरह का व्यंजन जिसे बहुत सी जगहों पर किसी ख़ास मौके पर बनाया जाता है, ख़ासकर नई नवेली बहू का इम्तिहान लेने के लिए कि वो रसोई में कितनी माहिर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है करीब 1.5 कटोरी मैदा और उसे 3 कटोरी पानी में अच्छे से मिला लिया है। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। करीब 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और फिर करेंगे गैस ऑन। उस पर रखेंगे नॉनस्टिक पैन या फिर तवे पर भी हम इसे बना सकती हैं। अब अगर हम किसी शुभ कार्य के लिए इसे

आ रही हैं, तो फिर मीठे या मीठे की शौकीन है तो हम आधी कटोरी के करीब शक्कर डाल लेंगे और फिर अच्छे से फेंट लेंगे और तवे पर बिल्कुल पतली लेयर हम इसकी बिछा लेंगे। जैसे ही ये बनता है, मतलब इसको बिल्कुल डोसे की तरह हमने बनाना है, और फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे और देसी घी के साथ इसे खा सकती हैं। और अगर नमकीन पसंद है तो इसमें नमक, जीरा, गरम मसाला, धनिया डालकर इसे भी पतला पतला बना सकती हैं, और अपनी पसंद की चटनी के साथ हम इस स्वादिष्ट से व्यंजन का मज़ा ले सकती हैं। और ये किस तरह से बनाने हैं सखियों, ये हमारे स्वाद पर निर्भर करेगा। मुझे ये मीठे पसंद है तो मैंने मीठे बना लिए, अब आपकी बारी है कि किस तरह से आपको पसंद है। तो ये थी खान पान की बात, और अब हमारा जो समय हो गया है वो हो रहा है इस कार्यक्रम के अंतिम गीत को सुनने का। तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

इसी गीत के साथ सखियो समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी मीनाक्षी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी से दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क

0: का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
2: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
3: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
2: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समझौते में लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। 14वें दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 71,992 पर और निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 22,450 पर था। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिन में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों, साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम अनुकूल होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूम रहा है। देखिए ना, बातों बातों में अक्टूबर भी आ गया। कभी धूप तो कभी छांव की तरह जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन इस बदलते वक्त में अपनों के साथ रूठने मनाने का ये सुरीला सिलसिला और सात रंग से सजे खूबसूरत सपने ही जीने का असली मजा देते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि रूठना सेहत के लिए नुकसानदायक है और आपस में नोकझोंक होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इस दृष्टिकोण से ये इबारत लिखी हुई लग रही है। चलिए भाई, जब रूठने का जिक्र आ गया है तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आज आप किससे रूठे हुए हैं, आज आप किससे रूठे हुए हैं और क्यों रूठे हुए हैं।

अवतार फिल्म का ये गाना राजेश खन्ना और शबाना आजमी, बहुत ही प्यारी सामाजिक फिल्म थी ये, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता जिन्होंने लिखा कि आनंद बख्शी का लिखा ये गीत लक्ष्मीकांत प्यार

0: मोतीलाल का संगीत था। गोलमाल सबसे पहले दूरदर्शन पर देखी थी, पूरा परिवार एक साथ बैठकर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर फिल्में देखता था। घर के बुजुर्गों को ये फिल्म खासतौर पर पसंद आई थी। एक श्रोता ने जवाब दिया है कि शानदार और चुटीले डायलॉग गोलमाल फिल्म के डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि दुनिया की भीड़ में अकेले आदमी को बस एक सच्चा सहारा मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी शादी की शुरुआती दिन थे जब मैं अक्सर अपनी पत्नी को ये गीत सुनाता था। वैसे मैं एक गायक हूँ और जब पत्नी रूठती हैं तो गाने सुनाकर उनको मना लेता हूँ। और फिर एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि सुरीला सफ़र कार्यक्रम आज उन्हें बहुत ही पसंद आ रहा है। और इसके अलावा ये एक श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म अवतार के ज़रिए मुझे एके हंगल याद आ गए और शोले की आपने जो ट्यून बजाई उससे भी एके हंगल याद आ गए। एक श्रोता अपनी नवासी से रूठे हैं क्योंकि वो वीडियो कॉल पर उनसे बात नहीं कर रही है। तो ये हमारे श्रोताओं की बातें और कुछ और कमेंट्स जो हमारे श्रोताओं के आए हुए हैं। उसमें से एक श्रोता ये कहते हैं कि वो अपने शहर मिर्ज़ापुर आए हुए हैं और यहाँ अपने विविध भारती के संग हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता कहते हैं कि आपने याद दिलाया तो याद आया कि अब इस साल के 3 ही महीने बचे हैं और तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं ये गाना इबारत इशारा करती है। और निदा फाजली के बोल आर डी बर्मन का संगीत अक्टूबर का समा कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे गर्मियों से निजात दिलाता हुआ सर्दियों की हल्की दस्तक सुनाता हुआ गुजरे साल के ख्याल लिए हुए अपनी ही धुन में मगन रहता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ख्वाब जब मैं स्कूल में था तो खुद कविताएं लिखा करता था, फिर जिम्मेदारियों में लिखना कब कहाँ खो गया मालूम नहीं। और सुरीला सफ़र कार्यक्रम की इबारत पढ़कर कविताएं लिखने का जुनून जागा है और ख्वाब तो ये है कि विविध भारती मुझे बुलाए और मेरा इंटरव्यू करे। ओ हो हो बड़ी प्यारी बात। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कतरा कतरा बरसना और लफ्ज हो जाना आसान नहीं है कुछ कहना और शायर हो जाना।
1: दिल आज शायर है गम आज नगमा है सब ये गजल है।
0: फिल्मी दुनिया के सबसे छबीले नायक का गाना
1: दिल आज शायर है गम आज नगमा।
0: कौन है वो?

भाई देखिए, ये इतना प्यारा गाना और यूं लगता है कि जैसे इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। ये प्यार कोई खिलौना नहीं, हर कोई ले जो खरीद। हमारे एक श्रोता ने ये पंक्ति लिखी है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखती हैं, ये गीत ऐसा है जैसे कहीं दूर क्षितिज पर बस मन बढ़ा चला जा रहा है। हीरोइन का चौड़ा माथा, गहरी आँखें, लंबा कद और हल्की सी मुस्कान इस गीत का पीछा करती है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि संभाजी नगर में अवतार फिल्म देखी थी। उसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हम आपसे रूठे हुए हैं क्योंकि आप पहले प्रोग्राम को अनोखे अंदाज में प्रस्तुत करते थे पर अब नहीं करते। भाई ऐसा आपको क्यों लगा? अंदाज तो वही है, कार्यक्रम भी वही है और वैसे ही तो पेश किया जा रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि इस गीत की खासियत यह है कि इसमें कोई अंतरा रिपीट नहीं होता। देवानंद एक ही जगह पर पूरा गीत गाते हैं और साथ में जाहिरा हैं। नीरज ने ये गाने लिखे थे, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गाना सुनते ही ये समझ में आ जाता है कि देव आनंद गा रहे होंगे। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने विविध भारती की सालगिरह पर प्रसारित कार्यक्रम अच्छा लगा इसकी बधाई दी है और कहा है कि अक्टूबर का महीना शुरू होते ही त्योहारों की खुशबू महसूस होने लगती है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अक्टूबर आते ही जो सबसे खुशी की बात होती है वो ये कि विद्यार्थियों के लिए अब छुट्टियां करीब हो जाती हैं। बड़ी बढ़िया बात कही है आपने। और अब मुझे लगता है कि चूंकि शायरी की बातें चली हैं तो इसी तरह के ख्याल को आगे बढ़ाते हैं। आप में से कितने श्रोता ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लिखते हैं, शेर कहते हैं या कविताएं कहते हैं? कुछ पंक्तियां हमें लिख भेजिए। तब तक शैलेंद्र सिंह ये बात कह रहे हैं। फिल्म बॉबी के जरिए फैशन की एक नई लहर शुरू हुई थी और फैशन की लहर तो घूम फिर कर वापस भी आती है। क्या आपके जमाने में बॉबी के फैशन को अपनाया गया था?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि या लिखते हैं कि हम कविता करते थे, अब कभी कभार जन्मदिन पर चार लाइनें लिख देते हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि ऋषि कपूर बेल बॉटम में इस गाने में नजर आते हैं। सचमुच में शायर तो नहीं, लेकिन विविध भारती के लिए थोड़ी सी शायरी कर लेते हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, फूलों सी नाजुक चांद सी हंसी हो तुम, मेरे दिल के बागों की अकेली कली हो तुम, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मेरी नजरों में सबसे खूबसूरत हो तुम। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अपनी कविता लिखी है, यूं तो जिंदगी भर का सफर पर साथ जब तुम्हारा हो, जिनके अंदाज जीने के अंदाज निराले हो जाते हैं, जीना तो हर हाल में। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ तुकबंदियां यूं ही हम कर लेते हैं, मन की तरंगों को शब्दों में समेट लेते हैं, सुरीला सफर संग ताल में ताल कुछ मिला लेते हैं, कोई शाबाशी न दे तो खुद ही पीठ थपथपा लेते हैं, भाई वाह। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इन नन्ही आंखों में जब भी झांकते हैं हम, भूल जाते हैं जिंदगी के सारे गम, क्या खूब जादू है इन मासूम चेहरों में, हमें फिर से हमारे बचपन से मिलाते हैं हम। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि शैलेंद्र सिंह आए थे नायक बनने, पर राज कपूर की कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया और बाद में गायक बन गए। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती हैं कि जब बॉबी आई थी तब ही मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे घर का नाम बॉबी रख दिया गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि सुरीला सफर का आधा सफर ऑफिस पहुंचते पहुंचते निकल गया, अब इबारत क्या देखें, जो गाने बाकी हैं उनकी लिस्ट उन्होंने लिखी है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो देर से शामिल हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम के गानों का अंदाजा लगा रहे हैं। तो भाई इबारत में से एक गाना तो ये है, लेकिन आपको बताना है कि ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है। और हाँ, जरा ये भी बताइए कि लंच टाइम हो गया है, आपके घर पर आज लंच में क्या बना है।

कई लोगों को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने एकदम से मेन्यू लिख दिया है कि आज उनके लंच में क्या है। एक श्रोता हैं जो मक्के की रोटी और मक्खन है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि सावन में कढ़ी नहीं बनाते। आज सीजन का पहला साग और कढ़ी बनाई है, मक्के की रोटी और मक्खन साथ में है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे गांव देहात में लंच टाइम नहीं होता, एक बार सुबह और एक बार शाम को भोजन बन जाता है। एक और श्रोता है जो लंच करते हुए कार्यक्रम सुन रहे हैं और कहते हैं कि टिफिन में रोटी मिक्स वेजिटेबल है और दाल चावल और अचार। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज तो भाई हमारे घर में मूली की सब्जी बनी है और ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कि उनके यहाँ चना और तुअर की दाल मिक्स करके बनी है, हरा धनिया डाल के, और इसके अलावा आलू की सब्ज़ी, और उनको महीनों में 30 दिन आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि अक्टूबर की खास बात यह है कि प्रकृति भी शांत हो जाती है, ना बादल ना बिजली, नदी की धारा की तरह शांत हो जाती है। बदली हुई ऋतु का मन पर भी प्रभाव पड़ता है, उदासी और नीरसता को दूर करते हैं अक्टूबर के महीने में आने वाले उत्सव। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ लंच में आज दाल चावल रोटी और अचार है, ये मेरा फेवरेट खाना है। ये कितने लोगों का फेवरेट खाना है ये भी बताइएगा। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि रजा मुराद पर फिल्माया गया है ये गाना और हमारे शहर के एक मुशायरे में कई बार वो आ चुके हैं। एक श्रोता हैं जिनके घर पर आज दाल बाटी परोसी जा रही है, भाई मुंह में पानी आ गया। एक और श्रोता हैं जिनके घर में है आलू परवल की सब्जी, दही, पापड़, कच्ची मिर्च और कढ़ी, ओ हो हो हो हो। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने अपनी एक लघु कथा भेज रखी है, पर कार्यक्रम में वक्त कम है और इसलिए लघु कथा पढ़ना यहाँ संभव नहीं है। और एक श्रोता है जिनके घर में बन रही है बेसन की कढ़ी, कोथिंबीर की करी, कमल ककड़ी, भाई क्या क्या मेन्यू है, छोले भटूरे और रोटी किसी के घर का मेन्यू है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में कार्यक्रम करते हुए और यहाँ कोई दाल बाफला खा रहा है, कोई परवल और आलू की सब्जी, और ओ हो हो हो हो। बस अब मुझे लगता है कि अब ये खाने का मेन्यू नहीं पढ़ना चाहिए, गाने के मेन्यू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातों वाला मेन्यू है इनमें हो गया है मुंह में पानी। छोटी बातें।

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि भाई मजा आ गया आज के इस कार्यक्रम में, इतना सारा मेन्यू सुनकर आप लोगों को बांधे रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, देखिए ये जो खाने पीने की बातें, इनको सुनकर मुंह में पानी भी आ गया और गला भी फंसने लगा, ये क्या हो रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब आप सबके घर के लंच का मेन्यू सुनकर मुझे अपने घर की रोटी सब्जी नहीं भा रही है। मजेदार है, अभी तो और मेन्यू आने वाला है क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने ये मेन्यू लिख छोड़ा है। इडली सांभर कोई खा रहा है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रही है कि मैं तो खाना बनाते बनाते आपको संदेश पोस्ट कर रही हूँ, और इस चक्कर में 15 मिनट का काम एक घंटे में हो रहा है क्योंकि थोड़ा खाना बनाते हैं फिर मोबाइल उठाते हैं और उस पर कमेंट लिखना शुरू हो जाते हैं। तो भाई खाना बनाने में व्यवधान हो रहा है सुरीला सफर के जरिए। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज कढ़ी आलू की सब्जी साथ में चटनी बनी है, और एक श्रोता है जिनके घर पर मछली इलिश बनी है और आलू की सब्जी। एक श्रोता लिखते हैं कि श्राद्ध के चलते ज्यादातर घरों में खीर पूड़ी हलवा आलू की सब्जी ही मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल यही मेन्यू पोस्ट किया है, और कढ़ी बहुत सारे श्रोताओं के घर पर बनी है, दाल बाफला भी बहुत सारे श्रोताओं के घर पर बन रहा है, तो ये बड़ा ही कॉमन मेन्यू नज़र आ रहा है, और राजमा चावल भी किसी किसी के घर पर बने। अब सबसे मज़ेदार बात तो मुझे ये लगी कि ये सारा मेन्यू सुनकर हमारे एक श्रोता ऐसे हैं जिनको अपने घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसमें क्या किया जाए, आप मेरे बारे में भी तो सोचिए ज़रा कि इतने सारे मेन्यू को सुनकर मुझे कितना लालच आ रहा होगा। अच्छा ये बताइए कि जिस किसी से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए क्या खाना बनाना पसंद करते हैं। जैसे इस गाने में ये जो मोहतरमा है ये पलकों की झालर बन रही हैं।

हरजाई फिल्म का ये गाना कितने सारे श्रोताओं को पसंद है और भैया बहुत ही शानदार मेन्यू आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ दाल ढोकली सलाद और आम के अचार का भोजन है। एक श्रोता हैं ये लिख रही हैं कि मैं बहुत ही उलझन में हूँ, बहुत दिनों के बाद बेटा घर आने वाला है, उसकी पसंद का खाना बना है, हरी सब्जी तो वो कम पसंद करता है। आपने विविध भारती के श्रोताओं से मेन्यू पूछा तो मुझे लगा कि मैं इसमें से ही कुछ बना लूँ, तो भुट्टे बॉईल कर लिए गए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भाई जब गाने प्रसारित किए जा रहे होते हैं तब आप स्टूडियो में क्या करते हैं, क्योंकि तब तो हम कमेंट कर रहे होते हैं। तो भाई इसका जवाब ये है कि हम कमेंट पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि मैं अपने बेटे के लिए सत्तू की लिट्टी और चोखा बनाती हूँ क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, छुट्टियों में जब वो घर आता है तो ये बनता है। एक श्रोता हैं जो अपने पतिदेव के लिए बैंगन का भरता और पराठे बनाती हैं। और एक श्रोता लिख रही हैं कि हर गृहिणी को अपने परिवार में अलग अलग सदस्यों की पसंद के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि मैं अभी फिजियोथेरेपी करवा के आई हूँ।

भाई इस गाने में मोहब्बत बड़े काम की चीज है और ये बेकार बेदाम की चीज है, ये इन दो बातों पर बहस हो रही है। तो चलिए आज एक पोल करते हैं, कितने लोगों को लगता है मोहब्बत काम की चीज है, कितनों को लगता है ये बेकार बेदाम की चीज है। लिखिए।

तो वही हमने आपसे ये पूछा है कि कितने लोगों को लगता है कि मोहब्बत काम की चीज है और कितने लोगों को लगता है काम की चीज नहीं है।

बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने, बल्कि तकरीबन सभी श्रोताओं ने ये कहा है कि मोहब्बत काम की ही चीज़ है और सुकून से जीने का सबब है। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर प्यार ना हो तो जिंदगी नरक हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने मजाक करते हुए ये लिखा है कि शादी से पहले मोहब्बत काम की चीज़ है और शादी के बाद काम की चीज़ नहीं है। इसके अलावा बहुत सारा मेन्यू भी आ रहा है और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कार्यक्रम में इतना कम वक्त है कि ये मेन्यू शामिल करूं कि ना करूं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव आया था और वो ये, मैंने कहा था कि भाई जो पुरुष खाना नहीं बनाते घर पर, उनके लिए ये गाना और बजाया त्रिशूल का गाना। तो एक श्रोता ने सुझाव दिया कि भाई ऐसे पुरुषों के लिए होना चाहिए ये गाना।

अब जरा सोचिए कि लिस्ट में तो नहीं था ये गाना, लेकिन जिन श्रोताओं को खाना बनाना नहीं आता, पुरुषों को, उनके लिए तो भाई ये मैं के गई वाला गाना ही सही होना चाहिए। फिर बहुत सारे मेन्यू जो हैं, अब तमाम श्रोताओं से तो मैं यही कहूँगा कि आप आज ये जो सुरीला सफ़र है इसका इसके कमेंट सेक्शन को ज़रूर पढ़िएगा, और यहाँ पर जो खाने का मेन्यू है ना, ऐसी लिस्ट बन जाएगी कि कई हफ्तों तक आपके घर पर अच्छा अच्छा खाना बनता ही चला जाएगा। और अब रूठने मनाने वाला गाना कार्यक्रम का तकरीबन आखिरी गाना है। हमने पूछा था आज कौन किससे रूठा हुआ है, ज्यादा लोगों के जवाब नहीं आए, यानी कोई किसी से रूठा नहीं है। भाई किसी से भी रूठिए पर विविध भारती से नहीं।

भाई रूठने की बात तो हो गई। एक श्रोता ने ये लिखा है कि हमारा तो किचन में जाना निषिद्ध है क्योंकि हमें कुछ भी बनाना नहीं आता। अब ये पुरुष श्रोता हैं तो भाई आज ये कहकर इस कार्यक्रम से विदा लेंगे हम कि अगले कार्यक्रम में जब मिलेंगे तो पुरुष श्रोताओं का बनाया हुआ मेन्यू पूछेंगे, तब आप बताइएगा कि आपको कुछ बनाना नहीं आता, वरना तब तक सीख लीजिए क्योंकि

देखिए ना भाई, ये पल किस तरह से बीत गया और कार्यक्रम का वक्त एकदम खत्म हो चुका है। आप सभी के साथ बहुत आनंद आया, आप सभी श्रोताओं ने जिस तरह से कमेंट्स करके साथ दिया और खासतौर पर जिस तरह से आज लंच का मेन्यू बताया, भाई मजा आ गया। फिर मिलेंगे और इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि मिलकर तय करते हैं हम सुरीला सफर। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, देश की सुरीली धड़कन। इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

दोस्तों आइए विचार करें कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम किस तरह से चलाई जाए। पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव बहुत ही घातक हैं। वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, हवा में विषैले कण घुल रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। क्या अब भी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? अगर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अभी भी हम सजग नहीं हुए तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह जाएगी।

दोस्तों, जिस तरह हमारा जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे कार्यकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गाँव के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाएं।

दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए त्रिवेणी तट पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपें। लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे, तो आपका मन भी खुशियों से झूम उठेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की।

0: डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
1: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
3: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
4: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
3: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
4: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
5: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़

0: के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
1: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
0: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
2: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांवों और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की नींव है।
0: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से ये साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI के नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के ओर बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
3: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की, कहा यह व्यापार

0: समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से सदाबहार।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की।

0: उसकी लोथ है। देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वे इसी तेजी से आए मानो पांव में पर लग गए, परंतु यहां उन्होंने अपने को रोका और हृदय में आनंद की उमड़ती हुई तरंग को रोक कर कहा,
1: लीजिए वो पत्री मिल गई, संयोग की बात है, नहीं तो 70 लाख के कागज दीमकों के आहार बन गए।
0: आकस्मिक सफलता में कभी कभी संदेह बाधा डालता है। जब ठाकुर ने उस पत्री को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को संदेह हुआ कि कहीं वो उसे फाड़कर फेंक न दे। यद्यपि ये संदेह निरर्थक था, किंतु मनुष्य कमजोरियों का पुतला है। ठाकुर ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया। उसने बेपरवाही से पत्री को लिया और मशाल के प्रकाश में देखकर कहा,
2: अब मुझे विश्वास हुआ, ये लीजिए आपका रुपया आपके समक्ष है, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए।
0: ये कहकर उसने अपनी कमर से एक थैला निकाला और उसमें से 1-1 हजार के 75 नोट निकालकर देवदत्त को दे दिए। पंडित जी का हृदय बड़े वेग से धड़क रहा था, नाड़ी तीव्र गति से कूद रही थी। उन्होंने चारों ओर चौकन्नी दृष्टि से देखा कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है, और तब कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया। अपनी उच्चता प्रकट करने की व्यर्थ चेष्टा में उन्होंने नोटों की गणना भी नहीं की, केवल उड़ती हुई दृष्टि से देखकर उन्हें समेटा और अपने जेब में डाल लिया।

0: वही अमावस्या की रात्रि थी। स्वर्गीय दीपक भी धुंधले हो चुके थे। सूर्य नारायण के आने का आभास हो रहा था। उदयाचल फिरोजी बाना पहन चुका था। अस्ताचल में भी हल्के श्वेत रंग की आभा दिखाई दे रही थी। पंडित देवदत्त ठाकुर को विदा करके घर चले। उस समय उनका हृदय उदारता के निर्मल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। कोई प्रार्थी उस समय उनके घर से निराश नहीं जा सकता था। सत्यनारायण की कथा धूमधाम से सुनने का निश्चय हो चुका था। गिरजा के लिए कपड़े और गहने के विचार ठीक हो गए। अंतःपुर में ही उन्होंने शालिग्राम के सम्मुख मनसा वाचा कर्मणा सिर झुकाया और तब शेष चिट्ठी पत्रियों को समेट कर उसी मखमली थैले में रख दिया। किंतु अब उनका ये विचार नहीं था कि संभवतः उन मुर्दों में भी कोई जीवित हो उठे। वरन जीविका से निश्चिंत हो अब वे पैतृक प्रतिष्ठा पर अभिमान कर सकते थे। उस समय वे धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे।
1: अब मुझे जिंदगी में अधिक संपदा की जरूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है, इससे मेरी और गिरिजा की जिंदगी आनंद से कट जाएगी।
0: उन्हें क्या खबर थी कि गिरिजा की जिंदगी पहले कट चुकी है। देवदत्त के दिल में ये विचार गुदगुदा रहा था कि जिस समय गिरिजा इस आनंद समाचार को सुनेगी उस समय अवश्य उठ बैठेगी। चिंता और कष्ट ने ही उसकी ऐसी दुर्गति बना दी है, जिसे भरपेट कभी रोटी नसीब न हुई, जो कभी नैराश्यमय धैर्य और निर्धनता के हृदय विदारक बंधन से मुक्त न हुई, उसकी दशा इसके सिवा और हो ही कह सकती है। ये सोचते हुए वे गिरिजा के पास गए और आहिस्ता से हिलाकर बोले,
1: गिरिजा गिरिजा आंखें खोलो, देखो ईश्वर ने तुम्हारी विनती सुन ली और हमारे ऊपर दया की है। गिरिजा गिरिजा कैसी तभी।
0: किंतु जब गिरिजा तनिक भी न मिनकी तब उन्होंने चादर उठा दी और उसके मुंह की ओर देखा। हृदय से करुणात्मक ठंडी आह निकली। वे वहीं सिर थाम कर बैठ गए। आंखों से शोणित की बूंदें सी टपक पड़ी।
1: क्या ये संपदा इतने महंगे मूल्य पर मिले है? क्या परमात्मा के दरबार से मुझे इस प्यारी जान का मूल्य दिया गया है?

ईश्वर तुम खूब न्याय करते हो। मुझे गिरिजा की आवश्यकता है, रुपयों की आवश्यकता नहीं। ये सौदा बड़ा महंगा है, सौदा बड़ा महंगा।

0: अमावस्या की अंधेरी रात गिरिजा के अंधकार में जीवन की भांति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने स्वर से गा रहे थे। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूर्य देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। पनघट पर गांव की अलबेली स्त्रियां जमा हो गई थीं, पानी भरने के लिए नहीं, हंसने के लिए। कोई घड़े को कुएं में डालकर अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी, कोई खम्भों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुस्कुराकर प्रेम रहस्य की बातें करती थी। बूढ़ी स्त्रियां पोतों को गोद में लिए अपनी बहुओं को कोस रही थीं कि घंटे भर हुए अब तक कुएं से नहीं लौटी। किंतु राज वैद्य लाला शंकर दास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे। खांसते हुए बच्चे और कराहते हुए बूढ़े उनके औषधालय के द्वार पर जमा हो चले थे। इस भीड़ भब्बड़ से कुछ दूर पर दो तीन सुंदर किंतु मुरझाए हुए नवयुवक टहल रहे थे और वैद्य जी से एकांत में कुछ बातें करना चाहते थे। इतने में पंडित देवदत्त नंगे सिर नंगे बदन लाल आंखें डरावनी सूरत कागज का एक पुलिंदा लिए हुए दौड़ते हुए आए और औषधालय के द्वार पर इतनी जोर से हांक लगाने लगे कि वैद्य जी चौंक पड़े और कहार को पुकार कर बोले कि दरवाजा खोल दे। कहार महात्मा बड़ी रात गए किसी बिरादरी की पंचायत से लौटे थे। उन्हें दीर्घ निद्रा का रोग था जो वैद्य जी के लगातार भाषण और फटकार की औषधियों से भी कम न होता था। आप ऐंठते हुए उठे और किवाड़ खोलकर हुक्का चिलम की चिंता में आग ढूंढने चले गए। हकीम जी उठने की चेष्टा कर रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके आगे पटक कर बोले,
1: वैद्य जी ये 75,000 के नोट है, ये आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। अब आप चलकर गिरिजा को देख लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वो केवल एक बार आंखें खोल दे। ये उसकी एक दृष्टि पर न्यौछावर है, केवल केवल एक दृष्टि पर। आपको रुपए मनुष्य की जान से प्यारे हैं, वे आपके समक्ष हैं। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। इन रुपयों से कई गुना प्यारी।
0: वैद्य जी ने लज्जा में सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना कहा,
2: मुझे शोक है, मुझे अत्यंत शोक है। सदैव के लिए तुम्हारा अपराधी हूं, किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल कदापि ना होगी। मुझे शोक है, सचमुच शोक है।
0: ये बातें वैद्य जी के अंतःकरण से निकली थी।
3: आज आपने सुना कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक, पंडित देवदत्त जी श्याम, वैद्य लाला शंकर।

दास जयंत पात्रिकर, ठाकुर नवयुवक, दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: अंतराल का वक्त हुआ खत्म और कार्यक्रम चल रहा है
1: सखी सहेली और हमारे साथियों ने कथा सुधा में आनंद लिया होगा और अब है हम लोगों के आपस में बात करने की बारी और शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद है यहाँ पर बहुत ज़रूरी शिक्षक
0: ज़्यादा ज़रूरी
1: है ना। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो शिक्षा को बेहतर और अच्छा बनाता है प्रभावशाली बनाता है तो उसमें आपस में एक दूसरे से बात करना जिसे कहते हैं ना संवाद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो विद्यार्थी के अंदर अपनी जिज्ञासाएँ और समस्याएँ होती हैं वो खुल करके अपने शिक्षक से बात करते हैं अपने उनके सामने अपनी बात रख पाते हैं और शिक्षक भी जो होते हैं उनकी कठिनाइयों को समझकर उनका सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सीखने में रुचि भी पैदा होती है।
0: बिल्कुल सही कहा और इतने सारे संदेश आए हैं इस विषय पर हमारे सभी श्रोताओं के। एक संदेश ये कहता है कि शिक्षा का ज्ञान और विद्यार्थी की जिज्ञासा जब संवाद के माध्यम से मिलते हैं तो सीखने की प्रक्रिया और भी सुंदर बन जाती है। संवाद न केवल ज्ञान बढ़ाता है बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विश्वास और अपनापन भी गहरा हो जाता
1: है। बिल्कुल और हमारी एक साथी लिखती है कि मैं स्वयं एक शिक्षिका रही हूं और मुझे पता है कि हर विद्यार्थी के मन में अनेक प्रश्न होते हैं उसके लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद जरूरी है। जब विद्यार्थी बिना डर के शिक्षक से अपनी बात कहता है तब सीखने सिखाने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और संवाद के माध्यम से विद्यार्थी बिना झिझक अपने सवाल कठिनाइयां और विचार शिक्षक के सामने रखता है। इससे शिक्षक भी विद्यार्थी की रुचि क्षमता और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और साथ ही उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार ही उन्हें सही सलाह देते हैं। वैसे सही बात है दीपा, जब जो टीचर होते हैं हमारे शिक्षक होते हैं तो ये नहीं कि आप एक तरह से बोल रहे हो और हर बच्चे वही समझे, आपको हर बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना पड़ता है। इसको किस भाषा में सरल भाषा में समझ में आता है, कोई आपकी पहली ही भाषा को समझ जाता है तो बच्चों के हिसाब से भी हमें समझाना पड़ता है।
0: बिल्कुल और जैसे ऐसा लगता है उत्तर ही इस बात का आ गया है एक संदेश के द्वारा। कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि छात्र को मानसिक और भावनात्मक संबल भी देता है जिससे छात्र परीक्षा के तनाव या निजी समस्याओं को आसानी से साझा कर पाता है।
1: बिल्कुल और हमारे एक साथी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए ज्ञानवर्धक संवाद के परिणाम स्वरूप ही श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई जो आज भी संपूर्ण मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। बहुत अच्छी सी आपने बात लिखी
0: बहुत अच्छे से बताया और ये भी बात दिखी है संदेश के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। ये कह रहे हैं कि जब शिक्षक और विद्यार्थी आपस में लगातार बातचीत करते हैं तो छात्रों के मन का डर और झिझक खत्म हो जाता है और विद्यार्थी बिना किसी संकोच के अपने सवाल और समस्याएं शिक्षक के सामने रख पाते हैं जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये बहुत ज़रूरी, अगर डरते ही रहेंगे तो अपने डाउट्स हैं या हमें कुछ पूछना है न सिर्फ अपने जो किताबी ज्ञान है उसके लिए नहीं, शैक्षणिक जो ज्ञान है उसके लिए नहीं, कुछ जीवन में भी कभी कुछ ऐसा लगता है ना लाइफ में कि हमें ये करना है नहीं करना है, कभी कुछ ऐसी बातें होती
1: हैं
0: जो हम घर में नहीं बोल पाते
1: बिल्कुल,
0: और हम लेकिन टीचर से थोड़े से नज़दीक रहते हैं और उन्हें बता पाते हैं तो वो हमें सही राह दिखाते हैं।
1: बिल्कुल और तुम्हें याद होगा कि क्लास में जब कुछ बच्चे जिनको लगता है कि थोड़ा सा डर लगता है संकोची होते हैं याद नहीं हुआ तो वो पीछे बैठ जाते हैं जा करके, और कभी कभी जो शिक्षक भी इतने होते हैं ज्ञानी होते हैं कि वो पीछे वाले से इशारा करते हैं कि तुम उठो,
0: नजर
1: पैनी होती नजर। तो देखते हैं अब हमारे साथी अगले साथी क्या लिखते हैं कि लिखते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद शिक्षा की बुनियाद है। जब एक शिक्षक और छात्र आपस में खुलकर बातचीत करते हैं तो न केवल ज्ञान का आदान प्रदान बेहतर होता है बल्कि छात्र का सर्वांगीण विकास भी होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद के क्लासरूम संवाद दस्तावेजों की तरह ही हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक होना चाहिए। ये संवाद ही शिक्षा को बोझिल प्रक्रिया से हटाकर एक आनंददायक अनुभव में बदलता है।
0: बिल्कुल, जब ये पूरा जो यात्रा है शिक्षण की जब ये ऐसी सुमधुर हो जाए और इतनी

0: डर वाली हो जाए ना, तो हर चीज हमारे दिमाग में एकदम साफ सुथरी होती है। और इसी बात को आगे एक और संदेश के द्वारा हमारे श्रोता बताते हैं कि जब शिक्षक विद्यार्थी से खुलकर बातचीत करते हैं तो उनकी जिज्ञासाओं और समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वे बिना झिझक अपने विचार, प्रश्न और कठिनाइयाँ साझा कर पाते हैं। वहीं शिक्षक भी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हाँ, अगर बोलेंगे ही नहीं, बच्चे बताएंगे नहीं, तो टीचर्स भी कर क्या लेंगे। बच्चे का बोलना, स्टूडेंट का बोलना बहुत जरूरी है ना।
1: कभी बच्चे
0: बताएंगे नहीं, चुपी रहेंगे तो एक शिक्षक या शिक्षिका बता क्या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या किस तरह उन्हें बोले या बताएं कि समझाएं।
1: नहीं, कई बार दीपा क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं ना, वो डरे सहमे से रहते हैं, उनको बोलने में लगता है मैं ये बोलूंगा तो कहीं गलत ना हो जाए,
0: कभी कभी डरते भी सबके सामने बोलने।
1: तो जो हम जो टीचर होते हैं ना, वो इतने जो पारखी होते हैं कि वो समझ भी जाते हैं, उस बच्चे को बुलाकर प्यार से करते हैं तो वो उसको हैंडल भी कर ले जाते, समझा पाते हैं। और शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद रूपी सेतु जरूरी है, हमारे साथी लिखते हैं, जो एक दूसरे के विचार रूपी प्रवाह को पार करवाने में आसान बनाता है। आपसी विश्वास बढ़ता है, समय समय पर फीडबैक मिलने पर सीखने की प्रक्रिया आसान बन जाती है, मानसिक तनाव में कमी आ जाती है। प्रोत्साहन भरे शब्द और सहयोग छात्रों में नेतृत्व गुण के साथ आत्मसम्मान को जगाते हैं और बढ़ाते हैं। जैसे हम विविध भारती के साथ कमेंट के द्वारा एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान करते हैं और कर रहे हैं, उद्घोषक हमारे विचार को जब वाचा देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, आपके विचार जब हमें मिलते हैं तो उसमें भी ज्ञान की बातें छुपी होती है और हम लोग को भी ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं है,
0: ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कह रहे हैं और आप अनुसरण कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: आपकी कई बातों का हम अनुसरण करते हैं और कई बार तो आपके संदेश हम संभाल के रख लेते हैं,
1: आगे काम आएंगे,
0: है ना। और बात शिक्षक और विद्यार्थी की हो रही थी, जब कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेता है या लगता है कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, तो नहीं, हम सब कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बनोगे एक दिन, और हम उस दिन जब तुम बड़े बन जाओगे तो हमारे पास आना या हम तुम्हारे पास आएंगे। तो कहीं
1: और देखो, आज हम विश्व शिक्षक दिवस भी है, तो हम लोग ये बातें इसी विषय पर कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, हमें आगे जीवन में बढ़ने की राह दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं ना। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं
0: है, और संगीत से बड़ा भी कोई शिक्षक नहीं
1: जी।

0: बिल्कुल नहीं भाई, एक विद्यार्थी कभी अपने शिक्षक को नहीं भूलता है, तो चाहे कितनी भी आसमान की ऊंचाइयां छू ले।
1: बिल्कुल, और भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है आगे बढ़ने का। और जब देखो घर साफ होता है तो हमारा भी मन करता है उसमें आराम से सुकून से बैठने का, और जब बच्चों का कमरा साफ सुथरा होता है तो बच्चों का पढ़ने में भी मन लगता है, है ना।
0: बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात, भले छोटी छोटी सी बात हो लेकिन सच में जब साफ सुथरा घर हो, आपकी टेबल बिल्कुल साफ सुथरी हो, आपके करीने से सारी किताबें लगी हैं, आपके जो स्टेशनरी का सामान है सब एक तरफ अच्छे से रखा है, और सुबह का वक्त हो तो सच में ऐसा लगता है बस बैठ जाओ और अब हम अगला एक घंटा नहीं हिलेंगे।
1: तो हम फिलहाल अभी नहीं हिलेंगे, हम कमेंट्स पर जाते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि स्वच्छ घर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगता बल्कि मन को भी सुकून देता है। साफ सुथरा वातावरण तनाव कम करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। घर की सफाई के लिए रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालें, एक ही दिन में पूरी सफाई करने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में काम बांटें। अनावश्यक सामान जमा ना होने दें, जो चीज़ लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है उसे जरूरतमंद को देना या हटाना घर को व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका है।
0: बिल्कुल सही कहा, और घर में हर सामान की एक निश्चित जगह होनी चाहिए, इस्तेमाल के बाद चीज़ को वापस उसी जगह पे मंजरी रख देना चाहिए तो अच्छा रहता है। इससे क्या समय की भी बहुत बचत हो जाती है, और सुबह के वक्त अगर कुछ मिनट खिड़की दरवाजे खोलकर ताज़ी हवा और धूप को भी अगर हम घर में आने दें तो देखो घर का वातावरण कितना खुशनुमा महसूस होता है।
1: बिल्कुल, और रसोई की सफाई पर विशेष ध्यान दें, सिंक गैस चूल्हा प्लेटफॉर्म और कूड़ेदान को नियमित रूप से साफ करें, बाथरूम की सफाई को टाले नहीं, गीलापन और नमी लंबे समय तक रहने से दुर्गंध और गंदगी बढ़ती भी है। घर में कम सामान ज़्यादा खुली जगह रखने की कोशिश करें, खुला और व्यवस्थित घर मन को भी हल्का महसूस कराता है, और सफाई करते समय पर्यावरण पर ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा पानी और केमिकल वाले क्लीनर इस्तेमाल ना करें।
0: बिल्कुल, और हो सके तो संभव हो तो घर में हरे पौधे लगाने चाहिए घर के, क्योंकि पौधे जो हैं वो घर की सुंदरता बढ़ाने में देखो और वातावरण को भी कितना जीवन बनाते हैं, है ना।
1: बिल्कुल,
0: और सफाई सिर्फ फर्श और फर्नीचर की नहीं हो बल्कि हमारे घर में पर्दे हैं, फिर पंखे हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, फिर घर दरवाजों के हैंडल और पर्दों के वो जो रॉड होते हैं सब कुछ साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, खासतौर पे वो स्विच बोर्ड सबकी उंगलियों के
1: निशान पड़ जाते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट तुमने किया,
0: साफ करना बहुत जरूरी है।
1: और घर को सुगंधित रखने के लिए बहुत तेज कृत्रिम खुशबू के बजाय फूलों कपूर या हल्की प्राकृतिक खुशबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, साफ सफाई पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, सिर्फ घर की महिलाओं की नहीं है। बिल्कुल सही बात लिखी।
0: अब देखो घर में ऐसा नहीं कि हम बात करें तो सखियां कहेंगी आप तो कह रही हैं ये भी साफ कर दो ये भी साफ कर दो, नहीं, सबको बांटिए। जब बच्चे जिस दिन घर पे छुट्टी होते हैं उनको कहिए उनका कमरा वो खुद साफ करेंगे, अगर उनका कमरा नहीं भी है तो जिस जगह पे वो बैठते हैं उनका बैग हो गया या जहां पर उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह रखते हैं, उनके कपड़े रखे जाते हैं, वो अलमारी का वो खन या शेल्फ उनको बोल दीजिए कि आपको ये साफ करना है। इसी तरह से घर के जो हमारे श्रोता भाई हैं सुन रहे हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ा थोड़ा सा अगर आप मदद कर देंगे ना, आप देखिए घर के महिलाओं के चेहरे पर अगर हंसी ना आई तो आप आकर हमें डांट सकते हैं
1: और बढ़िया आपको चाय भी मिलेगी पीने को। अरे हमारे साथी और लिखते हैं कि सुकून भरे स्वच्छ घर, ये वाक्य पढ़कर ही कितना सुकून मिल रहा है। हमारा घर हो या कार्य क्षेत्र या फिर सार्वजनिक स्थान हो, स्वच्छता हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वच्छता है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, ये लिखते हैं, और स्वच्छता जहाँ होती वहाँ पे बरकत होती। बहुत सही बात कहा है, हमें घर के साथ साथ जो चीज़ें आपने लिखी जहाँ जहाँ के बारे में उन सबको भी हमारा ही कर्तव्य कि उन्हें साफ रखें।
0: बिल्कुल। अच्छा एक और संदेश ये कहता है कि साफ सुथरा सिर्फ घर ही नहीं बल्कि

0: मन की वो अवस्था है जहाँ शारीरिक थकान बहुत कम महसूस होती है, जहाँ धूल नहीं होती वहाँ बेचैनी भी नहीं टिक पाती है, क्या बात है, और जहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर है वहाँ विचार भी बिखरते नहीं। ऐसे घर में सुबह की चाय की खुशबू, आंगन की धूप और शाम की शांति ज़्यादा गहरी लगती है, क्योंकि सफाई आँखों को ही नहीं आत्मा को भी हल्का कर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्वच्छता से घर बड़ा नहीं होता, पर दिल बड़ा हो जाता है और वहीं से सुकून जन्म लेता है। सुकून भरे स्वच्छ घर की सबसे बड़ी ये विशेषता है कि वो बोलता नहीं पर सिखाता बहुत कुछ है। और आपके इस कमेंट ने तो ऐसा लगता है सब कुछ, सारी बात एक उसमें डाल दी समा गई।
1: बिल्कुल, हम एक साथ ही लिखते कि मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, सो उन्हें सैटरडे संडे छुट्टी होती है। कल संडे और सैटरडे उन्होंने पूरे घर की सफाई की, साथ में मैंने और मेरे बेटे ने हेल्प करी। गुजरात में ऐसा मानते हैं कि दिवाली से पहले नवरात्रि में माता रानी जी के आगमन से घर की पहले ही घर की साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखा है। अब समय आ ही चुका है कि माता रानी भी आने वाली है, तो हमें तो बहुत ध्यान रखना है।
0: और एक और हमारे श्रोता भाई श्रोता ने हमें लिखा है कि गुजराती में उन्होंने एक कहावत लिखी कि सुंदरता पामवा माटे सुंदर सुंदर बनवू पड़े, यानी कि सुंदरता पाने के लिए सुंदर बनना पड़ता है। फिर ये सुंदरता भीतर से हो या बाहर से, दोनों तरफ आवश्यक है। इसी तरह घर जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता है उतना ही अंदर से सुंदर हो, तब सोने पे सुहागा हो जाएगा।
1: भाई देखो, घर भी सुंदर हो, आपका मन भी सुंदर होना चाहिए। आपके घर में जो भी आने वाला है उनका स्वागत आप मन से दिल से करते हैं तो वो घर और भी सुंदर लगेगा, है ना। और एक लिखते हैं कि सुकून भरा स्वच्छ घर जब साफ और व्यवस्थित होता है तो वहाँ कदम रखते ही दिन भर का तनाव और मानसिक थकान जो है पल भर में काफूर हो जाती है। दरअसल सफाई सिर्फ धूल मिट्टी हटाना नहीं बल्कि जीवन की उलझनों को बुहार कर सुकून को आमंत्रित करना है। एक स्वच्छ घर वो है जहाँ पावन मतलब स्वच्छ घर का वो पावन कोना है जहाँ हमारी आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और बुहार कर जो शब्द आया है ये बहुत समय बाद सुनने को मिला है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना।
0: अच्छा, एक शायद ये हमारे श्रोता भाई ने संदेश लिखा है, इन्होंने कहा दोपहर में 2 मिनट निकालकर अपनी मेजों की जाँच करें, रैपर है, रसीदे हैं या कप वहां पड़े रहते हैं ना, क्योंकि ऑफिस में भी सुबह की चाय हो ही जाती है, वो सब कुछ हटा दें, सतह को पोंछ लें। दोपहर में टेबल को फिर से सेट करने की से जगह जो है वो ताजा रहती है और सामान फैलने से रुकता है। बिल्कुल सही कहा भाई। अब अगर आप ऑफिस पे हैं या कुछ ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपका सिटिंग जॉब है तो ये बीच बीच में 2-2 मिनट निकाल के भी ऐसी सफाई खुद कर दें। कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने के लिए कि ये कप हटाओ, ये ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, खुद कर देते हैं।
1: कई बार तो क्या होता है कि आपकी जो डाइनिंग टेबल पे उस पे आपने कोने में सामान रखा है लेकिन धीरे धीरे होते होते शाम होते होते वो आधी डाइनिंग टेबल को कवर कर देता है।
0: हर घर में डाइनिंग टेबल
1: कोना भरे ही रहते जमाने के लिए, क्योंकि लगता है ये चीज भी यहीं से ले लेंगे, अचार भी ले लेंगे, नमक भी ले लेंगे, चटनी भी ले लेंगे। अरे भाई, इसको थोड़ा किनारे रखो,
0: भले आप रखे उस पर सामान लेकिन वो सिर्फ सामान जमा करने की जगह ना हो जाए। कई घरों में ऐसा होता है कि टेबल तो है, डाइनिंग टेबल तो है, लेकिन सब नीचे बैठ के खाते हैं। बेशक खाइए, लेकिन डाइनिंग टेबल को ऐसा सामान उठा करके ला के
1: अलमारी ना बनाइए। चलो एक गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए।

0: अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है। दरवाजा खोलता हूँ तो वो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
0: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: मंजरी उस संदेश के बारे में बता रही थी, पढ़ के बताओ।
4: हाँ, हमारे साथी लिखते हैं कि घर छोटा हो या बड़ा हो, घर के सभी सदस्यों की सक्रिय सहभाग से ही साफ सुथरा और सुंदर रहता है। अच्छे संस्कार और आदतों से सजे स्वच्छ सुंदर घर में भगवान के सामने रखा पवित्र मंगल दीप, कोने में रखा सुगंधित फूलों का गमला और आंगन या बालकनी की प्रसन्न तुलसी मंजरी को भी मन को सुकून देती है। बहुत इन्होंने अच्छी सी बात लिखकर भेजी है, लेकिन अब हम इस संदेश के साथ में खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ते हुए की ओर चलते हैं कि बड़ी देर से
3: हमने साफ सुथरा कर लिया, सब
4: तो खाना भी तो पका ले,
3: तो बहुत भूख लगी
4: है ना। और हमारे को एक साथी लिख भी रहे थे कि हम जो है छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं अक्टूबर में, तो भाई आप जाइए और वहाँ पे जाकर व्यंजन खा के आइएगा
3: और बताइएगा कैसा लगा।
4: तो हमारे एक साथी ने भेजा है चौसेला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है, खासतौर से त्यौहार पर बनाया जाता है। इसकी सामग्री है कि चावल का आटा 2 कप, नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन या जीरा 1 छोटा चम्मच, और जो तेल लेना है आप आटा गूंदने के लिए तलने के लिए अंदाज से ले लीजिए, गर्म पानी आवश्यकता के अनुसार। चौसेला बनाने की विधि है कि एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें नमक अजवाइन या जीरा मिला लें, उबलते पानी में ही थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालें और चम्मच की सहायता से चलाएं और उसको फिर ठंडा करें। जब मिश्रण जब मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाए तब हाथों से थोड़ा सा तेल लगाकर इसे नरम आटे की तरह गूंथ लीजिए और ढककर 10-15 मिनट रखिए और आटे की छोटी लोइयां बनाइए। इन्हें दोनों हथेलियों से दबाकर तेल से चिकनी की गई पॉलिथीन पर रखकर हल्के हाथों से पूरी बनाएं और या आप चकले पर भी बेल सकते हैं। और एक कढ़ाई में तेल गरम करें और इन चौसेलों को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक, क्रिस्पी होने तक तल लें और इनको आप हरी धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं।
3: बिल्कुल। और बफोरी अगर बनाना है तो उसके लिए देखो इसमें मुख्य रूप से रहता है चने की दाल या मिली जुली दाल, मूंग मसूर की दाल, उससे तैयार किया जाता है ये व्यंजन। तो इसको बनाने के लिए चना दाल या आप मूंग मसूर की दाल मिक्स ले सकते हैं 1 कप, लहसुन की कलियाँ 5-6, अदरक ले सकते हैं 1/2 इंच मतलब थोड़ा सा, हरी मिर्च आपके अनुसार 2-3 ले सकते हैं, जीरा छोटा सा 1 चम्मच और हल्दी पाउडर थोड़ी यानी 1/2 छोटी चम्मच, हींग चुटकी भर, नमक आप अपने अनुसार डाल लीजिए और तड़के के लिए लीजिए सरसों, जीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा तेल। बनाने के लिए चने की दाल को 4-5 घंटे या रात भर के लिए पानी में आप भिगो कर रख दो। दाल का पानी निकाल कर उसे बिना पानी के या बहुत कम पानी से डालकर मिक्सी में आपको दरदरा पीस लेना है। पिसी हुई दाल में अब आप लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, हींग, हल्दी और नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह फैट लेना है। अब एक बर्तन में पानी उबालें, उसके ऊपर तेल से चुपड़ी हुई यानी ग्रीस करी हुई जालीदार छन्नी या जो इडली स्टैंड होती है ना वो रखें। इस पर छोटी छोटी पकौड़ियों के आकार में मिश्रण रख दें। इसे ढक कर 10 से 12 मिनट तक या 15 मिनट तक एकदम मीडियम आँच पर भाप में पकाना है और जब ये बन जाए तो बफरी को बाहर निकालें और पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके राई, जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का तैयार करें। इसे बफोरी पर आप डालिए और फिर देखिए इसका स्वाद कितना अच्छा लगता है।
4: स्वाद तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीपा, आज तो पक्का मैं ये बनाने वाली हूँ, है ना?
3: बनाने वाली हूँ। तो देखो मैं भी पक्का एक गीत आपको सुनाने वाली
4: हूँ। सुना दो।

0: तो दीपा तुम तो कह रही थी कि गाना सुनाने वाली, मैंने सोचा तुम गा के सुनाओगी।
1: गा के नहीं भाई, जिंदा दिल फिल्म का ये गाना सुनाने वाले।
0: अच्छा,
1: तो सुनाएंगे गाना?
0: चीटिंग करी है तुमने।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं कही है। और देखो हम भले चीटिंग कर ले, लेकिन
0: घड़ी नहीं करने देगी, है ना?
1: नहीं करने देगी। वो कह रही है चीटिंग का गया समय समाप्त।
0: चलो अब दोनों बहने निकलो, चलो। तो सभी को चलते चलते हम लोग कहते हैं नमस्कार करते हैं, विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी और
1: जी
0: दीपा मंजरी का नमस्कार बोलो,
1: और मंजरी का नमस्कार।
0: चलो ठीक है, ओके।
1: कार्यक्रम सखी सहेली के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

अभी तक आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं और आगे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह आपने सुना पीसीओडी और आईवीएफ, इस विषय पर इस

0: स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। आइए अब सुनते हैं इसका दूसरा और अंतिम भाग।
1: डॉक्टर साहिबा, आज हम महिलाओं को लेकर उनकी बीमारियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आपसे कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को इन बीमारियों से दो चार होना पड़ता है। डॉक्टर ज्योति, तो अब जीवन के उस पड़ाव की बात करते हैं जिससे हर महिला कभी न कभी गुजरती है
2: जी।
1: और वो समय है मेनोपॉज का। क्या है ये मेनोपॉज और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और किस उम्र में ये शुरू हो सकता है? एक आम महिला भी ये जानना चाहती है कि मेनोपॉज आखिर है क्या।
2: जी, जैसे ये वर्ड बताता है मेनो पॉज, मेनो यानी पीरियड्स, पॉज यानी बंद होना, स्टॉप होना। एक लेडी के ये जर्नी में जब पीरियड बंद हो जाता है इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये बंद कितना टाइम तक होना चाहिए जब हम उसको लेबल करें एज मेनोपॉज की, एक साल जब पीरियड नहीं होता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ, एक साल के बाद ही उसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसके पहले अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं उसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं। तो बेसिकली पीरियड क्यों बंद हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने जो अंडा फूटता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, वो जब फूटना बंद हो जाता है यानी ओवरीज में जो एग्स हैं वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं, तो नेचुरली नहीं है तो फूटेंगे नहीं तो पीरियड नहीं आएगा, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये जो पीरियड है उसके पहले का पीरियड जिसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं, एक वो टाइम है जब काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि मेनोपॉज में क्या एग्जैक्टली होता है कि एक जो मैंने बताया अंडे ख़त्म हो जाते हैं, उसके साथ साथ ओवरीज में एक हार्मोन होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं, तो ओवरीज वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। जब मेनोपॉज में जो ईस्ट्रोजन है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है धीरे धीरे, एक्चुअली जो पेरी मेनोपॉज है यानी ईस्ट्रोजन लेवल की प्रमाण मात्रा कम होने लगती है और एक टाइम आता है जब वो टोटली बंद हो जाता है सिक्रीट होना ओवरीज में से, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं।
1: बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। तो इसकी उम्र क्या होती है, किस उम्र में शुरू हो सकता है?
2: सो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया 45 टू 50 इयर्स है। उसके पहले भी हो सकता है और उसके बाद भी हो सकता है।
1: कई बार बड़ी उम्र की महिलाओं से जब बातचीत होती है तो वो कहती हैं कि उन्हें अभी भी जो है मासिक धर्म होता है।
2: जी जी,
1: तो कई बार सवाल होता है कि अरे आपको भी मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ?
2: जी,
1: तो नहीं होता
2: जी।
1: तो इसकी उम्र बड़ी भी हो सकती
2: है? यस, बड़ी भी हो सकती है। सो कभी कभी 55-56 तक भी लेडीज को पीरियड आ सकता है।
1: अच्छा, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
2: नहीं, ये जेनेटिक है, मतलब उनके अंडे अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो इसलिए वो अभी भी मेंस्ट्रुएट हो रही हैं।
1: तो अच्छी बात क्या है, सही समय पर मेनोपॉज हो जाना चाहिए या लंबे समय तक आपको मासिक धर्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं?
2: कोई भी चीज कम या ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो अगर पीरियड जल्दी बंद हो जाता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत लेट तक भी चलता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। सो इट हैज टू बी जो रेगुलर टाइम में होना चाहिए वो टाइम पे हो तो बेटर ही है। तो अगर वो जल्दी बंद होता है यानी 40 के पहले अगर पीरियड बंद हो जाता है उसको हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं, और अगर लेट बंद होता है 58-60 तो दैट इज आल्सो नॉट अ गुड थिंग। जी, प्रीमैच्योर मेनोपॉज यानी वो जल्दी वो सिम्टम्स आना वो भी लेडी के लिए अच्छा नहीं है। और जब लेट होता है पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय तक पीरियड जा रहा है, दैट मीन्स बॉडी में ईस्ट्रोजन अभी भी है लंबे टाइम तक, तो इन लेडीज को थोड़ा सा कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
1: यानी कि समय पर मेनोपॉज होना भी बहुत जरूरी है।
2: यस,
1: आपसे महत्वपूर्ण बातचीत हमारी चल रही है डॉक्टर साहिबा। एक गीत सुन ले आपकी पसंद का।
2: जी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत आप सुनना चाहती हैं, सुनते हैं ये गीत।
3: चुरा

0: तो जैसे कहते हैं हॉट फ्लैश होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, ये मूड स्विंग होना जैसे लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं, ये क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण मेनोपॉज
1: ही? ये मेनोपॉज ही है। तो इनफैक्ट आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं मेनोपॉज के उसके लक्षण क्या होते हैं। तो मेनोपॉज जैसे मैंने बताया कि बॉडी में ईस्ट्रोजन कम होके एक समय बंद हो जाना, वो मेनोपॉज है। पेरी मेनोपॉज टू मेनोपॉज, ईस्ट्रोजन जो ए हार्मोन जो है वो सिर्फ ओवरीज या सिर्फ रिप्रोडक्टिव यानी यूट्रस रिलेटेड या ओवरीज रिलेटेड या गायनाइक रिलेटेड नहीं है। ये ईस्ट्रोजन बहुत सारी ऑर्गन्स पे बॉडी में काम करता है। आई वुड से राइट फ्रॉम योर हेयर टू योर टोनेल्स, मतलब बालों से लेके पाँव के नख तक ये ईस्ट्रोजन काम करता है। तो जब ये फ्लक्चुएशन आने लगते हैं तो हर एक ऑर्गन अफेक्ट होता है, जो शायद लेडीज को पता भी नहीं होता है कि दे आर गोइंग थ्रू दिस। तो जैसे पीरियड्स जब बंद होने वाले होते हैं या बंद होते हैं तो लेडीज काफ़ी टाइम ये एक बाल गिरना ये एक समस्या उनको हो जाती है कि बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं, टेक्स्चर उनका कोर्स हो गया है, ये एक है। फिर चिड़चिड़ापन जैसे जो आपने बताया ब्रेन पे अफेक्ट करता है, तो मेमोरी लॉस की, अरे मैंने गैस पे कुछ रख दिया है और मैं भूल गई, या मैं ये रूम में आई हूँ लेकिन मैं क्यों आई हूँ मुझे याद नहीं है।
0: अच्छा जी।
1: या तो ये कॉग्निटिव डिसफंक्शन होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, इरिटेबल होना, हॉट फ्लशेस, ये वेजोमोटर मोटर सिम्टम बोलते हैं कि बहुत गर्मी लगना या पसीना पसीना हो जाना या बहुत गर्मी लगने के बाद बहुत ठंडी लगना, ये वेजोमोटर सिम्टम्स हैं। फिर ये दांतों पे भी अफेक्ट करता है, आँखों पे भी अफेक्ट करता है, हार्ट को भी अफेक्ट करता है, आपके बोन्स को भी अफेक्ट करता है। तो मल्टीपल ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। जैसे हार्ट में जो कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो लेडीज काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ये हार्मोन जब मेनोपॉज नहीं होता है, जब वो रेगुलर पीरियड्स में रहती हैं, जब ईस्ट्रोजन नॉर्मल मात्रा में रहता है तो हार्ट को काफ़ी हद तक वो प्रोटेक्ट करता है। हार्ट अटैक के रिस्क लेडीज़ को पीरियड्स मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काफ़ी कम रहता है, लेकिन एक बार जब मेनोपॉज आ जाता है तो उनका हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाता है।
0: जी, अच्छा
1: जी। तो बेसिकली जो लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टाइट होने लगते हैं, तो हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो हार्ट अटैक मतलब क्या है कि हार्ट मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है तो हार्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, राइट। तो ये हार्ट में हो सकता है। बोन्स को स्ट्रांग रखता है यानी बोन्स में जो कैल्शियम डिपोजिशन है उसको रेगुलेट करता है। तो जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं यानी ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है, मसल मास लूज होने लगता है, यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है बॉडी स्ट्रेंथ, जैसे अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे थे पहले समझो 15 मिनट में, अभी आपको 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लग रहा है। आप अभी बोल रहे हैं कि क्यों मुझे ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके मसल्स अब जो सार्कोपीनिया बोलते हैं उसको कि मसल मास कम हो गया है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, यानी जो अपने सीनियर्स हैं जो अगर ये चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो काफ़ी टाइम हम देखते हैं व्हीलचेयर में है या बहुत स्लो चल रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू उनके जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स हैं जो हमारे अब्रॉड लेने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, वो इस चीज़ को जान के उसको बहुत उस पर ध्यान दे के अपने मसल मास को स्लोली मतलब लॉस बहुत कम होता है, तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी एज तक 75, 80, 85 तक कितने एक्टिव रहते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसल लॉस, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं पोस्ट मेनोपॉज, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होना ये एक समस्या हो सकती है मेनोपॉज के बाद, और कैंसर्स के रिस्क भी थोड़ा से बढ़ सकते हैं मेनोपॉज के बाद।
0: अच्छा जी, ध्यान रखना होगा।
1: जी डेफिनेटली
0: ध्यान रखना
1: जी।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं कि जिस मेनोपॉज के बाद हम सोचते हैं कि अब बहुत सारी समस्याओं से हम फ्री हो गए हैं, क्योंकि हर महीने माहवारी आना महिला को बहुत परेशान कर देता है और खासतौर से वर्किंग वीमेन के सामने बहुत दिक्कत आती है, तो उसे लगता है कि चलिए अब इन बातों से हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो समस्याएं आप बता रही हैं कि मेनोपॉज के बाद होने वाली समस्याएं और भी खतरनाक हो सकती हैं अगर आपने ध्यान नहीं रखा
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: तो वर्किंग वीमेन के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, अगर वो इस मेनोपॉज के लक्षण से गुजर रही है, ऑफिस में भी वो इतना स्ट्रेस उसको होता है, घर पे आके भी काम करना पड़ता है, तो वो अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखे, जो चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में है, आपने कहा कि शरीर में आने वाले सारे जो बदलाव हैं, आपके अंदर एक सुस्ती आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, तो वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे?
1: तो अगर ये सिम्टम्स, मेनोपॉज के सिम्टम्स अगर बहुत सिवियर हैं, तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी आर्टिफिशियली हम ईस्ट्रोजेंस दे सकते हैं, जो मैंने बोला कि जिसकी प्रमाण मात्रा कम या बंद हो जाए, जिसके कारण ये मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आते हैं, तो हम आर्टिफिशियली उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट डेफिनेटली अंडर द गाइडेंस ऑफ अवर गायनेक गायनेक ही दे सकते हैं, आप अपने आप से ना ले, क्योंकि उससे कैंसर्स के रिस्क भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही होना चाहिए। बट ज़्यादातर इंडिया में विलेजेस में तो आई एम श्योर इतने लोग ये उनको पता भी नहीं होगा कि ये अवेलेबल है, और शायद वो लेना भी नहीं चाहेंगे, वो एक्सेप्ट भी बहुत ईजिली कर लेती हैं। और दूसरा है कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये अगर हम करते हैं, आई कैन नॉट, मतलब ये चीज का इंपॉर्टेंस मैं तो क्या ही आपको बताऊं, कि अगर ये आप रेगुलरली, जो वर्किंग वुमेन के जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं, अगर वो अपने बिजी लाइफस्टाइल में रेगुलर एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, डाइट, इस पे अगर ध्यान दें, तो काफी हद तक अपने सिम्टम्स को वो कंट्रोल में रख सकती हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं, बट एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन।
0: जी बिल्कुल, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है ये थेरेपी, क्योंकि आम महिला इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे नहीं मालूम ये थेरेपी होती भी है कि
1: जी,
0: नहीं।
1: जी, जी, जी।
0: तो डॉक्टर साहिबा, जब हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, मेनोपॉज के बाद हमें लगा कि ठीक है, अब हम फ्री हो गए हैं किसी भी तरह का मासिक धर्म से, हम अपने आप को मुक्त पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी महिला को दोबारा ब्लीडिंग हो कुछ समय बाद, महीनों बाद, तो क्या उसे सामान्य समझना चाहिए या तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति आई है?
1: डेफिनेटली ये काफी कॉमन है कि आपका पीरियड मासिक बंद हो गया है, एक साल, दो साल, तीन साल हो गए, और सडनली चार साल के बाद पीरियड आने लगा है, तो ये आम

0: बात भी हो सकती है कि कुछ भी ना हो, जस्ट या समथिंग एज सीरियस एज कैंसर भी हो सकता है. तो ये डेफिनेटली इसको इग्नोर नहीं करना है. आपको अपने गायनेक के पास जाके ये इसका सोल्यूशन, सोनोग्राफी अगर करना चाहे वो, या बायोप्सी करना चाहे, तो डेफिनेटली करना चाहिए.
1: जी, तो चलिए गीत आपकी पसंद का और सुनते हैं और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं.
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए.
1: क्या बात है. लेकिन यहाँ आप हमारे मरीजों की जान बचाने आई हैं. गाना हम आपको जरूर ये सुनाने वाले हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए. उमराव जैन फिल्म से ये गाना
0: आशा भोसले
1: जी, आशा भोसले की आवाज में बहुत सुंदर गजल है, सुनते हैं.

0: डॉक्टर साहिबा, एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब हम आ गए हैं जब बात मेनोपॉज की चल रही है, और आप अभी बता रही थी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, आम महिला तो बिल्कुल नहीं जानती, और मुझे लगता है पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत ज्यादा इस विषय पर बातचीत नहीं करती हैं कि क्या है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या है ये थेरेपी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं, और इसे कब लेना आवश्यक हो सकता है?
1: जी, तो जैसे मैंने बताया कि जब मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो, जैसे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हॉट फ्लशेस हैं, या पेशेंट को एक्चुअली शी वांट्स कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, या मेरी स्किन लूज हो रही है, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मतलब इफ़ शी इज़ डिमांडिंग कि मुझे रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए, डिप्रेशन में जा रही है, या ऐसी कोई भी, मतलब अगर पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है मेनोपॉज के कारण, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बहुत सिवियर है, मतलब हो रहा है, या उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स अगर वो सामने से पूछते हैं कि हमको लेना है, तो वी कैन डेफिनेटली गिव देम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में पैचेस होते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन के पैचेस होते हैं, या क्रीम होती है, या टैबलेट्स होते हैं।
0: अच्छा
1: जी, तो दैट मीन्स आर्टिफिशियली हम ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और इसके साथ हम प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी देते हैं जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को थोड़ा बैलेंस करते हैं, ताकि ईस्ट्रोजन जब ज़्यादा होता है, तो मैंने बताया था कि कैंसर का रिस्क है, मैंने बोला था कि जो लेडीज को लेट पीरियड तक रहता है, तो दे हैव, तो जब अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो उनको स्लाइट रिस्क ऑफ कैंसर रहता है, तो हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन भी साथ में दे सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली अंडर सुपरविजन, या प्लेन ईस्ट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, क्रीम्स, पैचेस, या विथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो गायनेक जैसे अपने हिसाब से डिसाइड करें,
0: हाँ, डॉक्टर अपने हिसाब से तय करेगा कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है।
1: जी, जी।
0: तो ये कितना लंबा चलता होगा, ये थेरेपी कितने समय तक चलती होगी?
1: मतलब सेफली 2-3 साल तक तो ले सकते हैं, बट अब्रॉड तो विमेन बहुत लंबे टाइम तक भी लेती हैं, 8-10 साल भी ले सकती हैं। जी,
0: तो क्या एक आम महिला इसके खर्च को वहन कर सकती है?
1: यस, देखें, मतलब इतनी भी महंगी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, बट इतनी भी महंगी नहीं है।
0: तो क्या ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें जो बहुत मेहनत करती हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करती हैं, उनके सामने भी समस्या आ सकती है क्या? उनके लिए भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जरूरी होती है, क्योंकि उन्हें तो इस बात का
1: नहीं आए, जरूरी तो नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जो ग्रामीण औरतें हैं वो इतनी सहनशील होती हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी इतनी होती है कि मुझे नहीं लगता है कि उनको खास कोई जरूरत होती
0: है।
1: जी,
0: मतलब उनकी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा।
1: यस, और यस, और अब मेहनत है उनकी, जॉइंट फैमिली में रहना, वो एक एटमोसफियर, जो फैमिली, देसी खान पान, देसी हवा, ऑल दैट,
0: ये सभी मिलकर जो उसे मजबूत बना देते हैं। डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे कि चेंजेस आते हैं महिला की जिंदगी में खासतौर से, तो गर्भ के दौरान भी उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। तो प्रसव के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव कौन कौन से होते हैं, और उनके शरीर को या मन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं?
1: आफ्टर डिलीवरी बेसिकली एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं, ये हार्मोन के कारण ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी,
1: तो ये एक हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है वो बढ़ जाता है ताकि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके, और ये कुछ हद तक गर्भ निरोधक भी है, मतलब नेचर ने इतना ब्यूटीफुली ये बनाया है कि अभी ये बच्चे को फीड करिए, बच्चा छोटा है तो प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होना चाहिए।
0: जी, जी।
1: और दूसरा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक अभी काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ, स्पेशली सिटीज़ में, कि डिलीवरी के बाद वुमन डिप्रेस हो जाती है, उसका फिगर चला जाता है, उसकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, बच्चे की देखभाल 24/7 बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलना, तो ये भी एक थोड़ा हार्मोनल चेंजेस के कारण ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये है तो फिर ये डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को ध्यान नहीं दे पा रही है, बहुत रो रही है, या कुछ भी ऐसे लक्षण डिप्रेशन के लक्षण हो, तो उसको नज़रअंदाज ना करके उसकी ट्रीटमेंट लें।
0: यानी डिलीवरी के बाद भी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं कि महिला डिप्रेशन में भी जा सकती है।
1: जी,
0: ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, और इसको हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, या वही जो हमने कहा कि व्यवहार पर इसको टाल कर बात को वहीं खत्म कर देते हैं कि कुछ समय परेशान है, बच्चे को संभाल रही है, घर संभाल रही है, या वर्किंग वीमेन है, ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बच्चे का स्ट्रेस है, ये सब मिलकर इसको डिप्रेशन में ले आए हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसके बारे में हमें सोचना होगा।
1: यस एंड डेफिनेटली अगर ऐसा लगता है तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात। और महिला को अपने हार्मोन की जांच कब कब करवानी चाहिए?
1: वैसे तो हार्मोन की जांच रेगुलरली करवाने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप, तो थायराइड है, प्रोलैक्टिन है, और अगर आपकी एज मे बी 30 के ऊपर है, 30-32 के ऊपर है, तो AMH करके एक टेस्ट आता है कि

0: एक ही क्वांटिटी कम तो नहीं है, तो ये हार्मोनल टेस्ट हम कर सकते हैं, पर अदरवाइज ऐसे रेगुलरली कोई हार्मोनल टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती।
1: अच्छा,
0: एक बहुत मैं इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफी हद तक सिटीज में है,
1: जी
0: जो शायद ग्रामीण क्षेत्र में कम हो क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं, सन एक्सपोजर काफी है, बट सिटीज में विमेन कहाँ धूप में जाती है, इनफैक्ट वो खुद को प्रोटेक्ट ही करती है।
1: महानगरीय व्यवस्था में तो और भी ज्यादा
0: जी,
1: दिक्कत है।
0: तो अपना विटामिन डी और विटामिन B12 अगर जांच करवाना ही है अपना रेगुलरली, तो ये दो तो जरूर से करवाएं, क्योंकि ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से या B12 की डेफिशिएंसी से काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। PCO का प्रॉब्लम भी रिलेटेड टू विटामिन डी डेफिशिएंसी बोला गया है, मतलब बहुत सारे इश्यूज, इनफर्टिलिटी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिलेटेड कहीं कुछ हद तक है। तो अगर टेस्ट करना है रेगुलरली, तो अपनी जो रूटीन टेस्ट, जैसे आफ्टर 40 हम बॉडी चेकअप करवाते हैं, थायराइड इज अनदर हार्मोन जो, हाँ, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड है, अगर मम्मी को थायराइड है या आप PCO हो, आपको डायग्नोस किया है, तो आई एम श्योर कि गायनेक टेस्ट करेंगी ही थायराइड की, तो थायराइड भी रेगुलरली चेक करवाना चाहिए।
1: जी, यानी हमें हर 6 महीने में या
0: साल भर में इज फाइन
1: रूटीन चेकअप होना चाहिए।
0: जी,
1: तो डॉक्टर साहिबा, हम महिलाओं के लिए कोई ऐसा एक लाइफस्टाइल रूटीन बताइए जो अलग अलग उम्र में हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकता है और हम स्वस्थ रह सकते हो, ऐसा क्या रूटीन होना चाहिए, लाइफस्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए?
0: कोई भी स्टेज में, चाहे आप युवा अवस्था में हो या आप मेनोपॉजल हो या आप बच्ची हो, वेरी वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल हर एक स्टेज पे, किशोर अवस्था में भी वैसा ही होना चाहिए और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, सोशल मीडिया से थोड़ा सा
1: दूर रहना
0: अपनी डाइट पे ध्यान रखना, खास करके जो अभी आजकल बच्चे हैं जो पैकेज फूड्स, चिप्स ले लिया, रिफाइंड सब कुछ, मतलब पैकेट खोल के प्रिजर्वेटिव वाला ले लिया, वो अवॉइड करें। होममेड फूड, वेजिटेबल्स आजकल लड़कियां नहीं खाती हैं, काफ़ी मदर्स मुझे कंप्लेन करती कि वो वेजिटेबल्स तो खाती ही नहीं है, तो वो अगर नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली उसके प्रॉब्लम्स, जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी, काफ़ी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फाइबर की डेफिशिएंसी होने ही वाली है। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज यानी एक्टिविटी, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, बच्चे आजकल खेलते भी कहाँ हैं?
1: हाँ, वो खेल बंद हो गया जो हम अपने जमाने में बचपन में खेला करते थे, और इतना खेलते थे डॉक्टर साहिबा कि थकते भी नहीं थे,
0: यस,
1: और घर आकर इतना शानदार खाना खाते थे,
0: यस, और फिर सो जाते थे थक के, यस,
1: चिंता फिक्र नहीं थी, पढ़ाई का इतना बोझ नहीं था,
0: जी जी,
1: और घर का बना हुआ खाना, ना उस वक्त पिज्जा बर्गर तो होते नहीं थे,
0: जी बिल्कुल,
1: और आज तो 2 मिनट जो रेसिपी बन गई है, माता पिता भी चूंकि वर्किंग हो गए हैं तो उन्हें लगता है कि चलिए 2 मिनट में कोई खाना बनता है तो बच्चे को खिला दिया जाए, सभी कारण भी मिलजुल कर इन चीजों को देते हैं।
0: तो ये सब एक्चुअली खान पान, लाइफ स्टाइल, मतलब सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूंगी कि हम इंडिया से हैं जिसने पूरी दुनिया को योग दिया है, तो हम सबको हर घर में योग होना बहुत ही जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात, आप लगातार इस इंटरव्यू में बता रही हैं कि योग, प्राणायाम और ध्यान करना हमारे जीवन में कितना जरूरी है।
0: बहुत, काफी सारे लाइफस्टाइल कोचेस अभी आ गए हैं कि आप अपनी डिजीजेस को प्रिवेंट करें, ना कि वो आए उसके बाद उसके पीछे, यू नो, कि मैं अब रिवर्स कैसे करूं इस चीज को। इंडिया इज वन ऑफ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अगर हम जागरूक हो जाते हैं इस चीज के लिए पहले से ही, अपने बच्चों को बचपन से ही इस सिखाते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, और खुद भी वो फॉलो करना है। एक्चुअली आप बोलते हो कि टाइम नहीं है, बट हम सोशल मीडिया देखते देखते कहाँ 1 घंटा निकल गया, पता भी नहीं चलता है। तो ये अगर हम एकदम जागरूक होके कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अगर रखेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो बदलाव आएगा।
1: बिल्कुल, आपने कहा, और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव हम खुद ही महसूस करेंगे, और उसके बाद हमें लगेगा कि अरे, जिस चीज से हम बच रहे थे या हमने अपने आप को बचाए रखा था, वो चीज ही हमारे लिए कितनी जरूरी थी।
0: जी,
1: तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का, और उसके बाद और महत्वपूर्ण बातचीत आपसे करते हैं। कौन सा गीत सुनेंगी आप?
0: There are so many कि तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम,
1: ये गाना सुनना चाहती हैं, फिल्म जवानी से ये गाना है और आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: डॉक्टर ज्योति, हम आपसे अभी बात कर रहे थे जो समस्याएं महिलाओं से संबंधित है उसके बारे में। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे करना चाहते हैं IVF पर, जिसकी आप विशेषज्ञ हैं। और लेकिन आम महिला, आज भी अगर हम ग्रामीण तबकों की बात करें तो शायद इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं कि क्या है ये शब्द और इसके मायने क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि IVF है क्या और किन परिस्थितियों में डॉक्टर किसी दंपत्ति को IVF की सलाह देता है।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है आज के करंट सिचुएशन में, स्पेशली सिटीज में।
0: जी,
1: ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी थोड़ा बहुत कि प्रेगनेंसी कैसे रुकती है, मतलब द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी ताकि ये समझ सके।
0: जी।
1: तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर महीने एक अंडा फूटता है, आइदर राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी से। यूट्रस है, यूट्रस के साइड में दो ट्यूब्स हैं। हर महीने जब अंडा फूटता है तो जो ट्यूब है उसके एंड पे टेंटिकल्स यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो वो एग को सक कर देते हैं और वो एग ट्यूब में चला जाता है। और जब स्पर्म्स एग को मिलते हैं इन द ट्यूब तो एक एम्ब्रियो या बच्चा बनता है इन द ट्यूब, और फिर वो बच्चा को ट्यूब के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो वो एम्ब्रियो को पुश करते हैं इनसाइड द यूट्रस, और जब वो चिपक जाता है यूट्रस के अंदर तो वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब कि जब एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है फॉर मोर देन वन ईयर, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी हुई और चलो दो महीने में प्रेग्नेंट होना चाहिए या चार महीने में हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वन ईयर के बाद भी जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है वुमेन, उसको हम डिफाइन करते हैं एज इनफर्टिलिटी। तो ये IVF जो है ये एक टेक्निक है इनफर्टाइल पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं।
0: जी।
1: यानी जो बच्चा है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो ट्यूब्स में होती है नेचुरली नॉर्मली, वो हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस में कहीं पे भी अगर पेशेंट को कोई इशू है, जैसे अंडे फूट नहीं रहे हैं या अंडे की प्रमाण मात्रा कम है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या यूट्रस में क्षमता नहीं है बच्चा रखने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जैसे ट्यूबरक्लोसिस के कारण पूरा यूट्रस कभी कभी अंदर चिपक जाता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो IVF काफी हद तक ये सब प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है।
0: जी।
1: तो पेशेंट्स को नॉर्मली एक अंडा फूटता है, IVF में हमको चाहिए कि पेशेंट्स को कम से कम चार पांच या उससे ज्यादा अंडे फूटे, मतलब हमको मिले। तो उसके लिए पेशेंट को हम आर्टिफिशियली इंजेक्शंस देते हैं। नॉर्मली नेचुरली तो एक ही अंडा बढ़ने वाला है, हम इंजेक्शन दे के ज्यादा अंडा जितने हो सके उतने पॉसिबल अंडे विद इन लिमिट्स ऑफकोर्स हम स्टिमुलेट करते हैं, उसको हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। और फिर वो पेशेंट को अंडर एनेस्थीसिया वो अंडों को बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में या हम बाहर लैब में रखते हैं। फिर हस्बैंड के सीमन को वॉश करके उसके जो स्पर्म्स हैं इंजेक्ट करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। अगर इंजेक्ट करते हैं उसको इक्सी बोलते हैं, एक फर्टिलाइजेशन अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं मतलब तो वो इक्सी बोलते हैं, या नेचुरली हम मिक्स कर दें स्पर्म्स के साथ तो उसको प्लेन IVF बोलते हैं। फिर जो बच्चे जो एम्ब्रियोज जो बनते हैं वो हम लैब में लेबोरेटरी में बनते हैं। नॉर्मली जो ट्यूब में मैंने बताया एम्ब्रियो बनता है, ये IVF में लेबोरेटरी में बच्चा को हम मतलब रखते हैं और फिर जो पेशेंट है उसके यूट्रस में हम ट्रांसफर कर देते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज। तो ये प्रोसेस को हम IVF बोलते हैं।
0: जी। तो आपने एक बहुत गहराई से ये बात बताई कि IVF आखिर है क्या। तो क्या हर ऐसे दंपत्ति को IVF की जरूरत होती है जिन्हें गर्भधारण में परेशानी हो रही है, जिसको आपने कहा कि इनफर्टिलिटी बांझपन की जो शिकार दंपत्ति है?
1: तो सबको तो नहीं होती है। कई बार जैसे PCO पेशेंट्स ने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, बहुत वजन है, वजन कम कर दिया। इनफैक्ट इवन 5% अगर वजन कम कर देते हैं, सिर्फ 5%,
0: अच्छा।
1: तो भी काफ़ी हद तक PCO के जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो जाते हैं और पेशेंट नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकती है। इनफैक्ट कितने सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल बदल के,
0: अच्छा
1: जी, अगर स्मोकिंग है ड्रिंकिंग है वो सब बंद करके, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब जो मैंने बताया, ये सब प्रॉपर डाइट वगैरह फॉलो करके, तो काफ़ी हद तक
0: ये दूर कर दी
1: नेचुरली, यस, विदाउट एनी ट्रीटमेंट. और दूसरी एक IUI करके भी एक प्रोसीजर है जिसमें हम सिर्फ, मतलब नेचुरली है प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन वगैरह जैसे मैंने नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही होता है, बट इसमें जो है स्पर्म्स जो है हस्बैंड के स्पर्म्स हम जो नॉर्मली वजाइना में डिपॉजिट होते हैं नेचुरल इंटरकोर्स में, यहाँ पे हम IUI में उसको वॉश करके यूट्रस के अंदर डिपॉजिट करते हैं, बस खाली उतना
0: फैसिलिटी.
1: हाँ, तो ये एक छोटा सा हेल्प अगर स्पर्म काउंट कम है.
0: अच्छा, तो कैसे दंपति ये विचार करेगा या डॉक्टर विचार करता है कि IUI से ये काम करना है या IVF को अपनाना है, ये डॉक्टर
1: पहले तो
0: करता है?
1: यस, ये पहले सब टेस्ट होती हैं. ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वुमेन के कारण बच्चा नहीं, ये नहीं है. ये जो नॉर्मल हमारे लोग समझते हैं कि लेडी में ही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं है. काफी हद तक है, 40% चांस ये है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है,
0: ये समस्या होती है. और ये तो
1: कई बार दोनों में होती है, कई बार हस्बैंड में होती है, लेडी में नहीं होती है.
0: लेकिन
1: ब्लेम होता है खास करके विलेजेस में, तो बहुत ही डिफिकल्ट.
0: गांवों में तो इस बात को आज भी माना जाता है कि महिला बांझ है और उसे बड़ा, मतलब बुरा सुनना पड़ता है, जिसका दुख होता है. आज इन चीजों से पर्दा उठा है कि महिला और पुरुष दोनों ही बांझपन के कारण हो सकते हैं.
1: और एक दूसरा है कि जो अपने कल्चर में बेटा बेटा स्पर्म्स यानी हस्बैंड के जेनेटिक मटेरियल से बनना, जब बेटी होती है तो सब बोलते हैं कि तेरे कारण बेटी हो, बट एक्चुअली हस्बैंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आइदर अ गर्ल, लड़की या बॉय.
0: जी बिल्कुल सही कहा, इस पर से भी लोगों का अभी काफी जो है भ्रम उतरा है. तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का,
1: तेरे मेरे होठों पे चांदनी फिल्म.
0: चांदनी फिल्म का ये गीत सुनते हैं. तेरे

0: जब हम बात कर रहे थे आईवीएफ की, इससे पहले आपने कहा कि जो इनफर्टिलिटी है यानी बांझपन है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं किसी महिला में या पुरुष में बांझपन, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि जो दंपति उस दौर से गुजर रही है उन्हें आप क्या सलाह देंगी।
1: जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, जैसे ओवरी में प्रॉब्लम है, अंडे फूट नहीं रहे हैं, या ट्यूब ब्लॉक्ड है, या लाइनिंग सही नहीं है, बहुत पतली है, या हस्बैंड में स्पर्म काउंट, एक सर्टेन स्पर्म काउंट होना ज़रूरी है, उससे कम हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले ये सब इन्वेस्टिगेट करें, अपने डॉक्टर को मिलें, इन्वेस्टिगेट करें, डिसाइड करें कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर सही तरह से उसका इलाज करें। मतलब IVF ऐसा नहीं है कि IVF करने से 100% है, इनफैक्ट सक्सेस रेट ऑफ IVF सिर्फ 30-40% ही है। तो

0: ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से हो ही जाता है सबको, तो ये भी बहुत
1: ज़रूरी का भी ध्यान रखना है। तो जब बात हम कर रहे थे कि इनफर्टिलिटी के शिकार कुछ दंपतियां हैं, तो क्या ऐसा भी है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और उसके बाद जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी है? इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं, अगर ये है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और हाँ, दंपति में जो मतभेद या मनमुटाव हो जाते हैं इन विषयों को लेकर, उन्हें भी हम दूर करना चाहेंगे।
0: जी, प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कि वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है।
1: अच्छा, ठीक है।
0: यानी कोई अबॉर्शन भी नहीं हुआ है, मतलब कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब कि आइधर उसको पहले बच्चा है और अब नहीं हो रहा है, या पहले अबॉर्शन हो चुके हैं एक दो या ज़्यादा और अब नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास जाएं, दोनों अपना टेस्ट्स कराए हैं और फिर लेट द गायनेक डिसाइड करे कि इनको क्या ट्रीटमेंट। पेरेंटहुड एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है। आजकल विमेन आर वर्किंग, तो वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रही हैं फाइनेंसेस में, घर चलाने में, तो ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए जितना कि एक वुमन को रहना चाहिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में ही प्रॉब्लम है, तो ये एक चेंज होना ज़रूरी है। बिकॉज स्पर्म काउंट जब कम रहता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि इनफर्टिलिटी का। तो मतलब अगर प्रॉब्लम हस्बैंड में है और हम वाइफ को ट्रीट करें तो वो कैसे ही प्रेग्नेंट होगी। अगर उनका अल्कोहल या टोबैको सेवन है तो वो भी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कपल आके हस्बैंड डिस्कस करें जो भी इश्यूज हैं, उसको
1: डॉक्टर के सामने
0: रखें और फिर उससे डील करें, क्योंकि ये जॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि और दोनों ही रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जन रेडी नहीं है और एक जन को, दोनों को सेम पेज पे आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे।
1: और मेल ईगो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जब आपको परिवार आगे बढ़ाना है तो दोनों को मिलकर सोचना होगा, डॉक्टर के पास जाकर इस समस्या का हल लेना होगा।
0: ये जो फर्टिलिटी जो है, ये मैक्सिमम जो है ये अपनी 20s और अर्ली 30s में होती हैं। अर्ली 30s यानी 35 के पहले फर्टिलिटी जो है, नेचुरल फर्टिलिटी जो अच्छी रहती है, आप अगर डिले ना करें ज़्यादा प्रेगनेंसी, बिकॉज नहीं तो फिर आपको ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की हेल्प की शायद ज़रूरत पड़े। वैसा है। और दूसरे की अगर शादी नहीं हुई है, एक फ्रीजिंग भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आपके अंडे फ्रीज कर दिए, या आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो आप एम्ब्रियो को फ्रीज कर सकते हैं। एक बार एक डॉक्टर गायनेक को डेफिनेटली मिल लें, जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग भी अगर करें, जैसे देर आर सर्टेन डिजीजेज लाइक थैलेसीमिया जो एक ब्लड डिसऑर्डर है, जहाँ पे आपके जो बच्चे हैं उनको हर हफ्ते या हर 10 दिन या हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है, वो थैलेसीमिया। तो वो अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सर्टेन टेस्ट करते हैं, तो काफ़ी हद तक ऐसे बच्चे को आप इस दुनिया में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आप अवेयर होने चाहिए उस चीज़ के बारे में, सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, अगर वो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में अगर हो जाता है तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वो प्रेग्नेंट होने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाके कि मुझे अभी प्रेग्नेंट होना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, विटामिन लेने होते हैं, फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये सब, तो ऑलवेज बेटर है कि एक बार एक विजिट करके आए, खास करके अगर आपकी शादी लेट हुई है तो।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है, सुनते हैं आपकी पसंद का ही गीत।
0: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना,

0: डॉक्टर ज्योति, आज हमने आपसे महिलाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत की है और अब आखिर में कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम महिला के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि 40 पार की जो महिलाएं हैं किस तरह से ओवरऑल अपना चेकअप कराएं, साल में, महीने में, छह महीने में, किस तरह से अपनी दिनचर्या वो सेट करें, किस तरह से डॉक्टर की परामर्श से अपना जीवन यापन करें।
1: जी, तो जैसे हम बोलते हैं कि चाहे औरत हो या मर्द हो, हम 40 साल या 35 साल के बाद सर्टन ब्लड टेस्ट, सर्टन टेस्ट, जो बॉडी चेकअप जो टेस्ट कराते हैं वो तो करानी ही है दोनों को। उसके अलावा एज अ वुमन थोड़े से स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर, थैली के मुंह का कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी होती है और एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर्स के लिए रेगुलर सोनोग्राफी होती है। तो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे ही सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है उसके 3 साल के बाद पैप टेस्ट हर साल कराना चाहिए। पैप टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, एक ओपीडी में ही होता है, एक 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं पैप टेस्ट के लिए। तो ये हर लड़की या हर वुमन को जाना चाहिए पैप टेस्ट करने के लिए, फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग फॉर कैंसर।
0: जी,
1: सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में नंबर वन कैंसर है। सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमाण मात्रा ज्यादा है, तो उसके लिए है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी

0: ये एक एक्सरे है, एक टाइप ऑफ एक्सरे, जिससे हमको छोटा सा कोई भी गांठ जो वैसे पता नहीं चलता है लेकिन मैमोग्राफी में पता चलता है। इसके अलावा एवरी वुमन हर पीरियड्स के बाद या मेनोपॉज के बाद कि कोई गांठ या निपल्स में से कोई डिस्चार्ज आना, कोई ब्लडी डिस्चार्ज आना, या स्किन एक साइड पे खींची हुई है, या कुछ भी अलग दिखे अदर देन रूटीन, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके आफ्टर 35-40 फॉर ब्रेस्ट कैंसर। एंड सोनोग्राफी जैसे मैंने बताया एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए वन सोनोग्राफी वंस एवरी ईयर ये करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल वुमेन कि रेगुलर चेकअप, जैसे आप अपना हीमोग्लोबिन कराते हैं, थायराइड चेकअप कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल का टेस्टिंग करते हैं, ECG निकालते हैं, अपने आईज टेस्ट करना है ग्लोकोमा के लिए या चश्मे के लिए, स्ट्रेस टेस्ट कराते हैं, ये सब के अलावा ये टेस्ट भी बहुत ज़रूरी हैं।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि महिला को आम तौर पर कितना सचेत रहना चाहिए जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ज्योति शाह, आपने विविध भारती के स्टूडियो में आकर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और अपना अमूल्य वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे PCOD और IVF इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी तक आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 5 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास में अवसर तलाश सकती है। इससे पहले भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ज्यूरिख अप्लाइड साइंसेज विश्वविद्यालय के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता में सहयोग के लिए समझौता किया गया। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय स्विट्जरलैंड संबंधों के लिए राष्ट्रपति गी पहामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया था।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी

0: इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत की राजकीय यात्रा पर आए स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पहमला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है। वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एक तरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम को मंजूरी दी है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि कल है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। India and Switzerland today signed several agreements to promote cooperation and collaboration in the fields of transportation technologies, mobility systems and infrastructure. An implementation arrangement for cooperation in innovation, technology transfer and entrepreneurship between the Department of Science and Technology and the Zurich University of Applied Sciences was also signed. These pacts were inked following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. Later, in a joint press meet, Prime Minister Modi said that India and Switzerland have taken several important decisions to enhance market access for Indian exports in Switzerland and further facilitate investment between the two countries.
0: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे भारत के एग्रीकल्चर, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स की स्विट्जरलैंड में निर्यात बढ़ेगी और साथ साथ भारत के बायोटेक, लाइफ साइंसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए स्विस इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे।
3: Briefing media in New Delhi, Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said Swiss companies can explore opportunities under Make in India through joint production and development defense sector. He said both sides emphasized continued cooperation in sectors like infrastructure, science, technology, space and nuclear energy. President Parmelin arrived in New Delhi this morning on a 3-day state visit to India. Finance Minister Nirmala Sitharaman has hailed India-European Union free trade deal, saying it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Speaking at the Munich leaders' meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said that the deal, aptly described as the mother of all deals, covers economies representing around 2 billion people and about one-fourth of global GDP. The finance minister said the US-India trade deal negotiations are still ongoing and yet to get finalized. The Supreme Court today declined to pass an interim order seeking suspension of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar over allegations of unilateral decision-making in the Election Commission during the special intensive revision of electoral rolls. A bench headed by Chief Justice Surya Kant issued notices to the Centre, the Election Commission and other respondents. The court also observed that it cannot pass an ex parte order solely on the basis of newspaper reports. The Punjab and Haryana High Court today directed the Central Bureau of Investigation, or CBI, to probe allegations of corruption linked to the Punjab Chief Minister Bhagwant Mann's office and submit a report within 2 months. The court took the decision following allegations made by the Enforcement Directorate in connection with corruption and cash for transfer case involving an officer on special duty to the Chief Minister. The Enforcement Directorate had reportedly sent 3 letters to the Punjab Director General of Police seeking registration of an FIR alleging widespread corruption in government transfers and postings, but state police took no action. The BJP has announced the name of 8 candidates for the upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Ojha, Prakash Pal, Vidya Sagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. Tomorrow is the last day for filing of nominations for the biennial election. Polling for the 10 Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh and 1 seat in Uttarakhand, along with a by-poll to 1 seat from West Bengal, will be held on the 16th of this month. The 2026 Nobel for Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegman and George Nagel for the discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics, a technique that has transformed the study of the brain. The Nobel Assembly at Karolinska Institute in Stockholm announced this today. Deisseroth is a professor of bioengineering, psychiatry and behavioral sciences at Stanford University in the US. Hegman, and a German biophysicist, studied light-sensitive proteins in microorganisms. Nagel, a German neuroscientist, contributed to the discovery and characterization of microbial opsins and demonstrated their potential as light-controlled ion channels. And that is the end of this news bulletin.
4: पांच बजकर 10 मिनट हुए हैं। लीजिए सुनिए भजन।

0: अंदाज वही कुछ अल्फाज है बदले,
1: सौगात नई कुछ नए तराने,
2: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
0: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
1: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
0: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
1: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
2: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
3: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
4: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
3: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
4: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
3: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
4: भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

ये तो थी भक्ति संध्या कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:25 होने को हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। हम हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम के साथ और युवा मंच में आज है सोमवार। नई उड़ान, नई सोच, नए जोश के साथ ये कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं। युवा अवस्था जो है जीवन का वह दौर होता है जब आंखों में सपने होते हैं, मन में कुछ कर गुजरने का जुनून होता है और भविष्य को अपनी मेहनत से बेहतर बनाने की ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा युवाओं को एक नई उड़ान देती है। उड़ान केवल आसमान में ऊंचा उड़ना ही नहीं है, और उड़ान का अर्थ होता है अपने डर के आगे बढ़ना, अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करना, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास करना। आज का युवा नए विचारों, तकनीक और ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहा है। छोटे शहरों, गांवों से निकलकर युवा शिक्षा, विज्ञान, खेल, कला, उद्यमिता और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं। अवसर पहले से अधिक हैं, लेकिन इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए मेहनत, अनुशासन और धैर्य जरूरी है। जीवन की राह में असफलताएँ भी आएंगी, कभी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, कभी परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में नहीं होंगी, लेकिन असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने और फिर से प्रयास करने का अवसर है। एक मजबूत युवा वही है जो गिरकर संभलता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। हम भी आगे बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा, गाना आपको सुनवाएंगे और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे।

0: जी बिल्कुल, दिल बहुत से सपने संजोता है, लेकिन रंग सपनों में वही भरते हैं जो मेहनत करते हैं। तो कुछ ऐसे ही सपने संजोए खिलाड़ी की बातचीत आपको प्रोग्राम में सुनवाते हैं। युवा साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। हम हाजिर हैं एक बार फिर से आपके अपने प्रोग्राम में, और हर बार की तरह आज भी एक नए सेगमेंट के साथ हम हाजिर हैं। युवा मंच कार्यक्रम में आज बात करेंगे स्पोर्ट्स बीट की। खेल जो है मैदान पर जीत और हार का नाम नहीं, बल्कि ये हमें अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और चुनौतियों से लड़ना सिखाता है। और आज खेल संसार में हम मुलाकात करेंगे एक ऐसी ही युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी से, जिन्होंने अपने मेहनत, लगन और खेल के प्रति जुनून से अपनी अलग पहचान बनाई। जानेंगे उनकी खेल यात्रा, शुरुआती संघर्ष, प्रशिक्षण उपलब्धियों और उनके सपनों के बारे में, जिन्हें वे बास्केटबॉल के कोर्ट पर पूरा करना चाहती हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज में है नंदिनी चौधरी जी, जो कि अवार्ड विनर हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की। तो नंदिनी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू, धन्यवाद। हाँ,
0: तो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने बास्केटबॉल का ये सफ़र कैसे शुरू किया।
1: जब मैंने ये शुरू किया था, तब मैंने ये शुरुआत की थी खेलने की, ये सोच कर नहीं खेला था कि पता नहीं मुझे कितनी सफलता मिलेगी। बस मैंने इतना सोचा था कि इस गेम से मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे ऐसा पता चलेगा कि टीम वर्क जो है वो कितनी मेहनत से सब खेलते हैं और एक ऐसे मुकाम पर ले जाते हैं जिससे हम जीत पाते हैं और हम सबका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है।
0: जी, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने किस उम्र में खेलना शुरू किया था और आपने बास्केटबॉल ही उस समय क्यों चुना?
1: मैं जब 12 साल की थी, तब से मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। शुरू शुरू में तो मैंने इंटरेस्ट लेके खेला, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं खेलती गई, जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मुझे पता चला कि जिंदगी में अकेले ही हर चीज़ नहीं हासिल हो पाती, टीम वर्क भी उतना ही ज़रूरी है जितना अकेले मेहनत करना।
0: क्योंकि बहुत सारे लड़कियों के लिए खेलों में चुनाव होते हैं, हॉकी खेलती हैं लड़कियां, फुटबॉल खेलती हैं, क्रिकेट भी खेलती हैं, आपने बास्केटबॉल को ही अपना पैशन क्यों बनाया?
1: मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि बास्केटबॉल जो है वो लड़कियों के लिए भी इतना अच्छा गेम है, क्योंकि इसमें जो है वो हम टीम वर्क के थ्रू खेलते हैं, इसमें मेंटालिटी जो है और एक कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए रखते हैं गेम में, जिसकी वजह से एक इनपुट जो है हमारी गेम में मिलता है, जिससे पता चलता है कि हमें डिफेंसिव मोड पे या फिर हमें जो है अटैकिंग मोड पे एक साथ चलना होता है।
0: जी, जब आप छोटी थी भी आपने सोचा था कि मैं बास्केटबॉल खेलूंगी?
1: नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा
0: या
1: था।
0: तो आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बास्केटबॉल पहले से खेलता हो, तो उससे आपने प्रेरणा ली हो पहले?
1: जी नहीं, ये सिर्फ मेरी टीचर्स की वजह से हुआ, जिन्होंने मुझे आगे प्रमोट किया।
0: स्कूल में आपको पहले मौका मिला होगा बास्केटबॉल खेलने का। आपने अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस पाए कि आप जब बास्केटबॉल खेलने लगे तो पहले का व्यक्तित्व और अब का पर्सनैलिटी जो है उसमें कितना अंतर है?
1: मुझे ऐसा लगता था कि पहले मुझ में जो है एक स्ट्रेंथ नहीं है, ना ही मैं इतनी ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हूँ। इस गेम ने मुझे इतना कॉम्पिटिटिव नेचर दिया और इतनी मेंटली स्ट्रांग बनाया कि जिससे मुझे पता चला कि गेम में सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रेंथ ही काम नहीं आती, जबकि आपका ब्रेन, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, आप जो टीम वर्क करते हो हर एक के दिमाग से खेलना पड़ता है, आप अकेले ही नहीं फील्ड में खेलते हो।
0: जी,
1: जो हर किसी के साथ जब आप खेलना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि मुझ में जो कमियां शायद वो सामने वाले में नहीं है, तो आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करते हो, जिसकी वजह से आप एक ग्रुप में खेलते हो और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है।
0: जी, खिलाड़ी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, मेहनत या टैलेंट?
1: मैं कह सकती हूँ कि टैलेंट जो है वो शुरुआती में एक काम आता है, क्योंकि हम इंटरेस्ट लेके खेलते हैं और हमें पता चलता है कि हमें ये हुनर है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे पता चलता है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उसकी वजह से जो है वो टैलेंट नहीं बल्कि हमारी मेहनत काम में आती है। जितना हम हार्डवर्क करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी गेम स्ट्रांग होगी और उतना ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस बिल्टअप करते चले जाएंगे।
0: जब आपने फुटबॉल अपने जीवन में चुना, तो आपके परिवार और दोस्तों की प्रतिक्रिया या क्या रिएक्शन आपका उनका रहा कि आपने फुटबॉल ही क्यों चुना?
1: बास्केटबॉल मैंने इसलिए चुना क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जैसे मैं सिर्फ पढ़ने में नहीं, मैं खेलने में भी उतना ही फोकस करती थी, तो उन्हें ऐसे लगा कि शायद ये पढ़ने में वीक हो जाएगी या फिर खेलने में भी उतना कम हो जाएगी।
0: जी, माता पिता ने आपको रोका होगा कि अगर आप खेलने पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो शायद पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऐसा हुआ कभी?
1: नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ।
0: जी, आपने पढ़ाई और खेल को बराबर ही लेकर चली हैं। जी, शुरुआती दौर में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब आपने बास्केटबॉल जो है वो खेलना शुरू किया?
1: मुझे शुरू शुरू में खेलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई, मुझे अपनी कंसंट्रेशन लगाने में बहुत दिक्कत आई, मुझे पहले गेम नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सिर्फ बास्केटबॉल तो है, सिर्फ टैप करना है या बाउंस करना है, पर नहीं, बास्केटबॉल इससे भी बहुत बड़ी चीज है। हमें कैसे खेलना है, कितने टैप करने हैं, कैसे हमें बास्केट करनी है, बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत सारे रूल्स को सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है।
0: जी, जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमें नरिश करते हैं, उन्हें हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं जी, तो गेम भी कुछ इस तरह की चीज है। हम शुरुआती दौर में तो हमें टीवी में जब हम देखते हैं या रेडियो में हम उसकी कमेंट्री सुनते हैं उसमें आकर्षण तो बनता है कि ऐसे लगता है नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब हम उसको खेलना शुरू करते हैं तो वहां पर उसके दांव पेच जो है धीरे धीरे हम समझना शुरू करते हैं। उसी तरह जिस तरह से परिवार जो हमारे माता पिता हमें बड़ा करते हैं, हमें कमियां देखते हैं, उनमें सुधार करते हैं, तो उसी तरह हम भी खुद में सुधार करते हैं, हमें खेलों में निखार लाते हैं। अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी कि आपकी खिलाड़ी के तौर पर सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
1: मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैं बहुत अच्छा डिफेंसिव मोड पे खेलती हूँ और मैं सामने वाले को उस तरह से अटैक नहीं करने देती हूँ जिससे हमारी बास्केट ना हो गेम में। हम डिफेंस का काम ही यही है कि हम सामने वाले को रोकें, अपनी टीम को बास्केटबॉल पास करें ताकि वो बास्केट कर सके, और हम उस चीज से बचने के लिए डिफेंसिव मोड का अटैक करते हैं या फिर उनको रोकते हैं कि जिस वजह से वो उन्हें रोकेंगे तो वो अटैक नहीं कर पाएंगे हम पे।
0: मैच के दौरान खेलते हुए बड़ी सारी अलग अलग सिचुएशन हमें फेस करने पड़ती हैं, अलग अलग चीजें हमें देखने पड़ती हैं, तो मैच के दौरान जब प्रेशर होता है उस समय आप कैसे हैंडल करते हैं?
1: मैं बस इतना सोचती हूँ कि मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जीत जाएंगे या जीतने वाले हैं, हमें बस इतना सोचना होता है कि पूरी गेम थ्रू आउट द गेम हम बस अपना बेस्ट देते चले जाएं। अगर हम अपनी परफॉर्मेंस पे ट्राई करेंगे कि हम उसे बेस्ट करें तभी रिजल्ट आ पाएगा।
0: घर में तो हमारे माता पिता हमें देखते हैं, हमारी कमियाँ जो है उसको सुधारते हैं, हम में क्या है क्या नहीं है उसको देखते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड में फील्ड में उतरते हैं तो कोच की क्या भूमिका रहती है आपको सुधारने में?
1: कोच हमें बात बात पर नहीं टोकते, वो बस हमें जज करते रहते हैं थ्रू आउट द गेम, और लास्ट में जब हमारी गेम खत्म होती है तो वो हमें बताते हैं कि हम इस जगह पे गलत थे और हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था।
0: जी, तो आपको कभी ऐसा लगा कि जो कोच हैं उनका व्यवहार आप कुछ चाहती हैं और कोच कुछ चाहते हैं, कुछ इस तरह से व्यवहार लगा कि आपको सिखाने में कुछ उनकी खूबियां हैं उनकी कमियां रही हैं?
1: जी बिल्कुल, देखिए एक ह्यूमन नेचर है, हम जो चाहेंगे हमेशा वही नहीं होता। कई बार कोच जो है हम चाहते हैं कि वो हमें जब हम अच्छी गेम खेलते हैं तो हम चाहते हैं वो हमें अप्रिशिएट करें, लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम अगर उन्होंने अभी कह दिया तो शायद हम अपने गेम पे अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे।
0: जी, ये भी होता है कि आपको और भी दी बेस्ट स्टेट में ले जाने की उनकी कोशिश होती है। अच्छा, एक खिलाड़ी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है?
1: खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि वो अपने आप को फिजिकली से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग करे।
0: जी, तो
1: क्योंकि जब हम मेंटली स्ट्रांग होंगे, हमारे दिमाग में अगर ये होगा कि हमें ये मैच जीतना है और हमें अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी, तभी हम फिजिकली उस चीज को कर पाएंगे।
0: सुबह कितने बजे उठती हैं और अपनी प्रैक्टिस करती हैं सुबह उठकर?
1: मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगी, मैं सुबह 6 ही बजे उठती हूँ और उस वजह से मुझे 1 या 2 घंटे ही मिलते हैं क्योंकि उसके बाद हमें स्कूल या कॉलेज भी जाना पड़ता है। उसके स्कूल और कॉलेज के खत्म होने के बाद हम 2 से 3 घंटे जो है वो प्रैक्टिस करते हैं।
0: क्या मैच के दौरान कभी ऐसा कोई क्षण रहा है कि आपको लगा हो कि आपको आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है, कभी कोई मैच खेलते हुए?
1: जी हाँ, ऐसा हुआ है। ऐसा तब हुआ है जब हम एक बार बालक रूपी पालमपुर में मैच खेलने गए थे और उस वक्त जो है बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी टीम्स आई थी, लेकिन बारिश भी बहुत थी तो जिस वजह से ग्राउंड बहुत ज्यादा गीला हो गया था, तो हमें जो हमारे जूतों की ग्रिप है और बास्केटबॉल की जो ग्रिप है वो बन नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से हमें हमारी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी। तो तब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सिचुएशन ना होती तो हम और बेटर कर पाते।
0: जी, कई बार हम फिल्म देख रहे होते हैं टीवी में, बड़ी सारी मोटिवेशनल फिल्म आती है जैसे दंगल है या कुछ है, तो आपको कभी उससे भी प्रेरणा मिलती है कि नहीं मुझे भी इस तरह से करना है? क्योंकि आजकल जो हमारी भारत सरकार है महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें आगे लाने के लिए, उन्हें गेम्स में हर फील्ड में आगे लाने के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी फायदा हुआ है इस चीज का?
1: जी बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ गेम्स लड़कों के लिए ही बनी है, लेकिन लड़कियां भी उतनी ही मेंटालिटी से और उतनी ही फिजिकली जो है वो गेम्स खेल सकती हैं।
0: आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि लड़कियों को ये माना जाता है कि बहुत नाजुक सी है और डरी हुई सी, सहमी हुई सी, मतलब ये सोच पुरानी थी, लेकिन आज के समय में जब लड़कियां हमारी हवाई जहाज भी चलाती हैं, लड़कियां हमारी सेना में भी हैं, तो इस समय में अगर आप खेल रही हैं तो आप अपने आप को कितना सशक्त पाती हैं?
1: मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो लड़कियों को जो है वो बहुत, अगर आप में पैशन है उस चीज़ का करने का तो आपको वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, ना ये देखते हुए कि आप लड़का हैं या लड़की। अगर आप पैशनेट हैं अपने काम को लेके, डिसिप्लिन्ड हैं अपने काम को लेके और अपने दिमाग में ये चीज़ फिट कर लेते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस डाल देते हैं, तो शायद आप वो चीज़ कर सकते हैं।
0: जी, तो आपको मोटिवेशन मिलती है कभी ऐसी, जो आप मोटिवेशन मूवीज़ देखती हैं जिसमें लड़कियों को काफ़ी प्रमोट किया जाता है?
1: जी बिल्कुल मिलती है, जैसे दंगल हो गई हमारी, यहाँ पे अभी प्रियंका चोपड़ा की एक नई मूवी आई थी जिसमें उन्होंने शायद मैरी कॉम के बारे में बताया था, तो ऐसी बहुत सी मूवीज हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती
0: अच्छा,
1: है।
0: अच्छा, वैसे तो महिलाएं हमारी बहुत ही सशक्त हैं, बहुत स्ट्रांग हैं आज के समय में, अपने आप को लड़कों से कम नहीं मानती, लेकिन महिला खिलाड़ी होने के नाते कभी को आपको ऐसा लगा कि किसी चुनौतियों का, जो जो लड़कों को शायद वो उन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, कभी ऐसा हुआ आपके साथ?
1: जी हुआ, बहुत बार हुआ। जैसे हम लड़कियां जो हैं, बहुत आम सी बात है, हर किसी को हर महीने में पीरियड्स आते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है, पीरियड्स में और नॉर्मल लाइफ में गेम्स खेलना बहुत आसान नहीं है।

0: क्योंकि हमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, हमें भागना पड़ता है, हमें ग्रिप बनानी पड़ती है उस चीज़ की, हमें बैलेंस बनाना पड़ता है, तो कई बार हमारी बॉडीज़ में ऐसे क्रैम्प्स आ जाते हैं
1: मूड
0: जिसकी वजह
1: स्विंग्स भी
0: से
1: होते हैं.
0: मूड स्विंग्स भी होते हैं, जिस वजह से हम खेल नहीं पाते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: तो कई बार ये बैकड्रॉप हो सकता है, लेकिन वही बात आ गई कि जब तक हम अपने विश्वास पे चले रहेंगे
1: जी
0: वो गेम खेल पाएंगे।
1: बिल्कुल. अपने अंदर हमने ये चीज़ जब ठान ली कि हमने करना है, फिर ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो नहीं आती. किसी महिला का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मेडल जीता है जब उस दौरान जब उनके जब वो भाग रही थी और उनके पीरियड्स आ गए थे,
0: जी
1: लेकिन वो
0: बिल्कुल
1: फिर भी भागी और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है.
0: जी हाँ
1: तो ये काफ़ी जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पर काफ़ी ये रील वायरल हो रही है कि महिलाएं मत कहीं रुकती नहीं हैं.
0: जी बिल्कुल
1: जी तभी तो कहते हैं ना कि महिलाएं जो हैं वो काली का रूप भी हैं और एक शांत
0: शक्ति का रूप
1: रूप
0: भी
1: भी
0: है।
1: हैं. जी तो आपके माता पिता, कोच और परिवार ने आपकी सफलता में किस तरह योगदान दिया है?
0: मेरे मम्मा पापा ने हमेशा ही मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरणा दी है कि जितना हम पढ़ाई में आगे रहना चाहते हैं उतना ही हम गेम्स में भी आगे रहें, ताकि हम अपनी बॉडी को उस तरह अडाप्ट कर पाएं, आज की जनरेशन के साथ चल पाएं, ताकि उस चीज़ में हम अपने आप को बेटर दिखा पाएं कि हम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हम फिजिकली भी और एक फील्ड में, एक मैदान में उतर कर भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं।
1: आपको लगता है कि आप जो महिलाएं हैं या गर्ल्स हैं या बॉयज भी हैं, ये जो गेम्स हैं उनको करियर की फॉर्म में लिया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल लिया जा सकता है। हमारे बहुत सारे कोचेज हैं जो आज जिन्होंने हमें सिखाया, आज वो इतने बड़े लेवल पे हैं, हमें देख के इतना प्राउड महसूस होता है कि शायद अगर हम और मेहनत करें तो हम भी उनकी तरह उन उच्च स्तर पे जा सकते।
1: जो खिलाड़ी होता है अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल उसको रखना पड़ता है. तो जो खिलाड़ी आप हैं, तो आप अपने खान पान पर किस तरह से ध्यान देती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, ताकि आपकी सेहत भी बनी रहे और आप खेलने में भी काफ़ी स्ट्रांग फील करें?
0: देखिए, मेरी पहली बात तो ये कि मैंने आज तक दूध पीना नहीं छोड़ा, चाहे मैं जितनी भी बड़ी हो गई हूँ।
1: जी जी
0: मुझे दूध जो है वो बहुत अच्छा लगता है और पीना ही चाहिए, ये हमारी बोन्स को स्ट्रांग करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है।
1: जी
0: दूसरी बात ये कि एक वेजिटेरियन होने के नाते हम अपना प्रोटीन नहीं पूरा कर पाते हैं, तो उसको हम कहीं ना कहीं अडेप्ट करना पड़ता है, जैसे आजकल ग्रीक योगर्ट वगैरह बहुत चल पड़ा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उससे अच्छा अगर हम घर का बना हुआ दही खाएं तो वही सबसे बेटर होगा।
1: जी
0: दही, पनीर अपने घर का बना हुआ और दूध ही सबसे बेटर है।
1: स्प्राउटेड चीज़ें भी खाई जा सकती हैं,
0: जी
1: चने हैं,
0: बिल्कुल
1: मूंग की दाल है, तो उसमें भी काफ़ी प्रोटीन जो है मिल
0: जी
1: जाता
0: हाँ
1: है. ज़रूरी नहीं है इसमें कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन है वो ज़्यादा प्रोटीन हासिल कर पाते हैं. आपका कोई पसंदीदा खिलाड़ी है, आप उसकी तरफ बनना चाहती हैं, उस व्यक्तित्व में जाना चाहती
0: जी मेरा इंटरनेशनल प्लेयर है स्टीफन
1: हैं?
0: स्टीफन करी, वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं एंड ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड अराउंड फॉर मी। आई डोंट नो कि सबके लिए होंगे या नहीं, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लगी। जब मैं छोटी थी तो मैं उनके स्टिकर्स अपने नोटबुक में चिपकाया करती थी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती थी कि शायद मैं इनकी तरह खेल पाऊंगी।
1: जी, तो हर किसी खिलाड़ी के पीछे एक मोटिवेशन होता है, तो आपने शायद उन्हीं से प्रेरित होकर ये
0: जी
1: गेम
0: हाँ
1: का चयन किया होगा. तो हिमाचल की उन बेटियों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो खेलों में आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन आत्मविश्वास की कमी महसूस करती हैं?
0: मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप में वो पैशन है, आप में वो कंसिस्टेंसी है, आप में वो डिसिप्लिन है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ अपनी गेम को जो है स्ट्रॉन्ग कीजिए और उन्हें खेलिए, ताकि आप अपने आप को भी साबित कर सके और लड़कियों को भी मोटिवेशन दे सके, ताकि वो भी उतनी ही अच्छी गेम खेलें जितनी आप खेल सकती हैं। अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाइए।
1: चलते चलते हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं बस इतना ही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने आप पैशन को हमेशा ही फॉलो करते रहें, जो आपके कोच आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जितना भी आपको वो मोटिवेट करते हैं, आप मोटिवेट होइए और अपने आने वाली जनरेशन को भी ये सिखाइए, ताकि हम कभी भी ये चीज़ ना कह सकें कि हमने अपनी लड़कियों को या अपने लड़कों को जो है वो इन चीज़ों से दूर रखा कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है।
1: जी नंदिनी, आप हमारे स्टूडियोज़ में आई, हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद।
2: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय.
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर, बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा. इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के.
2: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा. तनिष्क अटाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई.
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा

0: भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
3: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
2: विजिट तनिष्क विद्यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अटाका प्रोडक्ट TNC अप्लाई।

युवा साथियों, हमारी उड़ान हमारी ऊर्जा होती है। जिस तरह एक नन्ही सी चींटी अपने अथक प्रयास के साथ पहाड़ पर चढ़ जाती है, ऐसा नहीं उसकी राह में मुश्किलें नहीं आती हैं। कभी आंधी, कभी बारिश, कभी तूफान का सामना वो करती है। जब पानी में बहने लगती है तो आसपास की टहनियों और पत्तियों का सहारा लेकर वो आगे बढ़ती है और हर मुश्किल को पार करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। मेहनत तो युवा साथियों सभी करते हैं, लेकिन मेहनत में हमारी कमी नहीं होनी चाहिए। जब अपने सपनों को हमने पूरा करना होता है तो हमें अपनी बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ों को त्यागना पड़ता है। और प्यारी चीज़ें तो युवा साथी आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नींद की। हमें अपनी नींद पर भी कंट्रोल करना होता है ताकि अपनी मेहनत को समय दे पाएं। वैसे तो जिन लोगों के सपनों में जुनून होता है, मुझे ये मंजिल हासिल करनी ही है, ये बात उनके मन में बैठी होती है, तो उन्हें वैसे ही नींद कम आती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम भूख प्यास नींद को त्याग दें और दिन रात मेहनत करते रहें, बल्कि हर चीज़ का बैलेंस करके हमें चलना है। तो नींद उतनी ही लें जितनी शरीर को ज़रूरत है, ताकि फ्रेश होकर आप अपनी पढ़ाई कर सकें। खाने में भी पौष्टिक खाना खाएं जो शरीर और मन को तरोताज़ा रखें। ज़्यादा तले भुने खाने से परहेज करें, क्योंकि इस तरह का खाना हमारे शरीर को पोषण की बजाय नुकसान पहुंचाता है और नींद बढ़ने के साथ साथ हम बीमार भी हो सकते हैं। तो फिर हमें करना क्या है? जी हाँ, हमें एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है। बेकार के गैजेट्स से हमें दूर रहना है। मोबाइल कंप्यूटर का इस्तेमाल उतना ही करना है जितना पढ़ाई के लिए आवश्यक है। आजकल AI का ज़माना है, तो हर कोई किताबें खोलने के बजाय ChatGPT, Gemini या गूगल से अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। किताबी ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हार्ड कॉपी बुक्स पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, ना कि स्मार्ट गैजेट्स पर। हाँ, ज़रूरत पड़े तो ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारी आँखों को तो ख़राब करता है, उसी के साथ साथ स्क्रोलिंग में भी हमारा समय बर्बाद होता है। अब बिल्कुल भी समय हम बर्बाद नहीं करेंगे और आपको एक और मस्ती भरा गाना सुनवाएंगे।

युवा साथियों, आज जरूरत है युवा अपने सपनों को केवल कल्पना तक ही सीमित न रखें, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए छोटी छोटी शुरुआत करें, अपने समय का सही उपयोग करें, नई चीजें सीखें, सकारात्मक सोच रखें और सबसे बड़ी बात, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। हमें हमेशा ये याद रखना है, आसमान किसी एक के लिए नहीं है, उड़ान भरने का साहस रखने वाले हर युवा के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं। तो अपने सपनों को दिशा दें, मेहनत को अपना साथी बनाएं और आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ें। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को तकनीकी सहयोग दिया विकास पठानिया ने, प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह, और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दें इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुने आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सुरमई सांझ। 6:30 पर मौजा गराइंदियां कार्यक्रम पेश किया जाएगा। शाम 7:00 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी शिमला से 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार और आज के संगीतकार हैं SD वर्मन। 9:30 पर कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की पेश किया जाएगा। रात 10:00 से 11:00 तक आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोतो, ये तो थी रूपरेखा आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। आइए अब जानते हैं कल प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। 12:30 पर कल सुनिएगा कार्यक्रम सुनो सखी। कल शाम 5:30 पर कार्यक्रम युवा मंच पेश किया जाएगा।

ये तो थी कार्यक्रमों संबंधी रूपरेखा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:58 होने को हैं, आपसे थोड़ी ही

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 6 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति कल बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इस दौरान वे प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बिलासपुर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा सहित अन्य खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने और सरकारी सेवा में समायोजित करने की घोषणा की है। आज शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने आई इन खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में नौकरी न चाहने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग में नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को भी 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पिछले 3-4 दिन से पर्यटकों की आमद में भारी वृद्धि देखी गई है। 2 से 4 अक्टूबर तक बाहरी राज्यों से करीब 70,000 वाहन शिमला पहुंचे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सामान्य दिनों की तुलना में लॉन्ग वीकेंड पर शिमला पहुंचने वाले वाहनों की संख्या 2 गुना से भी अधिक रही। शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि पर्यटकों की आमद बढ़ने से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा हुआ है। एएसपी शिमला शहरी मेहर पवन ने कहा कि आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए शिमला पुलिस पूरी तरह तैयार है।
1: लॉन्ग वीकेंड के चलते शिमला में काफी टूरिस्ट की आवाजाही रही है। हमारे डेटा के मुताबिक 3 दिनों में 2, 3 और 4 तारीख को कुल मिलाकर के 70,000 के करीब गाड़ियों की आवाजाही रही है। तो आने वाले वीकेंड में ट्रैफिक की समस्या ना हो, ये हम पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे और पुलिस बल पूरा तैनात है और हम अपनी कार्य प्रणाली को भी समय समय पर अपडेट करते रहते हैं ताकि हम और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकें। सभी शिमला शहर निवासी और पर्यटक हैं, उनसे शिमला पुलिस

0: यही अपील है कि आप यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें।
1: उधर कांगड़ा जिला के धर्मशाला और त्रियुंड में भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। हिमाचल फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष अश्वनी बांबा के अनुसार 40 से 50 साल के अनुभव में उन्होंने धर्मशाला में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक नहीं देखे।
2: इधर दो तीन दिन की लंबा वीकेंड आया, मुझे भी यहाँ 40-45 साल हो गया, मैंने इतना रश नहीं देखा था। सड़कें जाम थी, होटल फुल थे, चाहे वो होम स्टे था, चाहे बीएनबी था, चाहे गेस्ट हाउस था, सब फुल थे। टोटल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला। इतना टूरिस्ट आपका सड़कों पे था, होटल्स में था, फिर उससे ज्यादा त्रुण टीच में 5-7 हजार बंदा त्रुण ग्राउंड और उसके आसपास जगह पे हो सकता है।
1: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कुलपति प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने बताया कि देश के करीब 1400 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने बताया कि देश के करीब 56 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीच ओवरऑल रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को चौथा स्थान मिला है। वहीं रिसर्च स्कोर के आधार पर विश्वविद्यालय ने तीसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि विश्वविद्यालय की शोध गतिविधियों व उसकी गुणवत्ता को दर्शाती है।
3: आज हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए बहुत हर्ष का दिन है, जब इस विश्वविद्यालय ने बहुत छोटे समय में एक हिस्ट्री क्रिएट की है। आज जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जब वो नतीजा हमारे सामने आया, तो मेरे लिए भी एक अच्छा सौहार्द मोमेंट था जब हमें ये पता चला कि हमारा विश्वविद्यालय जो है वो 700 से 800 की जो बैंड कैटेगरी है उसमें आया है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय का रैंक 700 नंबर पे आना अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट की है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे रिसर्च क्वालिटी रिसर्च यूनिवर्सिटी बनकर के स्थापित हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये रैंकिंग मिला है।
1: वन्य जीव सप्ताह के तहत कांगड़ा जिले में वन विभाग द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अरण्यपाल वासु कौशल ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न वन मंडलों में लोगों को वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: Hey girls, hi, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए।
5: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
6: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
4: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
4: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ।

मनर उदास और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में रामलखन फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। सुरमई सांझ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
1: सौगात नई, कुछ नए तराने,
2: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
0: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
1: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
2: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
0: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
1: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
0: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
2: जो पहुंचे दिल से दिल तक।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
4: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: शाम के 6:19 और 48 सेकंड आपने ट्यून किया है 103.4 MHz। प्रोग्राम सुन रहे हैं सुरमई सांझ। लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज के युगल सुरों में आवारगी फिल्म का गाना आप आपको सुनवा रहे हैं। संगीत अनु मलिक का है।

0: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
1: सौगात नई, कुछ नए तराने,
2: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
0: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
1: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
2: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय और सुझाव।
0: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
1: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
0: 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
2: जो पहुंचे दिल से दिल तक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए प्रेम रोग का फिल्म का गाना। गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने, गायक कलाकार लता मंगेशकर।

प्रेमरोग फिल्म के इस गीत के साथ आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजा कराई दिया।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राइनियां सुना करदे सारे किसान कन्नै बागवान भाई बहनों का स्वागत कन्नै अज टियाले पर मौजूद मैं यानी रसीलू राम कन्नै मेरा साथ दे दे
1: चुन्नीताई
0: जी चुन्नीताई तो भी
1: राम राम जी कन्नै दो हाथ जोड़ के सारे टियाले पर बैठे सारे अपने अपने घर च बैठे चुल्ले चौंके बैठे सारे दो हाथ जोड़ के राम राम
0: जी जी कन्नै चुन्नीताई दिखा अजकल की गल करिए अहां दिखा दे कि साढ़े सारे किसान साथी जिहड़े सै अपने कम्मे च बिल्कुल व्यस्त हैं कि भाई प्रमुख फसल जिहड़ा हाड़ा धाना दी फसल है तां सैदे ने कि वेला जिहड़ा सै इस वक्त आई चुकिया कन्नै दिखा जी आशा करदे कि सारे खुश हैं तंदरुस्त हैं कन्नै बड़े अच्छे चाहे ने अपने कम्मे कार करा दे कहें कि इस वरिया जड़ा सा मौसम रहा धाना वास्ती सा अहां बोल देना एक बड़ा अनुकूल मौसम रहा समय समय पर वर्खा होंदी रही कन्नै पट्टियां दिखी के भी सांझो लगा था कि हाड़ी जड़ा फसल ही धान हे सा बड़े अच्छे हे कन्नै मैं बोलता कि कम कर दिया बारी है जड़ा सा हाड़े साथियों का मनोबल जड़ा सा दुगना हुआ करदा
1: हुंदा है ना जी
0: तो सही बोलते ना कि जलू मेहनत का फल तुहानू पूरा पूरा मिलता तो भाई मन थोड़ा हमेशा जड़ा सा खुश रहिंदा पर दिखा जी इस वक्त अहां से बोलते ना कि कटाई का टाइम लग्या तो इस कटाई के टाइम जड़ा सा कुछ एक सावधानियां सांझो वरतने की बड़ी भारी जरूरत होंगी कहें कि अजकल अहां दिखा दे कि मशीनों का युग आई है भाई हर काम चाहे सा कटाई की गल करिए चाहे तो है गाने की गल करिए सारे काम जड़ा सा मशीना पर निर्भर हाँ हो तो जलू भी मशीनरी ने तो किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो

0: भाई तुहानू जो कुछ एक सावधानियां रखने की जरूरत जेड़ा सा हमेशा रहती
1: बनाते
0: है।
1: हैं कन्हा। हाँ चाहिए कि हाँ एक प्रशिक्षण ले लैन तो इस कमे कर, क्योंकि जालू हाँ प्रशिक्षण लिया होगा तो इस कमे का फायदा होता है।
0: जी जी कन्हा सह बोलते ना कि जी हाँ सावधानियां की गल करा दे ता, एक तो अजकल सह कटर चली पी हो ना जी,
1: हाँ जी हाँ
0: तो कटर ऐसा नहीं है कि दुकान ते या कुछ ते भी तो लिया कने एकदम चलाना लगी पे। जी तो प्रशिक्षण की गल की तो भाई बड़ी अच्छी गल की, क्योंकि देखा जी हर कुछ दे बसे की गल नहीं होंगी कि तुह कटरे ने अपनी फसलें कट्टी
1: कटर।
0: सकन,
1: हाँ
0: है
1: जी
0: ना
1: हाँ जी
0: जी। कने देखा जी हांजो सह बोलते ना कि काली काली दे कमे बिच बड़ा नुकसान
1: नुकसान भी
0: भी
1: हो जाता।
0: हो जाता, कने सांजो दिखने हो मिलता कि जालू जालू ही अहाँ किसी भी प्रकार की नई मशीनरी
1: मशीनरी
0: ले तो सांजो नहीं चलाना आती, तो कुछ जड़ा जानकार बंदा तिस्ते
1: तिस्ते
0: थोड़ी दे
1: चलवान कने
0: हाँ
1: सीखन।
0: तिस्ते थोड़ा सीखी के कने तीदिया देख रेखा च अहाँ थोड़ा दिया तिसदा प्रयोग करन, तो कने देखा जी थोड़ा दिया टाइम अगर देखा रेखा च कर देन तो फिर करते करते जड़ा सा तुहानू काम सारा जड़ा सा आ ही जाता।
1: हाँ जी हाँ जी
0: कने इस दे सोगी जियाँ पारंपरिक हड़े कम काज है जियाँ गाणी पाते हैं ना जी, तो
1: पहले।
0: मैं ओ
1: हाँ जी
0: गाँदे है गाणी पाते हैं तो सै कलाठियाँ ने भाई तिस्यो हाँ चफदे है ना जी,
1: हाँ
0: या
1: जी
0: कोई ड्रम रख्या कुणी कुछ रख्या है ना जी,
1: हाँ
0: तो तिदी सह विधि होंगी ही
1: पुराणिक विधि।
0: हाँ पुरानी विधि जी सा यो ताना यहाँ पराले ते लाग करते हैं। पर अजकल हाँ दिखा दे के जियाँ कणका
1: मशीनी युग
0: दे
1: आई
0: हाँ
1: है,
0: मशीनी युग आई है, जियाँ कणका दे थ्रेसर होंगे तिया ही भाई
1: दाना दे
0: ताना दे भी थ्रेसर आई हो, कहना भाई जालू भी तुसा इन्हें थ्रेसर ने काम करना है तो भाई सब बार बार मैं तो जो दसा था कि सावधानियां रखनी है, कहना खास करके छोटे जड़ा बच्चे होंगे इन्हें
1: ना
0: थ्रेसर
1: जान।
0: नहीं जाना देने
1: हाँ
0: ने तो हाँ ना
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी
1: जिन्हें कोर्स जिन्हें सीखा होंगे पढ़े होंगे तिना जो तिना ते काम करवा तो और भी फायदा हो सकता।
0: जी जी कने दिखा जी चुनीताई जी है कि एक हड़े ट्याले दी रीत है कि हाँ एक जानकारी पर कुछ गल्लां साझा कर दे ता आज
1: आज
0: दी
1: जड़ी जानकारी असं लेके सह है फसल विविधीकरण के बारे च।
0: जी जी
1: किसान श्रोतियों अगर असं फसल विविधीकरण का तुम जो आसान भाषा च मतलब समझाइए तो सह है अपनी खेती बाड़ी जो एक ते अलावा कई तरह दी फसल उगाना है या फिर ही फसल चक्र अपनाना है जिससे कि हर साल अलग अलग तरह दी फसल उगाई जा सकन। इस दी जरूरत क्यों पौंदी, क्योंकि इस ते मिट्टिया दी सेहत च सुधार होंदा, बीमारियां कने मकौड़ियां ते होने वाले नुकसान जो घट करने च मदद मिलती, कने किसान भाइयों की आय के स्रोत जो बधाने च भी मदद मिलती है।
0: बिल्कुल कने दिखा जी जालू अहाँ एक ही फसला पर निर्भर रहते ना जी,
1: हाँ जी
0: कई बारी अहाँ देखिए कि हड़ियाँ फसलां जड़ा सा खराब हो जाए, चाहे सह प्राकृतिक आपदा हो या फिर हड़ियाँ कई दिया गलतियां हो बंद है ना
1: या फिर
0: जी,
1: बीमारी बीमूरी
0: किसी भी
1: लगे।
0: प्रकार की कोई भी दुर्घटना जड़ा सा फसलों ने भी हो जाती, तो अगर अहाँ फसल चक्कर अपनान अलग अलग फसलां जो उगान तो इस मतलब खतरे ते अहाँ बाहर
1: बच
0: रहने के
1: सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: जो नुकसान ही होना है,
1: हाँ
0: अगर इक्की वक्त नुकसान होगा तो दूसरे वक्त हड़ी
1: फाय
0: नुकसान दी भरपाई
1: भरपाई
0: हो
1: हो जानी।
0: सकनी।
1: हाँ जी हाँ
0: जी
1: जी
0: जी
1: अलग अलग फसलां उगाने का एक और फायदा यह होंगे कि मिट्टिया की गुणवत्ता भी ठीक
0: जी
1: रहती,
0: जी
1: कने अलग अलग फसलां कने अलग अलग पोषक तत्वों की मांग रहती जिससे
0: जी
1: मिट्टिया की उर्वरकता भी बढ़ी जाती, पोषक तत्व की कमी भी दूर होती, कने फसल चक्र कने मिट्टी की सेहत च सुधार होता रहता।
0: जी जी
1: फसल विविधीकरण जो अपनाने ते कीड़िया मकौड़िया कन बीमारी ते निपटने च मदद मिलती, जियां कि किसान भाई जानते हैं कि अलग अलग फसलों ते जो पानी कने पोषक दे तत्वां जो जिन्हां की संसाधना भी अलग अलग तरह जरूरत पौधी है,
0: जी
1: तो फसल विविधीकरण की इस विधि ते पानी कने पोषक तत्वों का बढ़िया कने संतुलित उपयोग होंदा है।
0: जी जी के हाड़े किसान साथी भी जानते हैं कने अह भी जानते हैं कि अगर दिखा अहाँ धान ही उगाते हैं या फिर कणक ही उगाते हैं तो दिखा समय समय पर कितने पानी की जरूरत रहती है, इस जगह अगर अहाँ सोगी सोगी और दलहनी तिलहनी फसलां भी उगान ता या फिर यहाँ फुलां दी खेती करन या फिर बागवानी या औषधीय पौधों की किसी भी प्रकार की दूइया फसलां जिसते अहाँ ज़्यादा तो ज़्यादा पैसे कमाई सकते तो पानी की भी सांझो घट जरूरत होनी, कने फायदा भी सांझो जड़ा सा ज़्यादा
1: ज्यादा
0: होना।
1: होना। हाँ
0: जी
1: जी हाँ जी कने अगर असं तो जो फसल विविधीकरण जो आसान भाषा च उदाहरण देिए तो यह कि अगर किसान एक गेहूं उगाता है कन्ने सोयाबीन उगाई लैंदा है तो उसी खेते तो बगीचे च टमाटर मिर्च चटनी खीरे जिया सब्जियां का
0: हाँ
1: मिश्रण भी
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: लगाई
0: सर
1: सकते हैं।
0: कने दिखा जी हड़े सब्जी उत्पादक साथी जेड़ा न सहता भली भांति जानते हैं कि एक ही खेत विच सह कितनियां फसलां लगाते, जियां जित्थों ही सलगम लगे हो तित्थों ही

0: साग लग गया, तितुई मूलियां लगियां, गाजरां लगियां, सब कुछ, सरों का साग लग गया, पालके का साग लग गया, तां ये सारियां चीज़ां अपनाई के जिहड़ा सा ज़्यादा तो ज़्यादा फायदा साढ़े किसान साथी जिहड़ा सा ले सकदे,
1: कने अपनी आर्थिकी जो भी सुदृढ़
0: जी
1: कर सकते
0: जी जी
1: हैं।
0: बिल्कुल, कने अहां भी थोड़ा दिया अपना गला गलोटू थोड़ा सुदृढ़ करना, थोड़ा दिया अहां
1: विराम
0: विराम
1: लाम
0: लेना,
1: लेना
0: कने
1: कने
0: सुनना लोक गीत।
1: ता ओ सुनदे ने लोक गीत
0: जी जी पर उसते पहले कुछ एक
1: संदेश।
0: संदेश जी।
2: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश। लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: अपनी जिंदगी को करें थोड़ा और रोशन,
2: क्योंकि तनिष्क लाए हैं फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स।
1: Discover 10,000 plus exquisite natural diamond jewelry designs crafted to put a shine on you.
2: Get up to 20% off.
1: Dharamshala Road, opposite Post Office, Kangra.
2: TNC apply.
3: बच्चों, हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: दिखा चुनी ताई इन्हां छोटी छोटियां गल्लां करदे करदे पता नहीं लगदा कि कल जिहड़ा सा कार्यक्रम का समय जिहड़ा सा समाप्त होने आई जांदा। कहना दिखा जी अंत विच अहां यही बोल सकते कि भाई किसान जिहड़ा सा खूब किसानी करन ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा पैसा भी कमाई सकन, कहना अपना भरण पोषण भी करी सकन। किसानी जिहड़ा सा अजकल बिल्कुल घाटे का कोई सौदा नहीं है। कहना इन्हां ही गल्लां बातां कन्नै सुणदे इक लोक गीत कहना सांझो सोगी सोगी इजाजत भी दिया ना जी।
5: हाँ जी
4: जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजें गराई दिया। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 7 बजने को हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गे पामला के बीच आज नई दिल्ली में बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति पामला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगी। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास करती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पामला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नई दिल्ली में आज म्यूनिख सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हैगमैन,

और जॉर्ज नागेल को दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स के जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। इस तकनीक से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या बंद किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। स्टॉकहोम में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया गेम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में कल तक बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुना करदे सारे श्रोतियां जो मेरा यानी कि चुन्नी ताई दे राम राम कने मेरे कने ट्याले प्रसाद दिया दे न रसीलू राम जी, रसीलू राम जी तुहानू भी राम राम कने सारे श्रोतियां जो एक बारी फिरी ते राम राम।
1: जी जी जी सारे जो मेरी भी नमस्कार, राम राम। कने भाई सारे ते हाल चाल पूछा दे हाँ ट्याले दे माध्यम ने कि सारे ठीक हैं भाई,
0: हाँ
1: कने ठीक ठाक अपने कम्मा कारा जड़ा सह करा देन।
0: हाँ जी
1: तां मुझे जवाब तो भाई नहीं मिली सकता क्या कि तेना आपू दे ही तो होना। चलो पूजिया सरोतियां दा जवाब हाँ जी लगे
0: हाँ
1: भाई
0: जी हाँ
1: ठीक
0: जी
1: ठाक हैं सह,
0: सब भी ठीक
1: है
0: ठाक
1: ना
0: है।
1: जी। कने अच्छे कम कार तेना दे चलियो ना, कने कम कार चलना भी चाहिए क्या कि अजकल टाइम ही ऐसा लग गया ना चुन्नी ताई।
0: फसल बढ़ाई
1: हाँ
0: दा
1: बढ़िया बढ़ाइया दा ते है वो गाने दा
0: हाँ
1: ता
0: जी
1: सारे जड़ा सा इस वक्त बिल्कुल व्यस्तता जड़ा सा सारे में बख्या सा जो दिखने मिला दी। हालांकि ऊपर एक क्षेत्र जड़ा सा है तिना च हल है थोड़ी
0: कसर है।
1: कसर है
0: हाँ
1: थोड़ी
0: जी
1: काच है ना
0: हाँ
1: जी।
0: हाँ जी हाँ
1: पर
0: जी
1: ये है कि आने वाले टाइम में औला औला जड़ा सा है बिल्कुल तिना भी ठीक हो जाना क्या कि मौसम विभाग दे अनुसार आने वाला समय जड़ा सा लगभग साफ ही है चुन्नी ताई, है ना
0: हाँ
1: जी।
0: जी हाँ जी
1: तां यही
0: हूँ
1: बोलना चाहेंगे कि भाई ठीक ठाक रहा कने सारे ठीक ठाक अपने कम्मा कारा जो करा, है ना
0: हाँ
1: जी।
0: जी हाँ जी
1: जी
0: पर दिखा हूँ हाँ तुहानू ने एक गल सांझा करनी है। अज जिहड़ा साडा विषय है सह है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण
1: जी
0: कार्यक्रम।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: तुसां दिखा कि सदियां ते जिहड़ा माणू जिहड़ा अपनी आजीविका वास्ते या फिर भोजन वास्ते या फिर अपनी सुरक्षा वास्ते इन्हां सारियां चीज़ां वास्ते पशुधन पर ही ज़्यादातर निर्भर रहा है।
1: बिल्कुल। कने दिखा जी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम जियां के तुहां गलाया 2019 विच इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी और द्वारा की गई थी। कने अगर इस कार्यक्रम जो शुरुआत करने का उद्देश्य गल करिए हाँ तां जड़ा पशुआं हड़ें च जड़ा प्रमुख रोग होंदे जियां के खुरपका मूँह पक्का रोग जिसे अहां FMD भी बोलते, कने ब्रुसेलोसिस नामक जेड़ा रोग होंदे इन्हां दे निदान ताई कने इन्हां ते छुटकारा पाने ताई अपने आप सारे पशुओं जो जियां गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर इत्यादि ये सारे जेड़ा पशु हैं इन्हां जो इन्हां बीमारियों ते बचाने ताई इस कार्यक्रम की शुरुआत जेड़ा सह की गई थी।
0: हाँ जी कन तुम दिखा कि एक टीकाकरण लक्ष्य है साल 2030 तक खुरपका कने मुँह पक्का रोग करने वास्ते पूर्ण रूप से देश पूरे देश च व्यापक है कने इसका उन्मूलन करना इन्हों का उद्देश्य है।
1: जी जी गलाने का मतलब यही है कि सरकार द्वारा उद्देश्य ये रखा गया था कि भाई 2030 दिकर जड़ा सा हाड़े डंगर बच्चू जड़ा सा खुरपका मूँह पक्का रोग कने ब्रुसेलोसिस जड़ा रोग होंदा
0: कने
1: इन्हां ते
0: क्लासिक स्वाइन भी
1: जी इन्हां ते बिल्कुल तिन्हां दा निदान करना हाँ कने बिल्कुल ना दे बराबर करने का उद्देश्य जड़ा सा सरकार
0: रखे
1: द्वारा रखा
0: रखे
1: गया था।
0: हालांकि
1: तां
0: इस कार्यक्रम के तहत अजे तक लगभग 147 करोड़ से ज़्यादा खुरपका कने मुँह पक्का रोगों के टीकियां की खुराक दी जा चुकी है।
1: जी बिल्कुल गलाने का मतलब यही है कि इतने के डंगरा जो जड़ा सा
0: टीकाकरण
1: टीकाकरण जड़ा सा हो
0: हो
1: ही
0: ही
1: चुके है।
0: हाँ
1: कने ब्रुसेलोसिस दी रोकथाम ताई अहां दसी दईए कि जड़ा मादा गोजातीय बछियां होंदियां बछड़ियां होंदियां है ना
0: हाँ जी
1: जी
0: हाँ जी
1: तिन्हां दा 4 ते 8 महीने दी जालू तिन्हां दी आयु होंदी इहदे विच इक मतलब टीका लगदा तिन्हें जो है
0: हाँ
1: ना
0: जी हाँ
1: जी
0: जी
1: सह टीका जड़ा सह पूरे जीवन च एक बारी ही तिन्हें लगाना पौंदा। तो अहां दस दईए कि अपने किसान साथियों के जिन्हें गाय में पालियां है ना जी
0: हाँ जी
1: तो तिन्हें जो अगर जालू भी जड़ा बछड़ियां होनी है मादा है ना जी
0: हाँ जी हाँ
1: तो
0: जी
1: तिन्हें जो जालू सह चार ते लेके 8 महीने दिकर तिन्हें दी आयु होंगी है ना जी
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: सह इस ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी ते बचाने ताई उन्हें जो टीका जड़ा सह
0: दिता
1: लगवाई
0: जा हाँ
1: सकते।
0: जी हाँ जी
1: हाँ जी
0: कने अगर असा हुण गल करी कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की विशेषता क्या है तो भारत पशुधन पोर्टल पर पशुओं के कन्ना च टैग लगाई करने लगभग 39 करोड़ से ज़्यादा पशुओं का डिजिटल ट्रैकिंग करके डिजिटल पंजीकरण किया गया है।
1: जी जी
0: कने सब ते खास गल है कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा पात्र पशुओं का टीकाकरण बिल्कुल मुफ्त किया जाता है।
1: बिल्कुल, गलाने का मतलब यह है कि तुहानू किसी भी प्रकार का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होंगी। कने ये जिहड़ा कार्यक्रम है पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा ही चलाया जाता है। कने पूरा खर्चा जिहड़ा सा केंद्र सरकार ही बहन जिहड़ा करती है।
0: हाँ जी, दूई गल है कि मोबाइल वैटनरी यूनिट जिसका टोल फ्री नंबर है 1962 यानी कि 1962 है जिसका टोल फ्री नंबर, इसके माध्यम से पशुओं के वास्ते घर जाए के भी स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है।
1: जी जी जी, यानी कि थोड़े घर द्वारा जोड़ा सा आई के जोड़ा सा टीकाकरण थोड़े बछड़िया का या थोड़े डंगर का जोड़ा सा हो ही आता है। जरूरत तो एक ही रही है कि तुहानू थोड़ा जागरूक रहना पौना कि तुहानू इस टोल फ्री जोड़ा नंबर है इस पर तुहानू
0: फोन
1: कॉल तो करना पौनी।
0: हाँ
1: है ना
0: जी,
1: जी।
0: हाँ जी।
1: कने चुन्नी ताई दिखा लेंदे थोड़ा दिया विराम, कने सुन दे एक
0: लोक
1: लोकगीत
0: गीत
1: जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:41 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, और रिले के लिए आपको करना होगा कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1-9-1-2।
1: बिजली के खंभों और तारों की कोई समस्या हो
0: या बिजली के बिलों से संबंधित कोई समस्या हो
1: या हो कम या अधिक वोल्टेज की समस्या,
0: टूटी हो सर्विस तार
1: या समस्या हो ट्रांसफार्मर की,
0: विद्युत संबंधी हर तकनीकी समस्या का समाधान होगा टोल फ्री नंबर 1-800-180-8060 या 1-9-1-2 पर।
1: ये सुविधा IVRS और कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध है।
0: हम आपकी सुरक्षा एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सदैव तत्पर हैं।
1: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा पब्लिक इंटरेक्शन कार्यक्रम के तहत जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर, एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। राज्य सरकार एशियन गेम्स में हिमाचल की कबड्डी स्वर्ण पदक विजेताओं और क्रिकेट खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को प्रदान करेगी 1-1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जॉब ट्रेनी प्रशिक्षु चिकित्सकों को PG पाठ्यक्रम करने की अनुमति देने के स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। और प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पिछले 3-4 दिनों से पर्यटकों की आमद में वृद्धि, पर्यटन कारोबार को मिली मजबूती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति कल बिलासपुर स्थित एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इस दौरान वे प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बिलासपुर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दीक्षांत समारोह के बाद इसी दिन राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम है, जहां उनके रात्रि ठहराव की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति का 7 अक्टूबर को मनाली के हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए कुल्लू जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा सहित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के व्यापक प्रबंध किए हैं। जिला प्रशासन ने होटल क्षेत्र, प्रमुख मार्गों और कार्यक्रम स्थलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। आज शिमला में मुख्यमंत्री से मिलने आई इन खिलाड़ियों की मांग पर उन्होंने कहा कि इन तीनों खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को भी 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस बीच युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत ओडिशा के 32 जिलों से हिमाचल के भ्रमण पर आए 47 विद्यार्थियों के एक दल ने मुख्यमंत्री से शिमला में भेंट की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनके भ्रमण के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। ये दल NIT हमीरपुर और शिमला का भ्रमण कर चुका है, जबकि आगामी दिनों में IIT मंडी, अटल टनल और ज्वालामुखी मंदिर सहित अन्य प्रमुख स्थलों का दौरा करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जॉब ट्रेनी प्रशिक्षु चिकित्सकों को PG पाठ्यक्रम करने की अनुमति देने के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम करने के इच्छुक चिकित्सकों को भी अनुमति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों के बॉन्ड की अवधि और राशि में भी वृद्धि की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल की। नए जीएसटी सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू हुए थे। प्रधानमंत्री ने जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स के रूप में देश के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया है।
3: नागरिक देवो भव के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई दे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमई यानी हमारे लघु मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हो और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार।
2: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
4: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
5: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
4: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं। ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
6: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
8: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
7: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
8: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
7: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
8: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
7: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
8: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
9: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में पिछले 3-4 दिन से पर्यटकों की आमद में भारी वृद्धि देखी गई है। 2 से 4 अक्टूबर तक बाहरी राज्यों से करीब 70,000 वाहन शिमला पहुंचे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सामान्य दिनों की तुलना में लॉन्ग वीकेंड पर शिमला पहुंचने वाले वाहनों की संख्या 2 गुना से भी अधिक रही। शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि पर्यटकों की आमद बढ़ने से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को फायदा हुआ है। एएसपी शिमला शहरी मेहर पंवर ने कहा कि आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए शिमला पुलिस पूरी तरह तैयार है।
10: लॉन्ग वीकेंड के चलते शिमला में काफी टूरिस्ट की आवाजाही रही है। हमारे डेटा के मुताबिक 3 दिनों में 2nd, 3rd और 4th तारीख को कुल मिलाकर के 70,000 के करीब गाड़ियों की आवाजाही रही है। तो आने वाले वीकेंड में ट्रैफिक की समस्या ना हो, ये हम पूरी तरीके से इंश्योर करेंगे और पुलिस बल पूरा तैनात है और हम अपनी कार्य

0: खैर उससे ज़्यादा तुरंत ट्रीटमेंट 5-7 हज़ार बंदा तुरंत ग्राउंड और उसके आसपास जगह पे हो सकता है।
1: प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार ने झूठी गारंटियां देकर प्रदेश की जनता को ठगा है और विकास पूरी तरह थम गया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है और मुख्यमंत्री को भाजपा में गुटबाजी के आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी की दशा और दिशा संभालनी चाहिए। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुक्खू सरकार में अपने ही मंत्रियों और विधायकों को जलील किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हिमाचल को कर्ज के बोझ तले दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली से समाज का हर वर्ग परेशान है। प्रदेश में मौसम के एक बार फिर करवट बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 6 से 9 अक्टूबर के बीच प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम बारिश जबकि कुछ स्थानों पर आंधी तूफान, बिजली चमकने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास पर एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। राज्य सरकार एशियन गेम्स में हिमाचल की कबड्डी स्वर्ण पदक विजेताओं और क्रिकेट खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को प्रदान करेगी 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जॉब ट्रेनी प्रशिक्षु चिकित्सकों को पीजी पाठ्यक्रम करने की अनुमति देने के स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। और प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पिछले 3-4 दिनों से पर्यटकों की आमद में वृद्धि, पर्यटन कारोबार को मिली मजबूती। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
2: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
3: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
2: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
3: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने हैं, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन जिला के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त चल रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 6 पद तथा सहायिकाओं के 15 पद भरने हेतु साक्षात्कार दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। संबंधित आंगनवाड़ी पोषक क्षेत्र की सामान्य निवासी इच्छुक महिला उम्मीदवारों के सादे कागज पर आवेदन पूर्ण वांछित सत्यापित दस्तावेजों सहित आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में दिनांक 17 अक्टूबर 2026 तक जमा करवाए जा सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची: देवघाट, सनी साइट, भ्यूंत, भैरा, बणी, कमलोग। आंगनबाड़ी सहायिका के आंगनबाड़ी केंद्र का नाम: जराश, टिक्कर, दधोग, जोखड़ी, ढलेन, जमरोट, भरोल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका हेतु आवेदन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 12वीं या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया होना चाहिए।

0: आवेदन पत्र के साथ जो अन्य वांछित दस्तावेज लगाने हैं वो है अनुभव प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र। अधिक जानकारी के लिए आप बाल विकास परियोजना अधिकारी सोलन के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष नंबर 01792221640 पर संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ।

निखिल विनय के संगीत निर्देशन में अभी आपने सोनू निगम को सुना। अब लीजिए सुनिए अलका याग्निक को इस अगले गीत में। धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

मिले जुले गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। पंकज उदास की गाई यह गजल अब आपको सुनवा रहे हैं।

रात्रि के 8:15 और 13 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। अब लीजिए सुनिए अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

0: अंदाज वही, कुछ अल्फाज है बदले,
1: सौगात नई, कुछ नए तराने,
2: तभी तो दिल ढूंढे आपसे मिलने के बहाने।
0: अब छिड़ेगी हिमगुंजन में लोक गीतों की सुरीली तान,
1: गूंजेगा खेल जगत और नॉन फिल्मी गीतों से सारा जहान।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला पर आप और हम में दीजिए अपनी राय।

0: और सुझाव,
1: सरकारी योजनाओं और नीतियों का कार्यक्रम होगा विकास संवाद।
2: ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला पर
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी धर्मशाला, वही आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी
0: जो पहुँचे दिल से दिल तक।

जस मानक के गाए इस पंजाबी गीत के साथ ही आज का विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 और 25 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
4: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
3: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
4: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
3: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
4: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: गोल्ड रेट्स बढ़ने का वेट करें या गिरने का, इस कंफ्यूजन को अब कहिए गुड बाय,
1: क्योंकि तनिष्क पर गोल्ड बुक करने के साथ पाइए बेस्ट ऑफर। बुकिंग डे और परचेज डे के रेट्स कंपेयर होंगे और दोनों में से जो भी कम होगा तनिष्क में आपको वही रेट मिलेगा। इसके अलावा पुराना गोल्ड एक्सचेंज करें तनिष्क में बिना डिडक्शन के।
0: विजिट तनिष्क विद यू टावर धर्मशाला रोड कांगड़ा। तनिष्क अ टाटा प्रोडक्ट TNC अप्लाई।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
6: देशभक्ति गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे देश प्यार के गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
3: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
4: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
3: And Department of Science and Technology, our TST.
1: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में पांचवें कौटिल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति, अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि एआई ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा एआई अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
7: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानोल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
8: आज MOU में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एंक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
1: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

0: को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 पीएचडी स्कॉलर्स को पीएचडी का सर्टिफिकेट देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
2: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवंबर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
3: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
4: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
2: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
5: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिस के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायो फिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरो साइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9.

श्रोता नमस्कार, आज हम याद कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत के उस महान संगीतकार को जिनकी धुनों में लोक संगीत की मिट्टी की खुशबू, शास्त्रीय संगीत की गहराई और भावनाओं की सादगी महसूस होती है। आज हम बात कर रहे हैं सुरों के जादूगर सचिन देव बर्मन यानी SD बर्मन के बारे में।

एक ही संगीतकार श्रोता आज सुन रहे हैं और आज के संगीतकार हैं सचिन देव वर्मन। एस डी वर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को तत्कालीन त्रिपुरा के राज परिवार में हुआ था। संगीत उन्हें विरासत में मिला, लेकिन अपनी प्रतिभा, साधना और मौलिक सोच के बल पर उन्होंने भारतीय संगीत में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी सिनेमा को ऐसी यादगार धुनें दी जो आज भी श्रोताओं के दिलों में बसी हुई हैं। उनकी संगीत शैली में बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के लोक संगीत की विशेष छाप दिखाई देती थी। यही कारण था कि उनकी धुनें सरल होते हुए भी बेहद प्रभावशाली लगती थीं। फिल्म संगीत में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। प्यासा, कागज़ के फूल, गाइड, अभिमान और आराधना जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने जबरदस्त संगीत दिया।

सचिन देवर्मन की संगीतबद्ध की गई रचनाएं एक ही संगीतकार कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताज सुन रहे हैं। एस डी वर्मन की खासियत ये थी कि वे गीत के भाव और कहानी को समझकर संगीत तैयार करते थे। उनके संगीत में दिखावा कम और भावनाओं की गहराई अधिक थी। वे केवल एक संगीतकार ही नहीं बल्कि भारतीय फिल्म संगीत की ऐसी अमर आवाज़ थे जिनकी धुनें पीढ़ियों तक हमारा साथ देती रहेंगी।

क्यों आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही संगीतकार, और आज आपने सुना सचिन देवर्मन के संगीतबद्ध किए गए कुछ गाने और उनकी संगीतबद्ध की गई कुछ रचनाएं। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की।
1: पहले बाग ना जाना।
0: कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं रोशनी देवी के गाए इस लोकगीत के साथ।

रात्रि के 9:43 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। अब लीजिए सुनिए हमीद खान को इस अगले लोकगीत में।

हिमाचली गीत और लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम है गूंज पहाड़ों की। अब लीजिए सुनिए सीमा ठाकुर और वीना तनवर को।

सुरेश वर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ आज का गूंज पहाड़ों की कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे।

लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपके गीत हमारे पे सभी श्रोताओं का स्वागत हो। श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा। बहुत सारी फिल्में आज के कार्यक्रम में हमने शामिल की हैं। अगर आप भी इन फिल्मों में से कोई गाना सुनना चाहते हैं तो आप जल्दी से मिलाइए हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर, और ये नंबर है 01892224391। फिल्मों के नाम भी आपको बताते हैं। ये फिल्में हैं दिल अपना और प्रीत पराई, दूसरा आदमी, एक मुसाफिर एक हसीना, गैम्बलर, गंगा जमुना, जब जब फूल खिले, जल बिना मछली, नृत्य बिना बिजली, जानवर, काजल, मधुमति, नवरंग,

0: चिंता, दिल, हीना, नगीना और मुकद्दर का सिकंदर। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला से, कोटखाई से।
0: जी, स्वागत आपका राकेश जी। फिल्म का नाम बताएं, कौन सा गाना आपको सुनवाएं आज के कार्यक्रम में?
1: कोई भी सुना दीजिए।
0: बहुत सारी फिल्में हमने आपको बताई, बता दीजिए इसमें से कोई गाना, हम फिर सुनवाते हैं। फिल्में हैं दिल अपना प्रीत पराई, दूसरा आदमी, एक मुसाफिर एक हसीना, गैम्बलर, गंगा जमुना, जब जब फूल खिले, जल बिना मछली नृत्य बिना बिजली, जानवर, काजल, मधुमति, नवरंग, ममता, दिल, हीना, नगीना और मुकद्दर का सिकंदर।
1: ये सुना दो, मुकद्दर का सिकंदर का, एक सलाम में इश्क ज़रा कबूल कर दो।
0: जी जी, गाना हम आपको सुनवाएंगे, कुछ बताएं अपने बारे में और अपने इलाके के बारे में हमें।
1: जी, जैसे कि मैं कोटखाई में रहता हूँ और कोटखाई में इस समय जो है घास काटने का सीजन चल रहा है। जो पहले जो है सेब का सीजन था और सेब का सीजन खत्म हो गया, वो जो है घास काटने का कार्य चल रहा है हमारे इधर।
0: जी, तो घास कटाई के बाद फिर क्या लगाने वाले हैं आप अपने खेतों में?
1: फिर जो है पुराने का काम चलेगा और पुराने के बाद जो है क्या बोलते हैं, जैसे कि छिड़काव करेंगे और उसके बाद जो है मटर या कुछ जो है ये लगाएंगे जैसे फसलें और अन्य। और मार्च में तो फिर दालें जैसे राजमा होती है, मतलब जैसे सब्जियाँ, ये चीज हम लगाते हैं।
0: कौन सी दालें लगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ जो है ना वो जम्मू कश्मीर वाले जो राजमा,
0: लाल और चित्रे राजमा।
1: हाँ, चित्रे राजमा।
0: तो ये प्रूनिंग किस तरह से की जाती है, अपने प्रूनिंग की बात की है?
1: प्रूनिंग इसलिए की जाती है जैसे कि अभी हमने सेब तोड़ दिए, जो सेब की जो पत्तियां सब झड़ जाएंगी तो नंबर में जो उसकी जो टहनियाँ होती हैं जिसमें सेब लगते हैं वो छोटे छोटे करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको काटना पड़ता है।
0: जी, और मुझे लगता है पैदावार भी काफ़ी कम होती है अगर उसकी प्रूनिंग न की जाए तो।
1: जी जी जी जी
0: जी, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी और आपकी पसंद का गाना बिल्कुल बज रहा है, लीजिए सुनिए।

0: हेलो।
1: हेलो पवन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरियां के गांव महतापुर से महेंद्र सिंह राणा।

0: जी राणा जी बताएं गाना कौन सा सुनेंगे?
1: गाना देखिए, दिल अपना और प्रीत पराई किसने है जे रीत बनाई, इसका टाइटल सॉन्ग है दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का।
0: जी और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में?
1: कहना तो कुछ नहीं है, लेकिन देखिए हमारे जो जब से जितेंद्र जी आए हैं हमारे सारे कार्यक्रमों की सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि हमारे जो लोकल हिमाचली के कार्यक्रम थे उसमें कोई भी कार्यक्रम नहीं आ रहा।
0: नहीं नहीं बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे हैं जो सुबह शुभ
1: शुभ प्याग भी नहीं आ रही।
0: देखिए राणा जी, हम इस कार्यक्रम में इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब ये कार्यक्रम आप जो सुनेंगे आप और हम, उसमें आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं जो हमारे लिए मंगलवार, दूसरे मंगलवार और चौथे मंगलवार को सुबह 8:30 बजे आएगा, तो उस में आप इसके बारे में हमारे कार्यक्रम प्रमुख से बात कर सकते हैं।
1: आप और हम भी कार्यक्रम जो बंद कर रहे
0: जी, अब वो शुरू होने वाला है और दूसरे मंगलवार को और चौथे मंगलवार को आप ये सुन सकते हैं। चलिए, आपने प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

01892224391 ही हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। हेलो नमस्कार जी, थोड़े ऊंचे स्वर में बोलिए। किशोरी राम जी, मुझे लग रहा है नींद में आप बात कर रहे हैं जी। बताएं कौन सी फिल्म का गाना आपको सुनवाएं। सारी पुरानी ही फिल्में हमने रखी हैं, फिल्में दोहरा देते हैं हम। दूसरा आदमी एक मुसाफिर।

0: देख हसीना गैम्बलर गंगा जमुना जब जब फूल खिले जल बिना मछली नृत्य बिना बिजली जानवर काजल मधुमति नवरंग ममता दिल हीना और नगीना हैं जी
1: लास्ट वाले फिल्म को सुना दो
0: नगीना फिल्म का चलिए नगीना फिल्म का गाना सुनवाएंगे क्या करते हैं आप जी और रेडियो के प्रोग्राम सुने जा रहे हैं
1: लगातार
0: जी और नगीना में से कौन सा सुनेंगे हमारे पास है आजकल याद कुछ और बलमा तुम भूली बिसरी मैं तेरी दुश्मन तूने बेचैन इतना इनमें से कौन सा सुनेंगे जी गाना आपको सुनवा रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद किस तरह से समय बिता रहे हैं आप जी आप जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि जब भी हमसे बात करें थोड़ी सी ऊंचे स्वर में बात करें ताकि आपकी और हमारी बात अच्छे से हो पाए और हमारा और आपका मनोरंजन यूं ही जारी रहे 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सभी श्रोताओं से अनुरोध है कार्यक्रमों संबंधी अगर कोई भी आपने सुझाव या शिकायत देनी है तो आप और हम कार्यक्रम जो है दूसरे माह के दूसरे मंगलवार और चौथे मंगलवार को प्रसारित किया जाएगा और उसके अंतर्गत ही आप कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं क्योंकि ये केवल आपके मनोरंजन के लिए लाइव फोन इन कार्यक्रम है तो केवल इसमें गीतों की बात करें अपने बारे में बात करें अपने आसपास के क्षेत्र की बात करें

0: लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपके गीत हमारे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो
1: हेलो मैडम जी,
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मैडम जी पॉल बोल रहा हूँ, जलंधर पंजाब से।
0: जी स्वागत, और गाना बता दीजिए कौन सा सुनेंगे।
1: गाना मैडम दिल फिल्म का सुना दीजिए, कोई भी।
0: दिल में से कोई भी जी। तो आप क्या करते हैं पॉल जी?
1: हमारी यहाँ मैडम जी पेंट की शॉप है यहाँ
0: जी। आपसे बात अक्सर होती रहती है, आप सबके घरों को खूबसूरत बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और
1: बिल्कुल आप याद रखते हैं पूरा पूरा
0: जी। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं से जो हमारी बातचीत होती है, ये हमारा एक परिवार है। तो हर परिवार की कहते ना, हर परिवार में क्या चल रहा है, क्या सुख चल रहा है, क्या दुख चल रहा है, कैसी उनकी मनोभाव है, भावनाएं हैं, वो हम सब समझते हैं। और जब उनसे बातचीत हमारी होती है तो हमें एकदम पता चल जाता है कि कौन से हमारे नियमित श्रोता हमसे बात कर रहे हैं।
1: बहुत अच्छी आपकी जानकारी है और बहुत अच्छे आप रखते हैं विचार भी, हमें बहुत अच्छा लगता है आपका जो कार्यक्रम है ना, कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसको चार चार सिर लग जाते हैं जब आप अच्छी अच्छी बातें करते हो और सारा हमें जानकारी भी देते रहते हो
0: जी।
1: तो बाकी जैसे जितने श्रोता होते हैं वो भी अपने देश प्रदेश की सारी जानकारी देते हैं, तो हमें घर बैठे में सारा कुछ पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है
0: जी। तो आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है?
1: मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम तो यही है जिसमें लाइव फोनिंग फरमाइशी प्रोग्राम होता है
0: जी।
1: वैसे सुनते तो बाकी भी रहते हैं, लेकिन हमें ये ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बाकी दोस्तों की आवाज भी सुनने को मिल जाती है
0: जी,
1: और हमारी आवाज जो दूसरे दोस्तों तक पहुंच जाती है
0: जी। देखिए इसी तरह हमारा जो परिवार है वो बढ़ता जाता है, और हम तो चाहते हैं कि देश विदेश से भी लोग हमारे साथ जुड़े और जो हमारा परिवार का दायरा है वो बहुत दूर दूर तक फैले, है ना।
1: देखो ये हम सुनते हैं, कई बार वो मध्य प्रदेश से आते हैं, कई बार बॉम्बे से आते हैं, कोई महाराष्ट्र से आते हैं, कोई कहाँ से आते हैं, कोई बंगाल से आते हैं
0: जी। और श्रोताओं को बता दें कि आप भी जुड़ सकते हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश से बाहर रहते हैं तो न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और लाइव हमारे कार्यक्रम को सुन सकते हैं। और इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको सभी को मिलाना होगा हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, और ये नंबर है 01892224391। आपने प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पसंद का गाना हम सुनवा रहे हैं।
1: मेहरबानी, शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बात करने के लिए।

0: पसंद आपके गीत हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और श्रोताओं रात्रि के 10:21 और 35 सेकेंड हुए हैं। आप भी जल्दी से हमारे कार्यक्रम से जुड़ जाइए और मिलाइए हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैडम जम्मू सैनिक कॉलोनी से केशव शर्मा जी।
0: जी केशव जी, कैसे हैं आप?
1: मैडम बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए जी?
0: जी बहुत बढ़िया। और प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: मैडम बहुत शौक से ही, बड़े इंतजार करते रहते हैं हम
0: जी,
1: बड़े शौकीन है रेडियो सुनने के
0: जी। तो आज
1: तकरीबन 55 साल हो गए मैडम मुझे रेडियो सुनते हुए।
0: बहुत अच्छी बात है। और इनकी कॉल डिसकनेक्ट हो चुकी है, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे ये हमें जल्दी से दोबारा हमें कॉल करेंगे। और श्रोताओं हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर है 01892224391। हेलो हेलो नमस्कार जी। जी इनकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है और ये नंबर है 09816332580। इनसे हमारा अनुरोध रहेगा कि ये कहीं सिग्नल में जाकर हमसे बात करें ताकि इनकी और हमारी बात अच्छे से हो पाए। और प्रोग्राम है पसंद आपकी गीत हमारे। हेलो जी, और इनकी भी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल इंतज़ार करेंगे हमारे अगले श्रोताओं का और कुछ संदेश तब तक हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉल उठाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी नमस्ते।
2: हेलो
0: हाँ जी, हाँ जी हम आपको सुन रहे हैं, बताएं कौन कौन बोल रहे हैं?
2: मैं जपवा से बोल रहा हूँ।
0: जी नाम बता दीजिए अपना।
2: जी
0: नाम बता दीजिए अपना।
2: मेरा नायसुदार बहादुर सिंह
0: जी। और गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
2: ये गैम्बलर का सुनाना।
0: गैम्बलर में से कौन सा सुनेंगे?
2: कोई सारा उसका।
0: जी गाने तो सारे बहुत ही अच्छे हैं। चलिए गाने तो बहुत ही अच्छे हैं, क्या करते हैं आप?
2: मैं एक्समैन हूं सर, पेंशन आ गया सर।
0: जी अच्छी बात है। और देखिए हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो अब रिटायरमेंट की स्टेज में हैं और गीत संगीत के साथ उन्होंने अपना साथ बनाया हुआ है। और बताएं गाने सुनने के अलावा क्या क्या करते हैं?
2: अरे अभी तो मेरी उम्र जो 80 साल हो रही है, अभी तो काम दाम कुछ होता नहीं है ना।
0: जी तो अपने लिए क्या क्या करते हैं? सैर करना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा, है ना जी? तो अच्छा सा खान पान, सैर और अच्छे से कुछ अच्छे विचार सुने जाएं, समय तो मन बहुत शांत रहता है। तो घर में भी किसी की मदद करते हैं थोड़ी बहुत आप? जी चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा, प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और गैम्बलर फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं।

0: रात्रि के 10:28 हुए हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पसंद आपके गीत हमारे, और श्रोता हमें लगातार कॉल कर रहे हैं लेकिन गाने के बीच उनका इंतज़ार जो है वो टूट जा रहा है। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल अगले श्रोता का इंतज़ार करेंगे। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार जी, नाम बताएं कौन और कहां से बोल रहे हैं।
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश
0: जी,
1: से। मैडम
0: स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, और बताएं गाना कौन सा सुनवाएं लोकेंद्र जी।
1: गाना मैडम मैंने अभी हाल ही ट्यून किया है मुझे
0: जी। गाना हम फिर से बता देते हैं, ममता, नवरंग, मधुमती, काजल, जानवर, जल बिना मछली, नृत्य बिना बिजली।
1: काजल पिक्चर, काजल फिल्म का।
0: काजल में से कौन सा सुनेंगे जी? इनकी बात बिल्कुल रह गई है लेकिन काजल फिल्म का गाना इन्होंने सुनना चाहा था, और काजल फिल्म का गाना सुनवाएंगे। दो संदेश हम इन तक पहुंचाएंगे, उसके तुरंत बाद इनकी फरमाइश हम पूरी करेंगे।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: श्रोता, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जल्दी से मिलाइए हमें फ़ोन, और ये फ़ोन मिलाने के लिए स्टूडियोस का टेलीफोन नंबर रहेगा 01892 2243 91।

हेलो हेलो जी, इन्होंने साथ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे जल्दी से ये हमें कॉल करेंगे। हेलो।

0: अंजाम है।
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: जी, नाम बताएं अपना।
0: जी पवन शर्मा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं?
0: चांदराम बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश के
1: जी।
0: कांगटा से।
1: चांदराम जी, आप से बात तो उस समय से होती है जब आप पत्र लिखा करते थे और हम पत्रों के कार्यक्रम जो में आपके पत्र शामिल किए जाते थे और हम
0: जी।
1: बड़े ही उत्साह के साथ पढ़ते थे कि चांदराम जी का पत्र हमारे कार्यक्रम में आया है ना
0: जी। वैसे आप भी आते थे और सर्वप्रिय मोहित जी के साथ आप पढ़ते थे शायद।
1: जी जी बिल्कुल। और बताएं कि आज गाना कौन सा सुनवाएं
0: जी। मैं पहले इतनी बधाई देना चाहता हूँ आपके आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र को, क्योंकि ये हमारे गांव में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब टापर हमारे गांव में लगाया गया आकाशवाणी का, इतने क्लियर आ रहे हैं मैडम जी।
1: जी जी बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हम आपके घर द्वार तक, हर हर घर तक पहुँचे और हमारी पहुँच जो है सब लोगों तक हो।
0: जी जी
1: जी तो गाना बता दीजिए, कौन सा सुनेंगे?
0: जी मेरे जो मतलब खेतों में फूल खिलते हैं जी, तो आकाशवाणी के जो माध्यम तो होता है आकाशवाणी सुनते रहते हैं हम, तो इतना क्लियर जब सिग्नल हमारे गांव में और हमारे खेतों तक पहुंचता है,
1: जी जी
0: तो जब जब फूल खिले फिल्म का गीत है मैडम जी, परदेशियों से नाखियां मिलाना।
1: जी तो आपने फूलों की बात की, तो कौन से फूल लगा रखे हैं आपने अपने खेतों में?
0: जी वैसे तो आजकल मैंने गोभी की खेती
1: अच्छा,
0: की है।
1: खाने पीने के फूल लगा रखे हैं?
0: जी जी जी
1: जी जी तो क्या क्या लगा रखा है? गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, और शुरू हो गया
0: फूल
1: सीजन
0: गोभी
1: लग।
0: है मैडम जी,
1: जी जी
0: फूल गोभी है।
1: उसकी रोपाई की है या फिर लगा
0: अभी
1: दी?
0: दिवाली के मौके पर निकलने वाली है मैडम जी।
1: जी जी अच्छी बात है। और इसमें काफ़ी कीटनाशकों का भी इस्तेमाल आप करते होंगे?
0: नहीं नहीं जी मैडम जी, हम देसी वगैरह जो अपनी दवाई होती है उसको मनाते हैं ना जी।
1: देसी दवाई कैसे बनाई जाती है कीट पतंगों से
0: जैसे
1: बचने के लिए?
0: गौतर गोबर होता है हमारा ना जी,
1: गौमूत्र,
0: उससे
1: हाँ
0: बनाई
1: जी,
0: जाती है।
1: हाँ हाँ
0: जी
1: जी उसको किस
0: तो
1: तरह से छिड़का
0: हमारे
1: जाता है?
0: जी
1: किस तरह से छिड़का जाता है उसको?
0: जैसे पंप होता है हमारा, उसके साथ स्प्रे की जाती है जी।
1: अच्छा,
0: हाँ जी
1: तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें आप किसी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, सबसे अच्छी बात तो हमें ये लग रही है। और
0: जी
1: बहुत
0: जी जी
1: ही अच्छी सब्जियां, जब सफ़ेद सफ़ेद गोभी हमारे दुकानों में मिलती है तो खाने का मन करता है
0: बिल्कुल जी।
1: जिसके अलावा खेती बाड़ी में और क्या लगा रखा है आपने?
0: वैसे पालक वगैरह, बीन वगैरह, धनिया वगैरह होता ना जी, वो लगा रखा थे तो मैं।
1: जी अच्छी बात है। चलिए, आप किसानों की वजह से हमारे घर में हरी हरी सब्जियां आती हैं। और
0: जी जी
1: अब आपको गाना सुनवा रहे हैं, प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया मैडम जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी, नाम बताएं, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
0: संजय बोल रहा हूं जी, बयानात से बोल रहा हूं
1: जी। स्वागत, और बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाएं?
0: देवानंद भाई।
1: देवानंद जी का गाना कौन सा है? अभी हमारे पास फिल्में हैं, दूसरा आदमी, एक मुसाफिर एक हसीना, गंगा जमुना, जल बिना मछली, नृत्य बिना बिजली, जानवर, मधुमति, नवरंग, ममता और हिना। हिना में से कौन सा सुनेंगे?
0: कोई अपनी मर्जी सुना
1: जी। आप करते क्या हैं?
0: मैं कन्फेक्शनरी गाना मेरी है
1: जी। तो किस तरह का दिनचर्या आपकी रहती है सारा दिन भर?
0: हाँ जी,
1: किस तरह की दिनचर्या रहती है आपकी सारे दिन भर?
0: हमारी तो सुबह हो जाती है 5:30 बजे
1: जी। 5:30 से लेकर आप कितने बजे तक रहते हैं वहाँ पर?
0: 10:30 बजे
1: रात के 10:30 बजे तक। इसका मतलब अभी भी आप दुकान में हैं?
0: हाँ जी
1: जी। तो अपने ग्राहकों को भी हमारे आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रम आप सुनवाते रहते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, सारे पसंद करते हैं
1: जी। देखिए, और कई बार ऐसा होता है कि गाना बहुत मधुर बज रहा हो तो आते जाते जो कस्टमर होते हैं वो भी खींचे चले आते हैं।
0: कई मैडम जी बाप बैठ ही जाते हैं कहीं।
1: चलिए, इसी बहाने आपकी खरीदारी भी बढ़ती होगी, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। चलिए, अच्छी बात है। और गाना सुनिए हिना फिल्म से। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पसंद आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। हेलो,
1: मैं चिरमिरी कुरासिया कालवी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान जी, बताएं गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: तो मैडम आप लोग क्या निकाले हैं बताइए तो।
0: जी फिल्में अब हमारे पास जो शेष बची हैं वो है ममता, नवरंग, मधुमति, जानवर, जल बिना मछली, नृत्य बिना बिजली, गंगा जमुना, एक मुसाफिर एक हसीना, दूसरा आदमी।
1: मधुमति में अच्छा गाना है लता मंगेशकर के, हेजे भैये ऐसे करते हैं गाने, तो लता मंगेशकर का आवाज़ में
0: जी अच्छा। लता मंगेशकर जी के गाए गाने तो इसमें हैं, और आप इसमें से बताएं कौन सा वाला सुनेंगे?
1: लता मंगेशकर कोई बढ़िया गीत सुना दीजिए।
0: इसमें है एक घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, और जी यही गाना सुनेंगे।
1: और बताइए कौन कौन सा है?
0: जी और है आजा रे परदेसी, जिसमें शैलेंद्र जी के बोल हैं, और चढ़ गया पापी बिछुआ, लता मंगेशकर मनडे।
1: चढ़ गया बिछुआ ये होगी
0: जी। और करते क्या हैं आप इंद्रभान जी?
1: मैं एसोसिएशन में सर्विस करता हूँ मैडम, साउथ ईस्टर्न कोर्ट में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ, नौकरी पीरियड में भी कई केंद्र में फोन करता हूँ आपके लाइक कार्यक्रम में 9 बजे जुड़ता हूँ मंगलवार को, और कई बार जो आपके कोई केंद्र से कोई दूसरा कार्यक्रम आ जाता है तो उस समय नहीं बन पाता है, बाकी समय तो करता हूँ अपने केंद्र।
0: जी अच्छी बात है, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है अलग अलग जगह से जब श्रोता हम सब जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, उसकी सराहना करते हैं। इसके अलावा कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं फोन इन के अलावा?
1: इसके अलावा तो यही जो आपको जानकारी देते हैं उसमें जो जो आपको अपने तरफ का जो आपके क्षेत्र का जो गाना रहता है वो अच्छा लगता है,
0: लोक संगीत। जी
1: लोक संगीत और जो स्वास्थ्य संबंधी खेती से संबंधित बहुत से जानकारी देते हैं महिलाओं से संबंधित।
0: जी जी और एक सुबह सुहानी कार्यक्रम आता है, उसमें भी हम पूरे इतिहास से लेकर काफी कुछ उसमें काफी बताया जाता है, समाचारों का भी इसमें हम एक अंक रखते हैं ताकि लोगों को देश विदेश की जानकारियां भी मिल सके।
1: व्यंजन से व्यंजन जो खाने बनाने की विधि
0: जी सुनो सखी कार्यक्रम आप सुनते हैं, और उसमें जो खान पान के अंतर्गत रसोई में जब हमारी सखियां जाती हैं तो कुछ ना कुछ दिनचर्या उनकी रहती है, कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, तो चटपटा बनाने की कोशिश रहती है ताकि हमारी जो सखियां हैं और जो बाकी हमारे सखा भी हैं वो भी कुछ नई रेसिपीज सीख पाए, है ना?
1: जी मैडम, अब व्यंजन बनाने की विधि बताते हैं तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है।
0: जी चलिए अच्छी बात है, और अब आपकी पसंद का गाना मधुमति फिल्म में से सुनवा रहे हैं। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कल लाइव होगा मैडम 9 बजे सुबह?
0: जी अभी तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम है वो चलेंगे, 17 के बाद ही से ही ये कार्यक्रम आगे जारी रहेंगे। शुक्रिया।
1: ठीक है मैडम।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी,
1: नमस्कार मैम।
0: नाम बताएं अपना।
1: मैं डिम्पल कुमार बोल रहा हूँ।
0: जी गाना कौन सा सुनेंगे डिम्पल जी?
1: मैम कोई भी सुना दो मैम।
0: जी फिल्में अब हमारे पास बची हैं ममता, नवरंग, जानवर, जल भी ना मछली।
1: जानवर को सुना दो मैम। कोई
0: जानवर में से कौन सा सुनेंगे
1: भी सुना दो मैम। मैं
0: जी? क्या करते हैं आप?
1: जो करता हूँ डिपू में।
0: अच्छा जी, तो टीपू में आप अनाज का वितरण करते हैं
1: हाँ जी, हाँ जी मैम।
0: जी? अच्छी बात है। और गाने भी सुनते हैं
1: हाँ जी, हाँ जी। सुबह
0: जी? तो सुबह शाम ही सुने जाते हैं कि दिन को अपनी दुकान
1: शाम
0: में,
1: ही सुबह शाम मैम।
0: क्योंकि दिन को तो काफ़ी व्यस्तता रहती होगी
1: वहाँ पर रखते हैं मैम 1500 को आएगा तो राशन तो वहाँ ही होगा।
0: जी? अच्छी बात है। और चलिए आपको गाना सुनवा रही है प्रोग्राम में, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

0: श्रोताओं, 8 मिनट का समय अब हमारे पास बचा है। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं।
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मुझे एक गाना सुनना है, कोई अपनी पसंद का गाना सुना जी। कौन कौन फिल्में रहेगी?
0: फिल्में हैं ममता, नवरंग, गंगा जमुना, एक मुसाफिर एक हसीना, दूसरा आदमी, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली।
1: अरे गंगा जमुना सरस्वती का सुना दीजिए।
0: गंगा जमुना सरस्वती नहीं है ये। हाँ। गंगा जमुना है फिल्म जी, इसमें से कौन सा सुनेंगे?
1: कोई सा किसी फिल्म का गाना बढ़िया सा सुनवा दीजिए
0: जी। आपको गाना सुनवाएंगे। और क्या करते हैं आप?
1: मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। वो मेरी मैडम जी पहले कॉल लगी थी, आवाज ही नहीं आ रही थी, बार बार कट रही
0: जी। चलिए देखिए, आपने कितनी शिद्दत से अपने बहुत मेहनत की है। देखिए मेहनत का रंग हमेशा अच्छा होता है। और खेती बाड़ी में क्या क्या लगा रखा है आपने?
1: अभी तो मैडम जी धान कटाई चल रही है।
0: तो धान कटाई के लिए मौसम उत्तम है और फसल अच्छे से पक गई है।
1: सही है, पहले बारिश हो गई थी तो ईंट वगैरह आई तो धान कटाई
0: जी। तो बड़े पैमाने में लगाई है खेतीबाड़ी की थोड़े ही क्षेत्र पर लगाई है?
1: थोड़े नहीं, जैसे 4-5 बीघा में लगाई है
0: जी। तो
1: उसके बाद धान कटाई की, फिर उसके बाद गेहूँ बो देंगे और गेहूँ के दूसरे खेत में आएंगे तो वो आलू की बुआई हो रही है। आलू बुआई करेंगे, आलू बुआई, सरसों बो दी, आलू बुआई करेंगे।
0: तो आलू किस तरह का आलू लगाया जाता है आजकल? तो बैंगनी रंग का आलू भी आता है और एक,
1: हाँ वो बैंगनी रंग का आता है, वो उसका बोलते हैं बैंगनी, लाल लाल गुलाब आता है, बैंगनी रंग का आता है। तो जो लाल गुलाब होता है, लाल वाला आलू, तो वो न्यूहार्ड होता है, आलू होता है
0: जी। तो आपके हिसाब से सबसे उत्तम किस्म का आलू कौन सा होता है?
1: उसे पैदावार में जो लाल आलू निकलता है वो पैदावार में, पैदावार कम होती है लेकिन उसका वो बीज होता है वो महंगा जाता है। और जो जो सफेद वाला होता है आलू, जो ख्याति वगैरह होता है, आलू मोटा निकलता है।
0: तो जो बीज है वो हमेशा आप बाजार से ही खरीदते हैं कि अपने आप भी रखे जाते हैं बीज, जैसे पिछले साल के बीज?
1: मैडम जी मेरे फरुखाबाद जिला में कोल्ड स्टोर नाम से फरुखाबाद जाना जाता है। कोल्ड स्टोर नाम से फरुखाबाद जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फरुखाबाद जिला में आलू भी होता है और कोल्ड स्टोर भी यूपी में सबसे नंबर वन में कोल्ड स्टोर रहेंगे। तो कोल्ड स्टोर नाम से फरुखाबाद जाना जाता है। और जैसे कोल्ड स्टोर में जैसे आलू पक्की सीजन के हैं तो कोल्ड स्टोर में डाले आएगा, जैसे 500 पैकेट आए, 200 पैकेट आए तो डाल डूल के डाले आए, तो उनके आप बारह लगा होता है, बर्फ लगी होती है, एसी लगी होती है, तो वो ठंडे में रहते हैं कोल्ड स्टोर।
0: जी जी जी, कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं जी जी।
1: हाँ कोल्ड स्टोर में रखे जाते हैं। और जैसे अब जैसे गड़ने ही होगी तो वही तो फिर छुटवाएंगे जी। आप पैसे लगेंगे थोड़े बहुत लगेंगे, लेकिन अपना आलू छुटवा के फिर अपने खेतों में बीज।
0: बहुत अच्छी बात है कि कोल्ड स्टोरेज में रख कर वो सहेज के रखते हैं आप, और बाद में जब जरूरत पड़ती है समय पर तो आप उनकी बुवाई कर लेते हैं, है ना?
1: हाँ बुवाई कर लेते हैं। और जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखोगे तो दिक्कत आएगी फिर आलू में जमने के लिए, दिक्कत होगी
0: जी, क्योंकि घर में शायद रखा जाता है तो उसकी हम उतनी ज्यादा सुरक्षा नहीं कर पाते हैं।
1: घर में नहीं रख पाते, क्यों नहीं रख पाते? वो आलू की म्याद वह खत्म हो जाती है, वो आलू ठंडा भैया सही रहता है।
0: एक जो
1: कोई चीज सब्जी रख दो तो सब्जी खराब थोड़ी होगी, अब नॉर्मल में रखो तो कोई चीज खराब हो जाएगी
0: जी जी। चलिए अच्छी बात है, ये बात तो हमें पता ही नहीं था कि आलू के बीज भी कोल्ड स्टोरेज

0: कुछ हमरा।
1: श्रोता, कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति की ओर है। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया का, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दे इजाजत, बस यही कहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें FM धर्मशाला।

0: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 11 बजने को है अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद 11:05 पर अंग्रेजी समाचार सुनेंगे।
1: मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत

0: करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहामलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरोरोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defence cooperation and deepen collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: Secretary West in External Affairs Ministry C.B. George addressed media in New Delhi this evening on agreements signed between the two countries. Our correspondent reported that the discussions between Prime Minister Modi and the Swiss President were very wide-ranging. They reviewed the entire spectrum of India-Switzerland relations and discussed ways to further deepen bilateral cooperation.